0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: एमबीसी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
1: ए बादशाह, बादशाह, बादशाह, मेरे चंद आदमियों को मारकर समझता है कि जीत गया तू? मैं आऊंगा, फिर आऊंगा।
2: एक बाप से टकराने की बेवकूफी मत करना। तूने मेरे बच्चे के साए को छूने की कोशिश भी की तो वो हाल करूंगा तेरा कि ना जलाने के लिए शरीर बचेगा ना बहाने के लिए अस्थियां।
3: हर तरफ तू ही दिखे।
0: गुरुवार 1 अक्टूबर को एमबीसी 4 पर दिन के 3:30 बजे स्पेशल वर्ल्ड एल्डर डे पर आधारित फिल्म रिश्ते 2002 की ये मूवी अनिल कपूर और शिल्पा शेट्टी पर फिल्माई गई रिश्ते।
4: A very good morning to all of you. Namaskar. Check your time. It's already 5 o'clock.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musty.
2: Well guys, check your time. स्टूडियो की घड़ी में एग्जैक्टली 5:05 हो चुके हैं. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मॉरिशस. नमस्कार जी और गणेशा का प्रणाम. कैसे हो हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स. आई रियली होप कि आपकी सुबह एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ स्टार्ट हुई होगी. और अगर अभी तक आंखों में थोड़ी सी नींद है तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ गणेशा, आ गई आपका साथ देने के लिए. आपकी मॉर्निंग को थोड़ा और ब्राइट, थोड़ा और हैप्पी और डेफिनेटली थोड़ा और मस्ती भरा बनाने के लिए. और आप सुन रहे हैं राइज एंड शाइन ओनली ऑन रेडियो मस्ती. चाहे अगर आप घर पे हो, अभी अभी उठे हो, तैयारियां चल रही है काम पे जाने की या बच्चों को तैयार करने की, स्कूल भेजने की, तो हम हैं ना आपका साथ देने के लिए विद सम ब्यूटीफुल म्यूजिक. नई सुबह का मतलब होती है एक नया चांस मेरी जान. कल जो हुआ वो हो गया है, आज का दिन फ्रेश है, पॉसिबिलिटीज फ्रेश है और एनर्जी भी फ्रेश होनी चाहिए, है कि नहीं. सो स्माइल कीजिए, रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और चलिए इस ब्यूटीफुल मॉर्निंग को और म्यूजिकल बनाते हैं पॉजिटिविटी के साथ. और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों का ऑन रेडियो मस्ती.

0: Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2
0: Radio Musty.
2: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद रेडियो, ये है आपका रेडियो मसी और हम है गिनिशा जी साथ। दिन ही आ गए हैं ऑन दिस ब्यूटीफुल फ्राइडे मॉर्निंग। सो माय डियर लवली लिसनर्स, हमारी मस्ती फैमिली, आप जरा मुझे बता सकते हैं कि सुबह की सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? इज इट ब्रेकफास्ट? नहीं, अलार्म? बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से तो एक कप गर्मा गर्म चाय या गर्मा गर्म कॉफी, क्योंकि उसके बिना तो मॉर्निंग प्रॉपरली स्टार्ट भी नहीं होती है ना। और उसके साथ अगर बैकग्राउंड में अच्छा बॉलीवुड म्यूजिक बज रहा हो तो बस मॉर्निंग सॉर्टेड। यस, एंड मॉर्निंग की शुरुआत अगर इतनी अच्छी से हो, अच्छे अच्छे गानों के साथ, तो आई नो दिन भी अच्छा जाता है। सो आप हो राइज एंड शाइन के साथ और मैं हूँ गिनिशा जी साथ दे रही हूँ। और आज का मिशन बहुत ही सिंपल है, आपके फेस पर एक खूबसूरत सा स्माइल लेकर आना, क्योंकि आज फ्राइडे है। आज किक स्टार्ट किया है हमने इस खूबसूरत से वीकेंड को, आपके मूड को फ्रेश करना है और आपके दिन की शुरुआत पॉजिटिव वाइब्स के साथ करना है। तो जो लोग अली मॉर्निंग उठ चुके हैं, ऑलरेडी रेडी भी हो चुके हैं, सो आपको फिर से गुड मॉर्निंग। जो अभी बेड में है, बेड में पड़े हुए हैं, उठ जाओ भाई, सुबह हो गई मामू। और जो अभी निकल चुके हैं, यू आर ऑलरेडी ड्राइविंग, ड्राइव केयरफुली एंड हैव अ ग्रेट ग्रेट ब्यूटीफुल डे अहेड। फरिश्मा फ्लैग से सुन रही हैं जैशन अडयाल, हैव अ ब्यूटीफुल डे माय डियर। और ये अगला गाना स्पेशली आपके नाम अब्दुल जी एंड सहरा बानू जी, विशिंग यू एज वेल अ हैप्पी फ्राइडे माय डियर एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग शो हमारे साथ ऑन रेडियो मस्ती। आज लीना रामपोटाप का जन्मदिन है, इट्स द 2nd of October, सो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे माय स्वीटहार्ट एंड बेस्ट विशेस कमिंग फ्रॉम योर हस्बैंड ऋषि, आपकी बेटी उर्वशी, आहाना, आरती, विशाल, अवनीश और सारे गोकुल सिंह, भगवंत रामपोटाप, सिटोहल, रामलोल, डीवू फैमिली की तरफ से विशिंग योर मैजिकल बर्थडे माय डियर। तो चलिए जी, ये अगला गाना हमारी तरफ से हमारे ब्यूटीफुल रेडियो मस्ती फैमिली के नाम।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: Well, guys, I really hope कि आपको इन खूबसूरत गानों का सिलेक्शन से दिल से अच्छा लग रहा है. ऐसे कभी कभी हम सुबह उठते ही सोचने लग जाते हैं ना कि आज क्या क्या करना है, कितना काम पेंडिंग है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या टेंशन है, और दिन शुरू होने से पहले भी हम मेंटली टायर्ड हो जाते हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं करना मेरी जान. इट्स अ ब्यूटीफुल डे. जब भी हम सुबह सुबह उठ जाते हैं ना, ऑलवेज वेक अप विद समथिंग पॉजिटिव ऑन योर माइंड कि आज ऐसा कुछ करना है कि मन खुश हो जाए. बिल्कुल. तो चाहे आपकी लाइफ में कुछ एक्साइटिंग चल रहा है या थोड़ा डिफिकल्ट फेज, ऑलवेज रिमेंबर दिस मॉर्निंग इज योर्स. Make it to the most. और इस पॉजिटिव थॉट के साथ चलिए म्यूजिक को थोड़ा लाउड करते हैं और राइज एंड शाइन को बनाते हैं आपकी मॉर्निंग का परफेक्ट कंपेनियन विद अ ब्यूटीफुल म्यूजिक डोज ओनली ऑन रेडियो मस्ती. और हमें गिनिशा जो बड़े प्यार से आपका साथ दे रही है. सो चलिए, हैव गॉट योर डेडिकेशन. इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस. आज तो मुझे नहीं पता था इतने सारे लोगों का जन्मदिन है. टू ऑल दोस हू सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज, हमारे पूरे मस्ती फैमिली की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे जी. एंजॉय टू द मैक्स एंड गॉड ब्लेस यू. और आज किसी की मम्मा का बर्थडे है जिनका नाम है सुंदरी डाडुल. विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे माय ब्यूटीफुल लेडी एंड बेस्ट विशेस कमिंग फ्रॉम योर ब्यूटीफुल डॉटर करिश्मा नताशा एंड काजल. वी डू हैव आपकी दामा जी अक्षय या विसन एंड आकाश, ग्रैंडसन कृष्णा, कृषि, विहान, अंश एंड आयान. दे आर ऑल विशिंग यू अ मैजिकल बर्थडे. हे भाई देवानंद का भी जन्मदिन है. सो विशिंग यू अ हैप्पी बर्थडे देवानंद जी. कैसे हो आप? आई होप कि ये डे आपके लिए बहुत ही हैप्पी हैप्पी वाला हो. एंड दिस ब्यूटीफुल मैसेज कमिंग फ्रॉम धनेश्वर, सुनीता, रेखा, संजीव, अनिशा फ्रॉम देवदूस परिवार. एंड हैव अ ग्रेट डे. बो कुराज टू ऑल द टीम. थैंक यू माय स्वीट हार्ट एंड एंजॉय टू द डे. एंजॉय द डे टू द मैक्स एज वेल. एंड Mr. Gaita, a very good morning to you. And actually, I would love to dedicate the next one to you and your entire family, jo already uth chuke hain Radio Masti ke saath jure hue hain. Madhvi, Yesha, Disha, Bangoi family from Pitsibelea. Hey, good morning, beautiful ladies. Kaise ho aap? This beautiful upcoming song, khas kar aapke naam. Hey, every RG's ke naam ke liye. डेडिकेट करना ये अगला गाना. बिल्कुल दीपक जी, आशा भोसले और मोहम्मद रफी जी की आवाज में. चलिए आप भी एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा गाना.

0: Welcome to Radio Masti.
1: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Masti.
3: थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए ऑन रेडियो मस्ती और दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया. उतते ही आपने अपना रेडियो ऑन किया और आप हमारा साथ दे रहे हैं. दैट्स सो स्वीट ऑफ यू. सो हैप्पी फ्राइडे टू ऑल ऑफ यू माय डियर लवली ब्यूटीफुल लिसनर्स. आज है 2nd of October 2026 एंड आई जस्ट वांट टू विश अ हैप्पी बर्थडे टू ऑल दोस जो आज मना रहे हैं अपना जन्मदिन. और साथ साथ में आज का दिन है थोड़ा और खास क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की एवरग्रीन ग्रेसफुल और बेहद प्यारी अदाकारा आशा पारेख जी का जन्मदिन. जी हाँ दोस्तों, 84 ईयर्स ओल्ड की हो गई है आज. वैसे अपनी खूबसूरत मुस्कान, दिलकश अदाओं और यादगार परफॉर्मेंसेस से आशा जी ने सिनेमा के पर्दे पर ऐसी चाप छोड़ी है जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है. बिल्कुल जी, तीसरी मंजिल, कति पतंग, लव इन टोक्यो या करवान जैसी फिल्मों की ये हसीन खूबसूरत हीरोइन आज भी अपने फैंस के लिए उतनी ही खास है. ऐसे ही उनके दिलों में बस गई है वो. तो हमारी पूरी रेडियो फैमिली की तरफ से आशा पारेख जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. आशा जी, आपकी जिंदगी हमेशा खुशियों के साथ, सेहत और मुस्कुराहटों से भरी रहे. हैप्पी बर्थडे टू आशा पारेख ऑन रेडियो मस्ती. आप यूं ही हमेशा चमकती रहे और बाकी जो हमारे लिसनर्स आज मना रहे अपना जन्मदिन, हमारे दिल से आपके लिए बेस्ट विशेस.

0: time to Radio Masti.
1: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Masti. Masti. Masti. Your daily horoscope. RM2. Radio Masti.
3: Aries, Mesh Rashi.
4: बिल्कुल जी दोस्तों, चलिए साथ में चेक करते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। आई रियली होप कि ये अच्छा ही होगा। तो चलिए मेष राशि से शुरू करते हैं। आज एनर्जी फुल ऑन रहने वाली है। करियर में कोई पेंडिंग अगर काम है फाइनली मूव हो सकता है। बॉस या सीनियर के सामने अपनी बात जो है कॉन्फिडेंटली रखिए, लेकिन अननेसेसरी जो आर्ग्यूमेंट है उससे जरा बच के रखिए। बिल्कुल टोरस जी, वर्क प्लेस पर स्लो प्रोग्रेस हो सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी का जो रिजल्ट है आपको जरूर मिलेगा। किसी इम्पोर्टेंट डिसीजन को जल्दी में लेने से पहले फैक्स जो है चेक कर लीजिए।
3: जेमिनी, मिथुन राशि।
4: मीटिंग्स जो है, कॉल्स जो है, नेटवर्किंग और जो कन्वर्सेशन है और उससे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। आप अपने आइडियाज क्लियरली प्रेजेंट कर सकते हैं। आपका दिन अच्छा जा सकता है।
3: कैंसर, कर्क राशि।
4: कर्क राशि वाले आज इमोशंस को स्ट्रेंथ बना लीजिए, वीकनेस नहीं। करियर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती है। फैमिली और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के बीच

0: बैलेंस बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा।
1: लियो सिंह राशि।
0: सिंह राशि स्पॉटलाइट आज आपके है, जो स्पॉटलाइट जो है आपकी क्वालिटीज को अच्छा बना देगा। लीडरशिप क्वालिटीज नोटिस आप कर सकते हैं, और जैसे किसी प्रोजेक्ट में अगर इनिशिएटिव लेने का मौका मिले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली हैंडल जरूर आप कर पाएंगे।
1: वर्गो कन्या राशि।
0: कन्या राशि प्लानिंग मोड ऑन है, बिल्कुल जी। आज डिटेल्स पर फोकस करने से मिस्टेक्स अवॉइड होंगे। वर्क में ऑर्गेनाइजेशन आपको एडवांटेजेस दे सकते हैं। पार्टनर के साथ प्रैक्टिकल डिस्कशन हो सकती है। ओवरथिंकिंग से बचना इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
1: लिब्रा तुला राशि।
0: तुला राशि जो है बैलेंस और डिप्लोमेसी आज आपका विनिंग फॉर्मूला है। प्रोफेशनल लाइफ में टीम वर्क इम्पोर्टेंट रहेगा। किसी डिसएग्रीमेंट को काल में हैंडल करने से सिचुएशन बेटर हो सकती है। रोमांस के लिए प्लेजेंट एनर्जी, कपल्स के लिए आउटिंग या रिलैक्स कन्वर्सेशन अच्छी रहेगी।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: स्कॉर्पियो आज इन ट्यूशन को इग्नोर मत कीजिए, बट फैक्ट्स भी चेक कीजिए। कैरियर में कोई हिडन डिटेल सामने आ सकती है। कॉन्फिडेंशियल मैटर्स हो या अननेसेसरीली शेयर ना करें। डीप कन्वर्सेशन रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्गर बना सकती है।
1: सजिटेरियस धनुराशि।
0: धनु राशि वाले एडवेंचर और फ्रेश आइडियाज का दिन। बिल्कुल न्यू अपॉर्चुनिटी, लर्निंग या ट्रैवल रिलेटेड प्लान्स सामने आ सकता है। करियर में अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को याद रखें। लव रिलेशनशिप में फन और पॉजिटिविटी रहेगी, एंड सिंगल सोशल इंटरेक्शन एंजॉय कर सकते हैं आज।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: मकर राशि वाले स्लो एंड स्टडी, यही आज का मंत्र है आपके लिए। कैरियर में डिसिप्लिन का फायदा जरूर होगा। इमीडिएट रिजल्ट ना भी आ सकता है, कंसिस्टेंट एफर्ट कंटिन्यू रखे आज।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: कुंभ राशि वालों कुछ हटके सोचना आज का फॉर्मूला है आपके लिए। क्रिएटिव आइडियाज और इनोवेटिव सॉल्यूशंस का फायदा मिल सकता है आपको। टीम में आपकी डिफरेंट पर्सपेक्टिव को अटेंशन मिल सकती है। पर्सनल स्पेस और इमोशनल कनेक्शन के बीच बैलेंस रखे जरा।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: और अब बारी मीन राशि की। ये इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग, इमोशंस डीप, क्रिएटिव या जो क्रिएटिव पीपल होते हैं ओरिएंटेड वर्क में अच्छा फ्लो फील हो सकता है। कैरियर में ये किसी ट्रस्टेड पर्सन की एडवाइस यूजफुल हो सकती है। तो दोस्तों ये था आज का जो 12 राशि राशिफल। याद रखिए कि ये आपके दिन को और भी अच्छा बना सकते हैं। तो बस हैव अ ब्यूटिफुल डे ऑन रेडियो मस्ती।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: such a beautiful mesmerizing गाने especially आप लोगों के लिए on Radio Masti. जी हाँ दोस्तों, फिलहाल के लिए check your time, studio की घड़ी में 5:55 हो चुके हैं.
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Masti.
0: रेडियो मस्ती, ब्यूटीफुल मॉर्निंग, लवली लवली गाने, और क्या चाहिए, अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग टू. जी हाँ दोस्त, जस्ट टू मेक योर ब्यूटीफुल फ्राइडे मोर एनर्जेटिक, हमने तो स्टार्ट किया है ये खूबसूरत सा दिन आप लोगों के साथ. सो योर डेडिकेशन ऑन 5499194 पर. गुड मॉर्निंग, सच अ ग्रेट सरप्राइज टू हैव यू गिनी, वंडरफुल डे दैट्स कमिंग फ्रॉम नेहा. थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल. वेल से विशिंग चाची देवयानी बुडाया हैप्पी बर्थडे, विश इज कमिंग फ्रॉम ललिता कुमारी, रेणुका, राजनी, सुरेखा, दामिनी एंड द एंटायर फैमिली. Wishing happy birthday to friend Mahalakshmi. Best wishes coming from Ravina, Mavi, Jayshree, unki betiyan aur husband aur pure family ki taraf se. And namaste Ginisha ji, aapko bhi namaste. So nice to listen to you early morning. Radha from Canada, all the way from Canada. Ek khoobsurat sa gana ho jaye. Bilkul, to wish you a lovely Friday, my sweetheart. Nice selection, Sarita from Goodlands. Enjoy, my beautiful. It's a beautiful day with beautiful gani. Kishan Raghunath from Suriname. Agla gana ki wife Mala aur betiyon ke naam Jia and Ria, Raghunath parivar family ke naam. Samrita Isa from Krivkeya requesting for a beautiful song unki behen Jayshree ke liye. Aaj unka janamdin hai, so happy birthday to you, my dear. Cindia, wishing you happy birthday. God bless you, my dear. And best wishes coming from colleague teachers Badal, Ashni, Yeshna, Vishek, Vishni, Rushi, Sinesha, Sham, Lalita, Jitin, Kumar, Debichan from Perebea. To chale ji, ye the aapke aaj ke pyare pyare dedications. To ye raha agla gana aapke naam.

0: आप सुन रहे हैं समाचार आस्था के साथ। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू आस्था।
1: गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को। जहां शुक्रवार 2 अक्टूबर की सुबह प्रथम समाचारों में स्वागत है आप सभी का। पहली अक्टूबर से मॉरिशस में लगभग सभी प्लास्टिक बोतलों पर 2 रुपए का शुल्क लागू हो गया है। रोजमर्रा की जरूरत के 38 उत्पादों को इससे छूट दी गई है। इस रकम का इस्तेमाल रिसाइकलिंग व्यवस्था को मजबूत करने में किया जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और महात्मा गांधी की 157वीं जयंती है। दुनिया भर में शांति, संवाद और आपसी सम्मान के उनके संदेश को याद किया जा रहा है। फार्मर्स कार्ड की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। पहले से रजिस्टर्ड छोटे खेतिहरों और पशुपालकों के लिए यह सुविधा मुफ्त होगी, जबकि नए रजिस्ट्रेशन के लिए 400 रुपए देने होंगे। मॉरिशस का निर्यात बढ़ा है, लेकिन 3 महीनों में इस सेक्टर में 771 नौकरियां कम हुई हैं। मेक्सा के मुताबिक मशीनों और नई तकनीक का बढ़ता इस्तेमाल इसकी एक वजह है। पोर्टली बंदरगाह को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में काम जारी। स्थानीय मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए 2 दस्तावेज अभी कागज पर दी जाती है, जिन्हें अब डिजिटल करने की तैयारी है। और विदेश की खबरों में फ्लाई दुबई की दुबई से तेल अवीव जा रही उड़ान में को पायलट के हमले की जांच जारी। हमले का मकसद अभी साफ नहीं और ईरान से किसी संभावित संबंध की भी जांच की जा रही है। और अब चलिए जानते हैं स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा।
2: Your news on MBC Play and MBC.mu.
3: Your weather forecast on RM2.
4: Radio Musti.
1: चले जानते हैं कि स्थानीय स्तर पर आज दिन भर मौसम का हाल कैसा रहेगा। हमारे इलाके पर हल्की हवाओं का असर है। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वानुमान, आज सुबह के दौरान देश भर में धूप खिली रहेगी, शाम को भी देश भर में मौसम अच्छा रहेगा, रात को देश भर में बादल घिरे रहेंगे। तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 15 से 17, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान सहली इलाकों पर 19 से 21, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, विशेषकर दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 5:51 पर, सूर्यास्त शाम 6:07 पर होगा।
3: Your weather forecast on RM2.
4: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: छह बज के सेवन मिनट्स हो चुके हैं. विशिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन अ वेरी गुड एंड अ ब्राइट मॉर्निंग मॉरिशस. कैसे हो हमारे प्यारे प्यारे मस्ती फैमिलीज. गिनिशा का प्रणाम है आप सभी लोगों को. आई नो मॉर्निंग्स कैन बी वेरी हेक्टिक. कभी कभी ट्रैफिक होता है, कभी कभी लास्ट मिनट काम होती है, और कभी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज. जी हाँ, और कभी तो बस मन करता है कि ब्लैंकेट के अंदर ही रह जाए और ना उठे एंड जस्ट स्पेंड द डे इन योर बेड. बट हियर वी गो, अनदर डे, अनदर अपॉर्चुनिटी. तो बस मैं तो इतना कहूंगी, वाइल यू आर गेटिंग थ्रू योर मॉर्निंग, आप ये बात कभी नहीं भूलेना.

0: देखिए एक कप चाय या एंजॉय कर सकते हो आप अपना फेवरेट गाने सुन सकते हैं ऑन रेडियो मस्ती किसी अपने को गुड मॉर्निंग बोल दीजिए मैसेज भेज दीजिए या मुझे भेज दीजिए ऑन 5499194 पर क्योंकि हैप्पीनेस डजंट ऑलवेज नीड अ बिग रीजन समटाइम्स जो है ना You just need a beautiful song that you really love. Ek message kisi khas insaan ki taraf se. A beautiful sunrise or that first sip of coffee ya chai. Yeah. So, chai wale, ho gaya ki chai. To chale deesha, I'm just wishing you all to have a great, beautiful Friday ahead. And khoobsurat, lovely song specially for you on RN2 Radio Masti just to make your day much more energetic and beautiful. Udit Narayan aur Alka Yagnik ki awazon mein. ये खूबसूरत सा नगमा गिनेशा की तरफ से आपके नाम ऑन रेडियो मस्ती
1: RM2 रेडियो मस्ती

0: RM2 Radio Musti.
1: Hey, ou pero den travail? Ou envie de nan nouveau direction ou carrière? Relan Fiena Limité pe organise un zone recrutement de Beauvallon Mall que tu l'entrée Food Court. Ça samedi 3 octobre 2026 là, depuis 10h grand matin jusqu'à 4h tantôt, Vinzuen nous l'équipe et découvrir ban opportunité de travail de plusieurs domaines. Surtout, nous pero ban technicien qualifié dans électromécanique, mécanique, civil, électrique, plomberie et beaucoup les autres domaines. Pas oublier à mettre nous CV, nous plaît à nous.
0: RM2
2: Radio Musti.
0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musti.
3: बिल्कुल जी, वेक अप फ्रेश, राइज एंड शाइन हमारे साथ ऑन रेडियो मस्ती. सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन टू ऑल दोस जो अभी अभी उठे हैं, अभी अभी अपना अपना रेडियो ऑन किया है. ओप्स, सरप्राइज, गिनीज हियर साथ देने के लिए. सो विशिंग ऑल ऑफ यू टू हैव अ ब्यूटीफुल अ ब्राइट मॉर्निंग माय डियर. वैसे ही ब्यूटीफुल पीपल जो हमारा साथ दे रहे हैं, एक नई सुबह का मतलब सिर्फ एक और दिन नहीं होता है. इट मीन्स कि लाइफ ने आपको एक और चांस दिया है, अनदर चांस टू ट्राई, टू इम्प्रूव, टू स्माइल, टू लव और कुछ नया करने का. तो जो कल हुआ है ना आपकी ज़िंदगी में, उसको चेंज नहीं कर सकते हो आप, लेकिन आज हम क्या कर सकते हैं वो आपके हाथ में है. सो डोंट कैरी यस्टरडेज स्ट्रेस इनटू टुडेज मॉर्निंग माय डियर. आज को एक ब्लैंक पेज समझो और अपनी स्टोरी खुद लिखो. स्ट्रेस लेने का नहीं है, देने का है. और हम तो गाने लेकर आए हैं आपके लिए. स्ट्रेस नहीं, हैप्पीनेस बांटने आई हूँ मैं. सो ड्यूटिका जी हैं जो रिविया डे क्रियोल से हमारा साथ दे रही हैं. वो बोलते हैं रघुनाथ रघुजाना परिवार के लिए ये अगला गाना वो डेडिकेट करना चाहेंगे. हे गिनी, सरप्राइज सरप्राइज, गुड मॉर्निंग टू यू. यस, इट्स अ सरप्राइज, अ वेरी नाइस सिलेक्शन माय डियर. एंड दैट्स रागिनी, थैंक यू सो मच रागिनी जी. अगला गाना आपके नाम है. हे माय स्वीट गिनी, गुड मॉर्निंग. आपको भी इतनी मॉर्निंग में आ गए हो आप. बिल्कुल जी, आप लोगों का प्यार खींच के यहाँ तक लेकर आई है. विशिंग यू अ वंडरफुल फ्राइडे, अ ब्लास्ट वीकेंड एंड लवली गानों का सिलेक्शंस एंजॉय कर रही है मालिनी जी. अगला गाना संगीता और उनके परिवार के लिए जो मोताई ब्लाउश के रहने वाले हैं. थैंक यू सो मच जी मोताई ब्लाउश के जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, गुड मॉर्निंग टू यू. हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपको भी गुड लक टू ब्रदर आदित्य. आज उनका एग्जाम्स है, सारे बच्चों को भी गुड लक कहना चाहेंगे और स्पेशली टू यू आदित्य लक्ष्मण परिवार की तरफ से. जी हाँ, मे गॉड ब्लेस यू. अगला गाना जो है हस्बैंड केविन के लिए, अभी काम पे जा रहे हैं. सो वो खुश फॉर द डे एंड आई जस्ट वांट टू से मिस हिम एंड आई जस्ट वांट टू टेल हिम आई लव यू. ओ माय गॉड, उनकी वाइफ वर्षा की तरफ से जो शुमे घने की रहने वाली है. कितना अच्छा लगता है ना कि सुबह सुबह आपकी वाइफ आपको आई लव यू, आई मिस यू बोल रही है. इट्स शुड बी लाइक दैट ऑलवेज. रचना बाबूराम फ्रॉम मोगू पॉपलमूस. अगला गाना आपके बेटे के लिए. हे, आज उनका जन्मदिन है, 2 साल के हो गए. सो बेस्ट विशेज टू यू माई डियर, हैप्पी बर्थडे टू यू एंड मामा रचना, पापा अक्षय, नानी अंजू और नाना गणेश, आंटी माही और जो घो नानी प्रेमिला गणपत है, नाना देवराज पूरे परिवार की तरफ से, लोहा बाबू राम एंड गणपत परिवार की तरफ से, लिटिल प्रिंस को हैप्पी वाला बर्थडे माय डियर. तो चलिए जी, ये अगला गाना सोना कालू के लिए, बेल जो मेल जान गुडलैंड के रहने वाले हैं. बेस्ट विशेज टू यू, मैनी ब्लेसिंग्स टू यू, आपकी वाइफ बिंदिया.

0: डच की तरफ से सानी एंड संयम की तरफ से स्वयं कालू परिवार और दोस्तों की तरफ से तो चलिए जी जितने भी हमारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं जो ऑलरेडी निकल चुके हैं काम पे जाने के लिए आप ड्राइव कर रहे हो आई गेस कि ये गाना आपके है इस खूबसूरत मॉर्निंग ड्राइव को और भी खूबसूरत बनाएंगे एंजॉय कीजिए हमारे की तरफ से आपके लिए ऑन
1: RM2 रेडियो मस्ती

0: सच अ ब्यूटीफुल और बहुत ही प्यारा सा गाना एसपी बाला सुब्रमण्यम और अलका याग्निक की आवाजों में आप लोगों के लिए ऑन रेडियो मस्ती। जी हाँ दोस्तों, टेकन फ्रॉम द मूवी साजन। अभी थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे पूरी समाचार बुलेटिन और उसके बाद द गुड म्यूजिक कंटिन्यूज। मैं हूँ निशा, जो बड़े शिद्दत से बड़े प्यार से आपका साथ देने आ गई हूँ इन दिस ब्यूटीफुल शो ऑन रेडियो मस्ती, एंड दैट्स योर राइज एंड शाइन। हैव अ ब्यूटीफुल डे माय ब्यूटीफुल पीपल, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, हैप्पी फ्राइडे।
1: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Musty.

0: नमस्कार, सुबह के प्रथम बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। शुक्रवार 2 अक्टूबर की सुबह, ये नया दिन हम सभी के लिए शुभ हो। शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। पहली अक्टूबर से मॉरिशस में लगभग सभी प्लास्टिक बोतलों पर 2 रुपए का शुल्क लागू। रोजमर्रा की जरूरत के 38 सामानों को इससे छूट दी गई है। रकम का इस्तेमाल रिसाइकिलिंग व्यवस्था को मजबूत करने में किया जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और महात्मा गांधी की 157वीं जयंती। दुनिया भर में शांति, संवाद और आपसी सम्मान के उनके संदेश को याद किया जा रहा है। फार्मर्स कार्ड की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। पहले से रजिस्टर्ड छोटे खेतियरों और पशुपालकों के लिए ये सुविधा मुफ्त, जबकि नए रजिस्ट्रेशन के लिए 400 रुपये देने होंगे। मॉरिशस का निर्यात बढ़ा, लेकिन 3 महीनों में इस सेक्टर में 771 नौकरियां कम। मेक्सा के मुताबिक मशीनों और नई टेक्निक का बढ़ता इस्तेमाल इसकी वजह है। पोतरी बंदरगाह को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में काम जारी। स्थानीय मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए 2 दस्तावेज अब भी कागज पर दी जाती है, जिन्हें अब डिजिटल करने की तैयारी है। विदेश स्तर पर फ्लाइट दुबई से तेल अवीव जा रही उड़ान में को पायलट के हमले की जांच जारी। हमले का मकसद अभी तक साफ नहीं और ईरान से किसी संभावित संबंध की भी जांच की जा रही है। इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। पहले 2 रुपए का ये शुल्क पेय पदार्थों की प्लास्टिक बोतलों पर लगता था, अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। पहली अक्टूबर से मॉरिशस में घर में इस्तेमाल होने वाले सामान और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स समेत सभी, लगभग सभी प्लास्टिक बोतलों पर 2 रुपए का शुल्क लागू है। रोजमर्रा की जरूरत के 38 सामानों को इससे छूट दी गई है। इससे मिलने वाली रकम प्लास्टिक को इकट्ठा करने और दोबारा इस्तेमाल की व्यवस्था को मजबूत करने में लगाई जाएगी। शैली निर्बन, रजनी बिकर।
1: शैंपू, बर्तन धोने के साबुन, सॉस या फिर रखरखाव के पदार्थ, मंडी में उपलब्ध हर एक प्लास्टिक पदार्थ पर 2 रुपए का टैक्स लागू। फिर गृहिणियों के घर के सामानों को संरक्षित करने के लिए एमओआरई की ओर से 38 सख्त एग्जेम्पशंस निर्धारित किए गए हैं। दूध, खाना पकाने के लिए तेल, शिशुओं के लिए खाद्य पदार्थों और दवाइयों के लिए अतिरिक्त लागत नहीं। इस वित्तीय कदम को बढ़ाते हुए इस साल 135 मिलियन रुपए की आय की उम्मीद, लेकिन चुनौती पर्यावरण प्रिय बने रहने की भी जरूरत है। टापू में पिछले साल 168 मिलियन प्लास्टिक बॉटल्स फेंके गए, जिनमें से केवल 1/4 को रिसाइकल किया गया। औपचारिक उद्देश्य यही 2035 तक 80% जमा करना। रिसाइकल करने और इन कचरों का निर्यात करने वाले उद्योगों तथा कंपनियों को भुगतान मिलेगा, बशर्ते कि उनके पास एमओआरई का लाइसेंस हो। इस वित्तीय एवं पर्यावरण प्रिय मोड़ के परिणाम दिखने भी लगे हैं।
0: आज 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जा रहा है। ये तारीख महात्मा गांधी की जयंती से जुड़ी है, जिनके लिए अहिंसा सिर्फ हिंसा से दूर रहना नहीं बल्कि अन्याय का सामना शांति, सत्य और संवाद के रास्ते से करना था। 1869 में भारत में जन्मे महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई में इसी विचार को एक मजबूत जन आंदोलन का आधार बनाया। उनके विचारों ने बाद में दुनिया के कई शांति और नागरिक अधिकार आंदोलन में भी प्रभावित किया। आज उनकी 157वीं जयंती है और इस मौके पर अहिंसा का संदेश एक बार फिर

यही याद दिलाता है कि मतभेद चाहे कितनी भी कितने भी गहरे हो उनका समाधान हिंसा नहीं बल्कि बातचीत समझ और आपसी सम्मान से निकाला जाना चाहिए रजनी बिकर

स्वयं वो बदलाव बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं. Be the change you wish to see in the world. 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ. वे थे मोहनदास करमचंद गांधी. वे भारत के राष्ट्रपिता और

दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद भेदभाव के विरुद्ध उन्होंने अहिंसक विरोध और सत्याग्रह के मार्ग का सफल प्रयोग किया। भारत लौटने के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1930 की प्रसिद्ध दांडी यात्रा नमक का

2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन, इसलिए गांधी जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु कई गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से एक प्रस्ताव की भी घोषणा की गई, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाए।

0: मॉरिशस में छोटे खेतीहरों की श्रेणी में सिर्फ खेती करने वाले लोग नहीं आते, इसमें छोटे पशुपालक और कुछ कृषि कारोबार से जुड़े लोग भी शामिल हैं जो स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड में रजिस्टर्ड हैं। फार्मर्स कार्ड से उन्हें कई तरह की सरकारी मदद मिलती है, जैसे खेती के लिए मशीनें, पशुपालन और जैविक खेती के लिए सहायता। हर सहायता की अपनी शर्तें हैं। फार्मर्स कार्ड आमतौर पर 2 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन इस बार इसकी अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। पहले से रजिस्टर्ड किसानों के लिए ये मुफ्त है, जबकि नए रजिस्ट्रेशन के लिए ₹400 देने होंगे। और संस्था स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड के मैनेजर रूपेश भिखारी को सुनती है।
1: Quand légumes sont capables de disperser à 10 hectares de terrain, bien sûr, c'est de cause d'une culture intensive. Et élevé aussi, dépendant qui élevage qui se sert, même si le nombre d'animaux qu'il y a énorme, vous êtes capable d'enregistrer. Même chose pour un agroprocesseur, donc nous causons en termes de small enterprise. Cette définition du pareil, comment coûte un animal richesse, ça veut dire que c'est un certain nombre d'employés et ce, turnover annuel qui pas dépasse 10 millions d'euros. Maintenant, à partir de là, un différent qui est un côté small farmers welfare fund pour un planteur. C'est une mesure d'accompagnement tout d'abord, qui est en termes de subvention, donc c'est utilisant son loban coopération mécanique et planter habiter. Je t'ai si gain ce qu'on appelle un income support à travers le winter allowance. Et ben éleveur gagne subvention le ben mange des animaux. On a aussi ben les teams qui sont capables de faire application pour small farmers welfare fund.
0: स्थानीय स्तर पर ही हम आपको बता रहे थे कुछ देर पहले सुर्खियों।

0: में कि मॉरिशस में निर्यात बढ़ा है लेकिन इस सेक्टर में नौकरियां कम हुई हैं। 2026 की दूसरी तिमाही में निर्यात बढ़ा, वहीं सिर्फ तीन महीनों में 771 नौकरियां चली गई। मॉरिशस एक्सपोर्ट एसोसिएशन यानी मेगजा की डायरेक्टर लीलावती राजमंजूसरी के मुताबिक इसकी एक वजह मशीनों और नई तकनीक का बढ़ता इस्तेमाल है और कई कंपनियां कम कर्मचारियों के साथ ज्यादा काम कर पा रही हैं। दूसरी तरफ देश की कामकाजी आबादी की उम्र बढ़ रही है और इसकी संख्या घट रही है और अब भी विदेशी कामगारों पर काफी निर्भर हैं जबकि उन्हें रोजगार देने की लागत भी बढ़ी है। लीलावती राजमंजूसरी को सुनते हैं विवरण रजनी बिकर।
1: सेक्टर में संस्थागत स्वायत्ता की दृष्टि से जो भी निवेश किए जा रहे हैं उनके सकारात्मक नतीजों से लाभ उठा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत हद तक श्रम शक्ति पर निर्भर करते हैं, चाहे मॉरिशन कामगार हो या फिर विदेशी कामगार हो। ऐसे में श्रम शक्ति के बढ़ते खर्चों के चलते अपनी सभी कंपनियों से मशीनीकरण की ओर जाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित कर रही हैं। कम लोगों को काम करना होगा, सेक्टर में मशीन से काम बढ़ाने से इसके अच्छे नतीजे प्राप्त हो रही हैं। सेक्टर में ज़्यादा उत्पादकता होगी और समय के साथ साथ ये ज़्यादा कारगर भी होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आबादी कम हो रही है, बहुत से नौजवान मॉरिशन विदेश जा रहे हैं, विदेशी कामगारों पर ज़्यादा निर्भर हो रहे हैं, कामगारों से संबंधित खर्च भी बढ़ रहे हैं, उत्पादन खर्च भी बढ़ रहे हैं, मशीन के साथ काम करना रोबोट के इस्तेमाल की ओर भी बढ़ रहे हैं।
0: पोटली बंदरगाह तेजी से डिजिटल हो रहा है लेकिन स्थानीय मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए दो दस्तावेज अभी कागज पर दी जाती हैं। इनमें मछली उतारने की अनुमति और डिपार्चर क्लियरेंस शामिल हैं। आवेदन पहले से वेसल क्लियरेंस सिस्टम में दर्ज होता है लेकिन सिस्टम अभी ये दस्तावेज खुद तैयार नहीं कर पाता। मॉरिशस पोर्ट्स अथॉरिटी और फिशरीज डिविजन ने इसे पूरी तरह डिजिटल बनाने पर काम कर रही है। मकसद है कागज का इस्तेमाल खत्म करना और बंदरगाह की सेवाओं को 24 घंटे ऑनलाइन उपलब्ध कराना। मॉरिशस में बुजुर्ग लोगों की संख्या बढ़ रही है और आने वाले समय में इसका असर स्वास्थ्य, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पर भी पड़ेगा। इसी मुद्दे पर मॉरिशस फैमिली प्लानिंग एंड वेलफेयर एसोसिएशन आज अपने 69वें स्थापना दिवस पर एक कार्यशाला आयोजित कर रहा है। विषय है मॉरिशस में आबादी में बदलाव और बढ़ती उम्र। मकसद है इन बदलावों का समाज और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को बेहतर तरीके से समझना। जब किसी देश में काम करने की उम्र वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है तो इससे आर्थिक विकास को फायदा मिल सकता है, लेकिन मॉरिशस में जन्म दर कम हो रही है और लोग पहले से ज्यादा उम्र तक जी रहे हैं, इसलिए बुजुर्ग आबादी लगातार बढ़ रही है। कार्यशाला में महिलाओं के खिलाफ हिंसा, कम उम्र में गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी, युवाओं में नशीले पदार्थों का इस्तेमाल और बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार जैसे सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। 20 साल से ज्यादा समय से बंद रोजिल का प्लाजा, क्या अब इसके दोबारा खुलने का इंतजार खत्म होने वाला है? कल इसके तीसरे चरण के काम का जायजा लिया गया। 256 मिलियन रुपए की इस परियोजना का करीब 18-20% जहां काम पूरा हो चुका है। प्रांतीय प्रशासन मंत्री रंजीव वुचित के अनुसार लक्ष्य सितंबर 2027 में थिएटर को फिर से खोलना है। वहीं कला और संस्कृति मंत्री महेंद्र गुंडिया ने करीब 1000 सीट वाले इस थिएटर को मॉरिशन कलाकारों के लिए अहम कदम बताया है।
2: Il n'y a pas un petit théâtre qui peut faire là, hein, parce que 1000 places, c'est une grosse affaire. Et mon seul souci, c'est mon envie qui vous ban artiste, il y a une place pour être capable d'exercer. Donc, si mon âge, c'est pour représenter ban artiste. Qui je connais dans un mois à venir, septembre l'année prochaine, travail pour terminer. Et après, nous guetter la manche à suivre. Comment pour faire pour recommencer de l'isolette de noblesse?
0: शिक्षा, संवाद और मानवीय मूल्यों के जरिए शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना, इसी उद्देश्य से महात्मा गांधी संस्थान में संस्कृत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का संयुक्त आयोजन हुआ। शिक्षाविदों और छात्रों ने शांति के अलग अलग पहलुओं पर विचार साझा किए। संस्कृत
3: ओम शांति ही शांति ही शांति ही। भारतीय चिंतन में शांति की कामना सदियों से व्यक्ति, समाज और पूरे विश्व के कल्याण से जुड़ी रही है। शांति में निवेश हर व्यक्ति के लिए हर जगह और हर दिन। इसी संदेश के साथ महात्मा गांधी संस्थान ने शिक्षाविदों और छात्रों को एक मंच पर

0: लाया, भारतीय दर्शन में शांति का क्या अर्थ है? प्रोफेसर सत्यपाल सिंह के अनुसार शांति केवल संघर्ष का अभाव नहीं, ये व्यक्ति के भीतर के संतुलन से भी जुड़ी है।
1: व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य एक ही है, सुख से जीना, और यदि उसी में अशांति होगी तो फिर जीवन क्या है। अब परिवार के स्तर पर, व्यक्ति के स्तर पर, समाज के स्तर पर, और चलें तो राष्ट्रों के स्तर पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो झगड़े हैं, जो शांति का अभाव है, वो आपको कहीं जीने ही नहीं देता है। आप पूरे विश्व में देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको हमेशा कोई ना कोई युद्ध, कोई ना कोई झगड़ा, बाउंड्री डिस्प्यूट्स हमेशा दिखाई देते हैं। इस झगड़े का मूल कारण है सामंजस्य का अभाव और मनुष्य की पूरी व्यवस्था में ग्रीड, लालच। जब हमारा ये शांत होगा, ये समाप्त होगा, तो हम शांति से रह पाएंगे, और वो तभी है जब लिव एंड लेट लिव की बात करेंगे, जब हम जियो और जीने दो की बात करेंगे, जब हम पूरे समाज को एक मानेंगे, वसुधैव कुटुंबकम का जब भाव होगा, जो हमारी भारतीय परंपरा है, जो ऋषियों की परंपरा है, उसमें यही कहा है कि जीवन जो है वो एक व्यक्ति का नहीं है, समष्टि में जो जीवन मुझ में है वही आपके अंदर भी है, वही औरों के अंदर भी है, संसार के हर व्यक्ति में ही नहीं है। हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारों में सभी पशु पक्षी प्राणी जड़ चेतन सब आ जाते हैं।
0: वहीं डॉक्टर लीवा कॉपेन ने शांति को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में सामने रखा जो शिक्षा, नैतिक मूल्यों और हमारे कार्यों के जरिए लगातार आगे बढ़ती है।
2: Dans cette réflexion, nous aussi engage comment est-ce que tout un chacun, à différents niveaux de la société ou à différents niveaux de leur existence, peuvent aussi bénéficier de ce moment paisible, de cet environnement paisible, et comment est-ce que nous capables de chaque individu comme une mine riche en pierres précieuses et saisissent l'éducation qui peut capable vraiment faire les livrer ça un trésor là.
0: अलग अलग दृष्टिकोण, लेकिन संदेश एक, शांति केवल एक विचार न रहे बल्कि हमारे रोजमर्रा के व्यवहार और समाज का हिस्सा बने। फ्लाई दुबई की दुबई से तेल अवीव जा रही उड़ान में को पायलट के हमले की जांच जारी है। उड़ान के दौरान भारतीय कप्तान स्मिथ पर चाकू से हमला हुआ, जिसके बाद विमान को सऊदी अरब में आपात स्थिति में उतारा गया। इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का दावा है कि को पायलट कट्टरपंथी विचारों से प्रभावित था, हालांकि हमले का असली मकसद अभी साफ नहीं हुआ है। अधिकारी ये भी जाँच कर रहे हैं कि क्या ये आतंकवादी हमला था और क्या इसका ईरान से कोई संबंध था। फिलहाल ईरान से किसी संबंध की पुष्टि नहीं हुई है। विमान में 170 से ज्यादा यात्री सवार थे। और अब चले जानते हैं कि स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा। हमारे इलाके पर हल्की हवाओं का असर है। पूर्वानुमान है कि आज सुबह के दौरान देश भर में धूप खिली रहेगी, शाम को भी देश भर में मौसम सुहाना रहेगा। देर रात को देश भर में बादल घिराएंगे। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान शहरी इलाकों पर 19 से 21, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके इससे ज्यादा तक पहुँच सकते हैं। दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। सूर्योदय 5:51 पर, सूर्यास्त 6:07 पर।

0: तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे कादिर, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on MBC

जैक्सन लेन पाल्मा का ट्रोबोन में, जैक्सन लेन पाल्मा का ट्रोबोन में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के रूप नारायण लोकी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह के 10 बजे उनकी बेटी प्रीतम लोकी के मकान का ट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पाल्मा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे 10 AM। सुभाष चंद्र बोस स्ट्रीट फोंजीसाक में 83 ईयर्स ओल्ड के प्रेमलाल हीरामन की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दोपहर बाद 2 बजे उनके बेटे राजेश कुमार हीरामन के मकान फोंजीसाक

0: से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्रियोले की शमशान भूमि ले जाया जाएगा। क्रिमेशन टू दिया 2 PM। क्लोसल रोड फिनिक्स में अब्दुल रहीम गोपोल इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज सुबह के 11 बजे अल इंसान पोर्टलुई से निकालकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए जमा मस्जिद ले जाया जाएगा और बाद में दफनाने के लिए मेबर्ग का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। रामकिशन लेन रेबेयर रोजबेल में 81 साल के 81 ईयर्स ओल्ड के मुनेश्वर दिनू की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें जगदीश कोफेयर के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के एक बजे उनके बेटे रवि दिनू के मकान रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारी जानी रोजबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टूडे एट 1 PM। Chemin la Plaine Notre-Dame, 82 years old, लकिंदर दुर्गा की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन की 10 बजे उन्हीं के मकान नोट्रडाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तेमिनिस थ्रियोले की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टू दिया 10 AM। गाबी लेन पाल्मा कट्रोबोन में 84 साल की 84 ईयर्स ओल्ड की समुद्री फेराग की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम रामबरन, लोग उन्हें सबीता के नाम से अधिक जानते थे और वे पहले वैद्य रहती थी। उनके अर्थी आज सुबह के 10 बजे उनके बेटे रवि फेराग के मकान कट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पाल्मा कट्रोबोन की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डे 10 AM। सुकुलेन थ्रॉबुटिक में 48 साल के 48 ईयर्स ओल्ड के अनिरुद्ध सिनाथ की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे उन्हीं के मकान थ्रॉबुटिक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन वेल थ्रॉबुटिक की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टूडे एट 11 AM। रॉयल रोड ऑरिएटा में 72 साल की गीता दुखरन की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके बेटे अश्विन दुखरन के मकान रॉयल रोड ऑरिएटा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगहा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। रॉयल रोड 400 में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड की माउटी धंग्रुप की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें सुकवंती के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके बेटे धीरज हरी के मकान कत्सोय से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। रॉयल रोड कोंकारो में 72 साल की 72 ईयर्स ओल्ड की विश्वानी हरादन की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम बीरज, लोग उन्हें विश्वानी के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज इनके 12 बजे उनके बेटे गिरीश के मकान कोकाहो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोको की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट नून। रॉयल रोड इक्वायो में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड के जयप्रकाश भगवत की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें धर्म के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दोपहर बाद दो बजे उन्हीं के मकान रॉयल रोड इकोनियो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। ग्रांबेलियम में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड के विलामुतु पालियों की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें सिनेवेन के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दोपहर बाद 2 बजे उनके बेटे पुमालेन पालियों के मकान ग्रांबेलिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिवियर दे क्रियोल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: On MBC Play and MBC.MU.
2: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
3: Radio Musty. Musty.

0: मॉर्निंग यू वेल टू नाउ एमटी रेडियो मस्ती सुबह के 7 बजे है
1: मॉर्निंग बीट
2: चेंज RM2 Radio Musti in the mix.

0: इसी गाने के साथ वार्म वेलकम, गुड मॉर्निंग टू यू.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Masti.
0: चार मिनट होने को है, आप जुड़े हैं RM2 Radio Masti के साथ. गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हो आप? वैसे इस महीने के दूसरे दिन वीकेंड से फ्राइडे 2nd of October में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. वेल इट्स फ्राइडे, ही तो मूड तो चेंज ही होना ही होता है. वैसे करना पड़ता है, इट्स फ्राइडे एंड वी हैव टू मैच अप द डे एंड द बीट एंड एवरीथिंग एंड द मूड. एंड टॉकिंग अबाउट फ्राइडे, यार बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारे लोग अभी तो खुश हो रहे हैं. वैसे उठने में देरी नहीं हो रही है क्योंकि आज तो आखिरी दिन है सुबह उठने के लिए. सो हैव अ वंडरफुल स्टार्ट ऑफ द डे यहाँ पर आपके लिए, आपकी खिदमत में, आपकी सेवा में हाजिर हूँ मैं मनीषमा. इन द मॉर्निंग शो हैव अ वंडरफुल स्टार्ट ऑफ द डे. हियर वी गो.
1: Morning Beat.
2: RM2 Radio Musty in the mix.

0: जी मुस्कुरा लीजिए. यहाँ पर सुबह सुबह यहाँ पर हम पहुंच जाते हैं टू शेयर सम रियली गुड वाइब्स एंड टू शेयर सम रियली गुड एनर्जी आउट देयर. वैसे आज यू नो 2nd ऑफ अक्टूबर मार्क्स द शेयर्ड बर्थ एनिवर्सरीज ऑफ महात्मा गांधी एंड द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ऑफ इंडिया. और यहाँ पर साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं इट्स टाइम फॉर यू टू सेलिब्रेट योर बर्थडे एज इट शुड बी विद RM2 रेडियो मस्ती. हियर वी गो.
1: Welcome to RM2. Musty Mornings Radio Musty.
0: This is some of the famous quotes of Mahatma Gandhi. आप तो जानते हैं, be the change that you want to see in the world. तो आप जिस बदलाव को आप दुनिया में देखना चाहते हैं, पहले वह बदलाव स्वयं में लाइए, ये कहते हैं. वैसे इस मॉर्निंग में ये मूड और ये कोड हम बरकरार रखना चाहते हैं. जो बदलाव आप देखना चाहते हैं तो स्वयं में लाइए एंड बी द चेंज, बी द पॉजिटिव चेंज. यहाँ पर हम पॉजिटिव चेंज तो नहीं है, लेकिन पॉजिटिव मूड को बरकरार रखते हैं. 549 and 1294 पर हो जाए शुरू टू रजिस्टर फॉर योर बर्थडेज, लेडीज एंड जेंटलमैन. यस, ऑल दोस जो आपके दिमाग में है कोई आज स्पेशल अपना जन्मदिन मना रहे हैं, तो आप बेशक यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं 549 and 1294 पर. अपना खुद का नाम, आपका खुद का फ़ोन नंबर और द बर्थडे बॉय और गर्ल्स नंबर, एड्रेस एंड नेम ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट. रजिस्टर राइट नाउ. हैव अ वंडरफुल स्टार्ट, हैव अ वंडरफुल मॉर्निंग, हैव अ wonderful birthday with us here on RM2 Radio Musty.

James. RM2, Radio Musty, in the mix.

0: रेडियो मस्ती
1: भविष्य खातिर हमनी लगे हरमेशा कोनो न कोनो योजना रहेला। लैका के पढ़ाई, एगो वायाज, घर के रेनोवेशन, यानी एगो पूरा जीवन जिए के। सिकुम अपन प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट प्लान्स के माध्यम से तोहरा तोहर आर्थिक भविष्य के विस्तार पर कोसे ये करी। आर जब रिटायर होए के बखत आए त सिकुम के निजी पेंशन योजना से सकबा जीवन के ई नवा पड़ाव के नवा सांस दे। तोहर भविष्य तोहर आज पर निर्भर करेला, इनकरा आज ही से तैयार करे के चाहे। जस्ती जानकारी खातिर हमनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर या sikkim.mu पर जाय ह। इमे नियम आ शर्त भी लागू बा। सिकुम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
2: सिकुम ग्रुप, ए लाइफटाइम कमिटमेंट।
3: RKG क्लासिक प्योगी विशेस ऑल डिवोटीज अप्पा इस गोविंदन। RKG क्लासिक प्योगी अकंपेनिंग यू इन योर प्रेयर्स सिंस 1932 एन इंडियन क्लासिक प्योगी इंपोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय RR रैपिड सर्विसेज लिमिटेड।
0: RM2 रेडियो।

इसे थोड़ी देर में हम भरेंगे विद अवर स्पेशल सरप्राइज बर्थडे ऑफ समवन रियली स्पेशल. यहाँ पर आप रजिस्टर करना कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो ये है नंबर 5499124 पर. ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस एंड डेडिकेशंस.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: चलिए जी, यहाँ पर आप सभी का फिर से स्वागत है. 7:50 हुए हैं एंड आई गेट हियर अ बर्थडे सरप्राइज. हम बात करते हैं सीधा डायरेक्टली टू मिस्टर वीर रामा. गुड मॉर्निंग टू यू. हेलो,
3: मॉर्निंग.
2: हाउ आर यू मिस्टर वीर जी?
3: फाइन.
2: आप बहुत खुश जैसे सुनाई दे रहे हैं आप ऑन एयर. आपको पता नहीं था ना ये सरप्राइज आपके लिए आ रहा है. वैसे वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू वीर जी. एंड इट्स RM2 रेडियो मस्ती कॉलिंग यू टू विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे.
3: थैंक यू वेरी मच.
2: वैसे ये
3: ऑन बिहाफ ऑफ होम.
2: ओह, मैं बताती हूँ, इसलिए मैं बताती हूँ अभी. आपकी सिस्टर इन लॉ का नाम है खुशबू सीतामणि वाकवा. उन्होंने सरप्राइज किया आपके लिए.
3: ओके
2: ओके, तो आपके दिमाग में कौन था? वैसे आप करते क्या है? वैसे वीर रामा जी, ऐसा करते हैं आप कि आप हाउस प्लान बनाते हैं. आप रहते हैं रिव्या देजोंगी, राइट?
3: यस यस यस, आई एम अ गोस्टमैन.
2: ओके जी, सो काम कैसे चल रहा है? सब ठीक है?
3: या फाइन, ऑल गुड.
2: ओके जी, तो आप आज अपना जन्मदिन काम में मना रहे हैं या फिर घर पे छुट्टी?
3: ऑलरेडी इन द ऑफिस.
2: ऑलरेडी इन द ऑफिस. कैसा, आप कैसा कर रहे हो? लेकिन आज बर्थडे प्लान के लिए कुछ स्पेशल आपने प्लान किया है?
3: We'll be at home early.
2: ओके जी. So wish you very very happy birthday. वैसे आपको साथ ही साथ बता दूं कि आपको क्या मिल रहा है. लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से ये वाउचर आपको मिल रहा है. हैप्पी बर्थडे, कंग्रेचुलेशंस.
3: थैंक यू.
2: हैव अ गुड डे. आप कुछ डेडिकेट करना चाहेंगे?
3: यस, आई वुड हैव टू थैंक्स माय सिस्टर इन लॉ वेरी वेरी मच.
2: और
3: होप एक ग्रेट जर्नी इन दिस लाइफ टू.
2: Okay, thank you so much. Have a wonderful day. Celebrate it well. Bye-bye.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
1: Sports News. 7:33 होने को है, जुड़े RM2 रेडियो मस्ती के साथ है। वी गो फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। वी गॉट हियर अरविंद जी, गुड मॉर्निंग टू यू।
2: गुड मॉर्निंग आपको, गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स। द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड, ला ट्रोइज़ियम ला बोन, जर्मनी के मैनेजर यर्गन क्लॉप के लिए पहली जीत। द नेशनल मैनशाफ्ट ने सर्बिया को 2-0 से हराया। टॉम बिशॉफ का पहला गोल, फिर फ्लोरियन वर्ट्स ने जर्मनी का दूसरा गोल स्कोर किया। लिवरपूल में वर्ट्स का रंग कुछ और है, पर जर्मनी की टीम में चमकता है। इसी ग्रुप में ग्रीस और नेदरलैंड्स के बीच मैच ड्रो गया 2-2। फर्स्ट हाफ में ग्रीस 2-0 से आगे था। सेकंड हाफ में वैन डाइक और रेंजर्स नेदरलैंड्स को बचा पाए। इस ग्रुप में ग्रीस आगे है, उसके पास है 7 अंक, फिर नेदरलैंड्स 5 अंक और जर्मनी के पास 4 अंक। डेनमार्क को हराया पोर्टुगल ने, एवी जाकर पोर्टुगल ने 4-2 से डेनमार्क को हराया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बिना भी पोर्टुगल को जीतना आता है, और वो भी आराम से स्टाइल में। इसी ग्रुप में वेल्स ने नॉर्वे को 2-1 से हराया। पोर्टुगल के लिए योआओ कांसेलो, फिर गोंजालो रामोस, वितिना, योआओ फेलिक्स का गोल रहा। डेनमार्क के लिए डाम्सगार्ड और होयलैंड स्कोर कर पाए। अन्य मैच, माल्टा 1 जिब्राल्टर 1, अज़रबैजान 0 लीच्टेनस्टाइन 0, इसराइल और कोसोवो के बीच मैच 2-0, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड 2 ऑस्ट्रिया 2। यूईएफए नेशंस लीग जारी है, आज कई मैच खेले जाएंगे। इनमें मेन अट्रैक्शन बेल्जियम वर्सेस टर्की और फ्रांस इटली, बैटल ऑफ द ब्लूज, ये दो मेन फिक्स्चर्स हैं। और कल के मैचों में क्रोएशिया इंग्लैंड का स्वागत करेगा, जबकि स्पेन खेलेगा चेक रिपब्लिक के खिलाफ। कफ अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस के ग्रुप डी में कल गीनिया ने केन्या को 1-0 से हराया। कल इंडिया की फुटबॉल टीम एक फ्रेंडली मैच खेलेगी ब्राजील के खिलाफ। ट्रांसफर न्यूज में इंग्लैंड का डिफेंडर याहेल क्वांसा रियल मैड्रिड की विश लिस्ट में है। आर्सेनल और चेल्सी भी क्वांसा के पीछे हैं। मेक्सिको का टीनेज स्टार 17 साल का जिल्बेर्टो मोरा लिवरपूल के रडार में है। बोरुशा डॉर्टमुंड और बेनफिका भी उसे गोद लेने के लिए तैयार हैं। एशियन गेम्स का क्रिकेट फाइनल कल टीम इंडिया

0: पाकिस्तान के बीच होगा। भारतीय टीम ने कल श्रीलंका को हराया और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को। हॉकी में पाकिस्तान को हराकर भारतीय टीम गोल्ड मेडल के लिए खेलेगी। वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप 2027 दक्षिण अफ्रीका में लगेगा। टीम इंडिया ग्रुप ए में है, उसके साथ है वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और एक क्वालिफाइंग टीम। अगले साल अक्टूबर महीने में क्रिकेट वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका में। और इधर मॉरिशस क्लब एम और श्रीलंका के बीच पहला फ्रेंडली मैच आज कोद्दो में खेला जाएगा, दूसरा मैच 5 अक्टूबर को। तो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। आई विल कैच यू अगेन, फिर से मुलाकात होगी। टिल देन एंजॉय द म्यूजिक एंड हैव अ वंडरफुल वीकेंड अहेड। टेक केयर, बाय बाय।
1: बाय, थैंक यू सो मच अरविंद जी फॉर द लेटेस्ट डेट्स।
2: This magazine was brought to you by Quality Decor, the floor expert.
3: Morning Beat. James.
4: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: टाइटल सॉन्ग ऑफ बद्री की दुल्हनिया है वे गाओ।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings Radio Musty.
0: 7:40 होने को है, आप जुड़े हैं RM2 Radio Musty again, ladies and gentlemen. ये जो positive thinking and positive vibe और positive mood होता है, ये बहुत ही essential होती है for the morning.

0: लेडीज एंड जेंटलमैन. वैसे कहना भी चाहिए अपने आप से ही कुछ अच्छी अच्छी बातें. जी हाँ, व्हेनेवर यू वेक अप इन द मॉर्निंग, ऐसा नहीं कि अपने फ़ोन को थामो और पढ़ना शुरू करो सारे मैसेजेस, सारे प्रॉब्लम्स, एंड यू जस्ट थिंक अबाउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे एंड द डे बिफोर एंड एवरीथिंग. मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा हर रोज़ एक नई कल्चर के साथ आप उठे, कि आप हमेशा अच्छी अच्छी बातें करेंगे आपके साथ, खुद के साथ. यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग टू अपलिफ्ट यू एंड टू मोटिवेट यू. यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ. व्हाट यू से, यस, जो मेरे कंट्रोल में है आप कहो अपने आप से, जो मेरे कंट्रोल में है मैं उस पर फोकस करूंगा या फिर फोकस करूंगी, और जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसे पीसफुली एक्सेप्ट करूंगी. हमारी लाइफ में हर चीज हमारे कंट्रोल में थोड़ी ना होती है. कभी कभी सिचुएशंस हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, लोग हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बिहेव ही नहीं करते, कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन तुरंत ही नहीं मिलती. लेकिन क्या है कि वरी करने से के बजाय यू हैव टू यूज योर एनर्जी वेरी वेल, और उन चीज़ों पर लगानी चाहिए जहाँ हम कुछ पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं. इफ यू कैन कंट्रोल इट यू कंट्रोल इट, वरना जाने दो यार. बी द पॉजिटिव चेंज दैट यू वांट टू सी. ओके, हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ वंडरफुल टाइम. यहाँ पर गानों की कमी नहीं है, गुड वाइब्स की कमी नहीं है. अगर ये कोई मिल गया फॉर यू, कुछ कुछ होता है मूवी से, ये वी गो, एंजॉय करो. अरे गा तो लो, एंजॉय.
1: मॉर्निंग बीट चेंज RM2 Radio Musti in the mix.

0: सात बजकर 48 मिनट हुए, कितने सारे लोगों के आज जन्मदिन है। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, वेरी हैप्पी बर्थडे गुज आउट टू माय फूफा अशोक बधी, जो आज 66 इयर्स के हुए हैं। त्रियोले से साथ तुम्हारी है, मैसेज आया है नीस की तरफ से यशना, और दमाद जी है अनूप एंड ग्रैंड चिल्ड्रन रौनक एंड श्रेया, सो वेरी हैप्पी बर्थडे गुज आउट टू यू ईच एंड एवरीबॉडी जो आज अपना स्पेशल स्पेशल डे बना रहे हैं। स्पेशल बर्थडे गुज आउट टू माई ब्रदर यश एंड इट्स फ्रॉम सिस्टर केवी नाउ, सो एक दो तीन चलो गिनते रहो, बस पहुंच ही जाएंगे आप जहां पर आपको पहुंचना है, आपकी डेस्टिनेशन तक।
1: मॉर्निंग बीट RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
0: आज है मेरी मामा उषा रामफल का जन्मदिन, स्पेशली प्लीज डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग फ्रॉम मच्छर जिन है काजल गीतिका एंड कमलेश, ऑल्सो फ्रॉम माई पापा राजी, थैंक यू सो मच फॉर द गुड वाइब्स इन द मॉर्निंग, वेलकम।

0: जटिल रुतियाने दा टेकन फ्रॉम द मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 लेडीज एंड जेंटलमैन. बढ़ते हैं थोड़ी देर में भोजपुरी के समाचारों की ओर.
1: RM2 रेडियो मस्ती.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And RKG

0: नमस्ते, सबसे आगे स्थानीय खबर। पहले 2 रुपया के शुल्क पे पदार्थ के प्लास्टिक बोतल पर ही लागत रहल, अब एकर दायरा बढ़ा देवल गल बा। 1 अक्टूबर से घर में इस्तेमाल होके वाला सामान और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स समेत लगभग सभी प्लास्टिक बोतल पर ही शुल्क लागू बा। रोज के जरूरत के 38 सामान के ऐसे छूट देवल गल बा। इसे मिले वाला पैसा प्लास्टिक जमा करे और दोबारा इस्तेमाल की व्यवस्था मजबूत करे में लगावल जाए। आज 2 अक्टूबर के अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और महात्मा गांधी के जयंती है। भारत के आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी अहिंसा, सत्य और शांति के रास्ता अपनाई ले रहलन। आज के दिन दुनिया भर में उनकर ई संदेश याद कर रहा जाता कि मतभेद के हल हिंसा से नहीं बल्कि बातचीत और आपसी सम्मान से निकले के चाहिए। फॉर्मल स्कर्ट की अवधि 31 दिसंबर ले बढ़ा देवल गल बा। ई कार्ड रजिस्टर्ड छोटा किसान और पशुपालक लोगन के कई तरह की सरकारी मदद पावे में काम आवेला। पहले से रजिस्टर्ड लोगन खातिर ई मुफ्त बा, जबकि नवा रजिस्ट्रेशन खातिर 400 रुपया देवे के होई। मोबीज एप्लीकेशन से किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सरकारी मदद खातिर आवेदन भी कर सकेलन। पोटली बंदरगाह तेजी से डिजिटल हो रहल बा। बकेर स्थानीय मछली पकड़े वाला नाव खातिर 2 दस्तावेज आज भी कागज पर दिहल जाला। मौशा स्पोर्ट्स अथॉरिटी और फिशरीज डिवीजन अब ई प्रक्रिया की पूरा तरह डिजिटल बनावे पर काम करता, जमे बंदरगाह की सेवा 2400 घंटा ऑनलाइन मिल सके। 20 बरिश से जैसी समय से बंद रोजल के प्लाजा के सितंबर 2027 में फिर से खोले के लक्ष्य बा। कल तीसरा चरण के काम के जायजा लिहल गल। 256 मिलियन रुपया की यह परियोजना के करीब 18-20% काम पूरा हो चुकल बा। थिएटर में करीब 1000 सीट रही। और ये दूसर देश के खबर में जो आज सुर्खी में बा, फ्लाई दुबई के दुबई से तेल अवीव जा रहल उड़ान में सह पायलट यानी को पायलट के हमला की जांच जारी बा। भारतीय कैप्टन स्मिथ पर चाकू से हमला के बाद विमान के सऊदी अरेबिया में आपात स्थिति में उतारल गल। हमला के असली कारण अभी साफ नहीं बा। अधिकारी ये भी जाँच करत हवन जा कि का ये आतंकवादी हमला रहल और ये एकर ईरान से कोनो संबंध रहल कि नहीं। फिलहाल ऐसन कोनो संबंध के पुष्टि नहीं भइल। तो ये रहा हमने के भोजपुरी में समाचार। हमने के सुनला जा, धन्यवाद। Your news on NBC Play and NBC.mu.
1: Morning beat. Oh God, one more remix. A good beat for your morning show.
2: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: लीजिए, ऐसा लग रहा है कि वीकेंड आने वाला ही है। वैसे आज तो आखिरी दिन है फ्राइडे, थोड़ा जी ले। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। इट्स द सेकंड आवर ऑफ योर मॉर्निंग बीट। 8:08 हुए हैं अभी के लिए, लेते एक छोटा सा ब्रेक, पूछते हैं मौसम का हाल।
1: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स,
2: ओनली टू विनर्स।
3: चले जानते हैं कि स्थानीय स्तर पर आज दिन भर मौसम का हाल कैसा रहेगा। हमारे इलाके पर हल्की हवाओं का असर है। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वानुमान, आज सुबह के दौरान देश भर में धूप खिली रहेगी, शाम को भी देश भर में मौसम अच्छा रहेगा, रात को देश भर में बादल घिरे रहेंगे। तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 15 से 17, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान सहली इलाकों पर 19 से 21, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, विशेषकर दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 5:51 पर, सूर्यास्त शाम

0: 6:60 पर होगा।
1: Prix malin débarque chez Winners. Du 25 septembre au 8 octobre, profitez de super offres sur une sélection de produits du quotidien dans votre Winners préféré. Le kilo de lait entier en poudre Snowy à 219,95 € et le litre de nettoyant ménage et Doha à 89,95 €. De nombreuses offres vous attendent dans le rayon. Alors remplissez votre caddie à prix malin et profitez-en chez Winners. Retrouvez notre brochure sur winners.mu.
2: On est tous Winners.
3: RM2
4: Radio Musti।
3: जब बात यार्ड सेल की होती है तो हम ख्वासिसा की ही बात करते हैं। जब बात जबरदस्त ऑफर्स की होती है तो हम ख्वासिसा की बात करते हैं। और जब बात बहुत कम कीमतों की होती है तो ख्वासिसा की ही बात होती है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि 1, 2 और 3 अक्टूबर को ग्रैंड ख्वासिसा यार्ड सेल होने जा रहा है लुशी पार्क जिनफई रिश्ते में। वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, फोन, लैपटॉप और छोटे छोटे अप्लायंसेस पर 80% के डिस्काउंट, यानी शॉपिंग का एक जबरदस्त मौका। और वहाँ पहुँचना भी बहुत आसान है। गौजिरो से फ्री शटल सर्विस अवेलेबल होगी। तो डेट अच्छी तरह याद रखना, 1, 2 और 3 अक्टूबर।
5: Hey, ou péro d'un travail, ou envie de une nouvelle direction ou carrière, Rélan Fiana Limité peut organiser une recrutement de beau Vallon Mall que de l'entrée Food Court. Ça samedi 3 octobre 2026 là, depuis 10h grand matin jusqu'à 4h tantôt, Vinzouen nous l'équipe et découvrir une opportunité de travail de plaisir domaine. Si à tout, de péro de technicien qualifié dans électromécanique, mécanique, civil, électrique, plomberie et beaucoup les autres domaines. Pas oublier à nous CV, nous plaît à nous.
3: RM2
4: Radio Musti.

0: singer from the movie Drive for You, Makhna. Ladies and gentlemen, वैसे एक बात तो हम कहना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग घर को छोड़कर बस काम की ओर बढ़ते हैं. Like thinking positive always, you know, be very very cautious on the road and be back home also safely. And यहाँ पर हम पहुँचा देते हैं आपको सड़कों पर. जी हाँ, and let's have a quick traffic update with Constab Sukai.
1: RM2 traffic update.
0: A very good morning to you, Constab.
2: Bonjour, Manishma.

0: to Radio Musti. Moments that matter with Sikom. जुन लम्हा हमनी खातिर मायना रखेला समय के रहत हमनी के चाही ओकर खातिर तैयारी करे के एक दिन ऐसन आए जब काम की गति धीमा हो जाए और फिर पूरा थम जाए। तब जीवन के एक नवा अंदाज में जिए के पड़ी। जुन आज दूर लौकता काल वो उतना दूर नहीं रही, पर तोहर आर्थिक भविष्य हमेशा जरूरी रही। सिकुम के पर्सनल पेंशन योजना और इन्वेस्टमेंट प्लान्स के संगे अपन बचत पर खुद नियंत्रण रखिया और अपन भविष्य के बेहतर तैयारी करा। सिकुम लगे तो हर गोल्स और इन्वेस्टमेंट के टाइम पीरियड के अनुसार अलग अलग समाधान मौजूद बाटे। सिकुम तो हर आज काल और उस सब खास लम्हा खातिर जो मायना रखेला। जस्ती जानकारी खातिर हमनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर या sikum.mu पर जाइह। इमे नियम और शर्त भी लागू बा। सिकुम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला। It was moments that matter with Sikum.
1: RM2
2: Radio Musti.
3: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
4: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: Radio Musti, all the way.
5: जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।
2: आठ बजकर 24 मिनट हुए हैं। Let's see, here we go for the quote of the day. Peace comes from within. Do not seek it without. Peace comes from within. Do not seek it without. ये बुद्धा कहते हैं। इस थॉट का मतलब ये है कि सुकून बाहर के सर्कमस्टेंसेस से नहीं बल्कि हमारे अंदर की स्टेट ऑफ माइंड से आता है। हर वक्त सब कुछ हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग थोड़ी ना चलता है। कुछ लोग डिसअपॉइंट करेंगे, कुछ सिचुएशंस डिफिकल्ट होंगे और कभी कभी लाइफ अनएक्सपेक्टेड टर्न्स ले लेती है, लेकिन हम अपने अंदर का पीस प्रोटेक्ट करना चूज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं, हर सिचुएशन को प्रूव करना भी जरूरी नहीं होती। कभी कभी अपने पीस को प्रोटेक्ट करना सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स होता है। गुड मॉर्निंग।

दिस वन के साथ टू ऑल दोस ट्यूनिंग टू आरएम टू रेडियो मस्ती जो एक दूसरे को छेड़ रहे हैं इस गाने के साथ मैं जानती हूँ दिल की फ्रीक्वेंसी चलिए जी हेलो वांट टू डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर माय पापा राजन हु इज 72 years old today. Best wishes from elder daughter Geeta, Meenu hai granddaughter Pooja and Priya, Ritika, grandson Pawan, wife Uma and whole Mahadev family of their Hoj also. Good morning ji. Kaise ho aap? Main to theek hu. Yahan par please next song is to Lakshmi Kumari Sita on her birthday from Ramstown from her friend Brinda. Oh, bellos.

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: आठ बजकर 40 मिनट हुए हैं एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर हम बात करते हैं हर रोज एक फ्रूट के बेनिफिट्स के बारे में. कल हमने शुरुआत की थी अबाउट एप्पल, वन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे. यहाँ पर हम बात करने वाले अब बनाना. ओके, बनाना यानी कि केला एक सिंपल और न्यूट्रिशियस फूड है जिसे डेली रूटीन में इंक्लूड करना काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए. केले में क्या होता है कि पोटेशियम होती है, विटामिन बी, B6, विटामिन सी, फाइबर और नेचुरल कार्ब्स जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. पोटेशियम मसल्स को नॉर्मल और एक्चुअली मसल्स और नॉर्मल ब्लड प्रेशर को फंक्शन करने के लिए सपोर्ट करता है. फाइबर जो होती है डाइजेशन के लिए अच्छा होता है और नेचुरल कार्ब्स बॉडी को क्विक एनर्जी दे देता है. ये है क्विक रिलीज ऑफ शुगर इन योर बॉडी, ये बनाना करता है. और आप इसे ब्रेकफास्ट में यूज कर सकते हैं, वर्कआउट से पहले, या फिर आफ्टरनून स्नैक के रूप में भी आप ले सकते हैं. आप इसको वैसे ढल भी सकते हैं जैसे दूध में, ओट्स में, योगर्ट या नट्स के साथ आप बनाना. और ये जो इसका फिलिंग है न्यूट्रिशियस हो सकती है आपके लिए. कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं इसके साथ. सो रोज की बिजी लाइफ में एक हेल्दी और टेस्टी चॉइस चाहिए, तो ये जो केला है ना आपकी डेली रूटीन में आप उसको एक हिस्सा बना सकते हैं. नेचुरल भी है, स्वीटनेस भी है इसमें और न्यूट्रिशियस भी हो सकता है आपके लिए. So just consider the banana every day. वैसे कुछ लोगों के घर में तो bananas होते हैं लेकिन उसको आप ignore ना करें तो बेहतर होगा आपके लिए. Okay जी, यहाँ पर continue करते हैं with the good vibes and good selection of songs. Tukur tukur from the movie Dilwale. Here we go, enjoy कीजिए.
0: Morning beat.
3: Oh God, one more remix.
0: A good beat for your morning show.
1: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: रेडियो मस्ती दिल की फ्रीक्वेंसी।
1: Welcome to RM2
2: Musty Mornings Radio Musty.
1: आठ बजकर 52 मिनट हुए हैं। Good morning.
3: ये तो मस्त जोड़ी हो गया अभी।
1: Yes.
3: 8:52.
1: मैं इंतजार करते करते थक गई कि कब आएगा, कब बात करेंगे।
3: देखो ऐसा होता है कि इंतजार के चक्कर में तो एक नया प्लान भी मिल गया। तुम क्या बात कर रहे हो?
1: Actually, I just wanted to say something. कि मैंने कल डिस्कवर किया, लेकिन ये जो नासा है ना, उन्होंने डिस्कवर किया है 2022 में।
3: क्या
1: टॉकिंग अबाउट साइंस, साइंस की दुनिया एक फैसिनेटिंग डिस्कवरी कर रही है। एंड वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट द एस्ट्रोमिल्स की जो GJ 1390, उसका नाम
3: है क्या?
1: GJ 1390B प्लैनेट का नाम है।
3: क्या बात कर रहे हो, एक प्लैनेट?
1: यस, उन्होंने डिस्कवर किया है कि ये जो प्लैनेट है रोटेट करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। रोटेट करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऐसा उन्होंने कहा कि बैकवर्ड्स मूव करने के चक्कर में उन्होंने डिसाइड किया कि दे विल ट्राई टू फाइंड आउट कि ये जो सिस्टम है, हमारी जो दुनिया की सिस्टम है, हमारी जो मिल्की वे का सिस्टम है, पता चल सकता है बिकॉज ऑफ दिस प्लैनेट।
3: पता है तुम जब दिन में देखने की कोशिश करती हो प्लैनेट्स को, क्यों नहीं दिखते?
1: मुझे दिखाई नहीं देता।
3: नहीं दिखते इसलिए नहीं क्योंकि
1: मुझे पहाड़ दिखाई देते हैं,
3: दिन में तारे दिखते हैं ना इसीलिए।
1: सुबह को कहाँ दिखता है?
3: नहीं वैसे भी मेरे को पप्पू मिला था सुबह, उसने कहा कि मुझे नासा ज्वाइन करना है। मैं कहा नो, अगर तूने ज्वाइन कर ले तो नासा नहीं रहेगा, वो हो जाएगा सत्या नासा।
1: मॉर्निंग बीट, ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
2: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

वैसे इस गाने के साथ हमको इजाजत दीजिएगा, हम वापस आने वाले हैं मंडे. यू हैव अ वंडरफुल वीक एंड अहेड. विकास के लिए जगह बनाइए. हैव अ वंडरफुल टाइम. बाय, टेक केयर. म्यूजिक ऑल डे.

सभी को, जहां पहली अक्टूबर से मॉरिशस में लगभग सभी प्लास्टिक बोतलों पर 2 रुपए का शुल्क लागू हो गया है। रोजमर्रा की जरूरत के 38 सामानों को इससे छूट दी गई है। इस रकम का इस्तेमाल रिसाइकलिंग व्यवस्था को मजबूत करने में किया जाएगा। और आज 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और महात्मा गांधी की 157वीं जयंती है। दुनिया भर में शांति, संवाद और आपसी सम्मान के उनके संदेश को आज याद किया जा रहा है। फार्मर्स कार्ड की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। पहले से रजिस्टर्ड छोटे खेतीहरों और पशुपालकों के लिए आपको बता दें कि ये सुविधा मुफ्त रहेगी, जबकि नए रजिस्ट्रेशन के लिए 400 रुपए देने होंगे। और मॉरिशस में निर्यात की बात करें तो निर्यात बढ़ा है, लेकिन 3 महीनों में इस सेक्टर में 771 नौकरियां कम भी हुई है। मेक्सा के मुताबिक मशीनों और नई टेक्निक का बढ़ता इस्तेमाल इसकी वजह है। पोर्ट लुई बंदरगाह की पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में काम जारी है। वहां स्थानीय मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए 2 दस्तावेज अब भी कागज पर दी जाती हैं, जिन्हें अब डिजिटल करने की तैयारियां चल रही हैं। 20 साल से ज़्यादा समय से बंद रोसेल के प्लाजा को सितंबर 2027 में फिर से खोलने का उद्देश्य सरकार ने रखा है। 26 करोड़ 56 लाख रुपए की परियोजना का करीब 18-20% काम फिलहाल पूरा हो चुका है। और अब ये खबर जो कल से काफ़ी सुर्खियों में है, फ्लाई दुबई की दुबई से तेल अवीव जा रही उड़ान में को पायलट के हमले की जाँच जारी है। हमले का मकसद अभी साफ नहीं है और ईरान से किसी संभावित संबंध की भी जांच की जा रही है। इसके साथ ये समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: 2nd अक्टूबर फ्राइडे का दिन हे गुड मॉर्निंग नौ बजकर छह मिनट और आज का दिन थोड़ा स्पेशल अरे इसलिए क्योंकि आज है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी को याद करते हुए और दुनिया को एक सिंपल सी रिमाइंडर की कहानी सुनाते हुए कि हर प्रॉब्लम का सलूशन ढुम ढुम नहीं होता, यानी कि मारपीट नहीं होती, कभी कभी एक शांत कॉन्वर्सेशन, एक सॉरी या फिर चलो बात करते हैं ना, ये सिचुएशन कंप्लीटली चेंज कर सकती है। जी हाँ, तो आज से एक छोटा सा चैलेंज लेते हैं कि गुस्सा थोड़ा कम, पेशेंस थोड़ा ज्यादा, आर्ग्यूमेंट्स में वॉल्यूम नहीं अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं। और आपको ये बताते हैं कि आज का दिन भी स्पेशल होना ही वाला है क्योंकि इट्स अ फ्राइडे, यूपी, इट्स अ फ्राइडे। और फिर वीकेंड की कहानी शुरू होने वाली है, मूवी से लेकर बहुत सारे प्लान्स और दोस्तों का मिलना, अपनी बैटरी को रिचार्ज करना और ये कहना कि अभी तो कहानी शुरू हुई है। राइट, कहानी यहाँ पर शुरू हुई है क्योंकि अभी थोड़ी देर में आपकी राशि है। वी ऑल्सो गोना गो बॉलीवुड का तड़का लेने के लिए, इट्स ऑल सेट। You can find me in the club,
1: bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: चलिए साहब, 2nd of October देखते हैं कि आज सेकंड में आप कैसे फर्स्ट आते हैं. ये भी कमाल है. Ladies and gentlemen, time to get started with
2: Aries मेष राशि.
1: Hey, good morning, Aries. आज energy तो full on है, लेकिन excitement में जल्दी decision लेने से बचना होगा. Work में pending काम finally move हो रहे हैं. Relationship की बात करें तो आप ना कभी कभी ना बुरा मान जाते हो. Reply करने से पहले थोड़ा सोचना भी जरूरी है. Energy को direction दो

0: डिस्ट्रैक्शन को नहीं।
1: टॉरस वृषभ राशि।
0: टॉरस आज का दिन कह रहा है कि स्लो एंड स्टेडी बट डेफिनेटली फॉरवर्ड। पैसा या करियर से जुड़ी कोई प्रैक्टिकल प्लानिंग आज काफी यूजफुल रहने वाली है। और हाँ, मूड अच्छा करने के लिए कुछ टेस्टी खाने का मन करे तो गिल्ट बिल्कुल नहीं। वैसे भी फ्राइडे है, आज का मंत्र पेशेंस भी और प्रोग्रेस भी।
1: जेमिनी मिथुन राशि।
0: मिथुन की बात करती रे, आज आइडिया इसकी बारिश हो सकती है, बस छतरी मत खोलना, उसको टपकने देना धीरे धीरे, टिप टिप बरसा पानी, एक आइडिया से बन गई कहानी। बस प्रॉब्लम्स यही है कि वक्त में आप कितने आइडियाज फॉलो करें। हाँ, इसलिए एक चीज पर, एक टाइम पर कम्युनिकेशन आपकी सुपर पावर होने वाली है। जो कहना है क्लैरिटी के साथ कहो ना।
1: कैंसर कर्क राशि।
0: भाई आज इमोशंस थोड़े ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन हर फीलिंग को प्रॉब्लम समझना जरूरी नहीं है। कभी कभी दिल को पास रखकर दिमाग के साथ कनेक्ट करो और फिर मूड से डिसीजन लो। दिल की सुनो पर खुद की भी समझो।
1: लियो सिंह राशि।
0: लियो, जो भी काम मिले उसको कर दियो। स्पॉटलाइट नेचुरली आपकी तरफ पड़ती है, वर्क हो या सोशल सर्कल, आज आपकी प्रेजेंस नोटिस होगी। बस कॉन्फिडेंस को, ईगो की बाउंड्री को ना क्रॉस मत करने देना, नहीं तो विनिंग लाइन नहीं होती। और अगर कॉम्प्लीमेंट्स मिले तो एक्सेप्ट कर लो, अच्छी बात है। अरे नहीं नहीं, बोलने की जरूरत नहीं, कभी क्रेडिट भी ले लिया करो। शाइन करो पर दूसरों को भी शाइन करने का मौका दो।
1: वर्गो कन्या राशि।
0: आज काफी एनालिटिकल हो रहे हैं, हर चीज को ज्यादा उतना बाल की खाल निकाल रहे हैं। जो चीजें दूसरों को कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं उनमें सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन टीम को साथ लेकर आगे बढ़े। छोटी सी चीज को परफेक्ट बनाने के चक्कर में खुद को एग्जॉस्ट मत कर दो, डोंट बर्न योरसेल्फ आउट। परफेक्ट नहीं, पर्पसफुल बनो।
1: लिब्रा तुला राशि।
0: लिब्रा, डिसीजंस। जैसे वो थी ना तारीख पे तारीख, हाँ आज चॉइस करने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है, लेकिन दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी प्रेफरेंस मत भूलना। रिलेशनशिप्स में बैलेंस रखे, यस या नो, जो कहना है दिल से कहो। अपनी पेस और अपनी पीस को बिल्कुल साथ में रखो।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: भाई आज इंट्यूशन का वॉल्यूम उसको हाई रखो, किसी सिचुएशन में कुछ ऑफ फील हो सकता है, कोई बात नहीं, इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना। करियर में फोकस एफर्ट को रिजल्ट दिलाने में अच्छी प्रोग्रेस देगा। और पर्सनल लाइफ में मिस्ट्री ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन भी कभी कभी यूजफुल हो जाती है। आज का मंत्र पावरफुल रहो लेकिन रिएक्टिव नहीं।
1: सजिटेरियस धनु राशि।
0: एडवेंचर का मूड, क्या बात है आज सुन निकल पड़े। नहीं, कौन सी पहाड़ी पे चढ़ जाओगे ऐसा है, पहले अपने आइडियाज की पहाड़ी मत बनाओ, एक आइडिया को पकड़ो और शुरू हो जाओ। रूटीन से थोड़ा सा ब्रेक लो और कुछ नया आइडिया लेकर नए स्टाइल से उसी चीज को अंजाम दो, अच्छा लगेगा। एक्साइटमेंट में कैलेंडर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कम्प्लीटली मत भूल जाना। आज की कहानी यही है कि नई पॉसिबिलिटीज को ओपन माइंड से वेलकम करो।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: भाई आज फोकस और डिसिप्लिन आपके स्ट्रॉन्गेस्ट टूल्स हो सकते हैं, और जो गोल्स आपने काफी टाइम से सेट कर रखे हैं उनकी तरफ एक सॉलिड स्टेप लेना, भाई ये तो जरूरी है। कब तक टालोगे, जो आज है उसी को संभालोगे? और प्लीज हर वक्त सीरियस मोड में मत रहा करो यार, कोई कॉमेडी, कोई अच्छी पिक्चर देख लो, छोटे छोटे स्टेप्स बड़े रिजल्ट दिला सकती है।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: भाई आज कुछ हटके सोचना होगा और ऑनेस्टली वही आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। नहीं, आपने किया नहीं ना कभी, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, अनकन्वेंशनल आइडियाज सामने आ सकते हैं। खुद पर भरोसा रखो और एक कदम आगे रखो, डिफरेंट सोचो, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: पाइसेस, इमेजिनेशंस और इमोशन दोनों आज स्ट्रांग रहने वाले हैं, अच्छी बात है कि आप क्रिएटिव काम में काफी कमाल के मजबूत हो। किसी और की एनर्जी को अपना मूड कंट्रोल करने का मौका दो ही मत, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, अपने ड्रीम्स को नर्चर करो।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: राइट, सेकंड ऑफ अक्टूबर 9:30 में थोड़ी देर में आपके मैसेजेस और बात करेंगे कुछ खुश रहने की, कुछ ऐसी चीजें जो आप जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद देखिए हर दिन इट्स गोना बी फुल ऑफ कलर्स, वंडरफुल।

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: जैसा बात करते हैं फुटबॉल की, हाँ वो बात अलग है कि अभी जो इंग्लिश प्रीमियर लीग है नहीं चल रहा, देयर इज अ ब्रेक और हर कोई इसको फील कर पा रहा है कि वीकेंड में वो बात नहीं है, लेकिन क्या करें, अगर ये बात अपने साथ रखना चाहते हैं हमेशा, देन लेट मी टेल यू एमबीसी प्ले स्पोर्ट्स पैक अब है अवेलेबल। राइट, आपने सही सुना, एमबीसी प्ले एक एप्लीकेशन जो आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है, बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं एमबीसी प्ले और उसके बाद आपको मिलेगी एक्सेस टू मेजर फुटबॉल कॉम्पिटिशन, यूईएफए चैंपियंस लीग, ला लीगा या यूईएफए यूरोपा लीग। आपको मिलेगी फ्लेक्सिबिलिटी टू परचेज द पैक फॉर वन मंथ एट अ टाइम। कोई कमिटमेंट नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं, आप डिसाइड कीजिए कब आपको लेना है। एंड लेट मी टेल यू द प्राइस फॉर एमबीसी प्ले स्पोर्ट्स पैक इज 299 रुपीज। जी हाँ, 299 रुपीज फॉर वन मंथ। आपको मिलेगी एक्सेस टू द न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैनल और चैंपियंस लीग, ला लीगा, यूरोपा लीग जैसे मैंने बताया, और कोई कमिटमेंट की जरूरत नहीं, नो सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड। अगर आप नहीं चाहते तो, रिन्यू नहीं करना चाहते तो, बहुत ही आसानी से आप पेमेंट भी कर सकते हैं 100% थ्रू द एप्लीकेशन। तो भूलिए मत, एमबीसी प्ले जाकर लीजिए स्पोर्ट्स पैक और फिर देखिए एंटरटेनमेंट नॉन

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: जैसे आप जरूरी है कि आज के दिन जितने भी लोग हैं ये सोच लें कि पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस अपने चेहरे पर जरूर रखेंगे. इट मेक्स अ डिफरेंस. जी, एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि लाइफ में बड़ा बदलाव हमेशा बड़े जश्न से नहीं लेकिन छोटी छोटी अच्छी आदतों से आता है. आज अपने दिन में थोड़ा सा पेशेंस ऐड कीजिए, थोड़ी सी काइंडनेस और रिएक्शन से पहले एक सेकंड रुक के सोचिए कि इज इट वर्थ. इसके साथ वे गुड मॉर्निंग और जय माता दी कह रही हैं जीना जी ऑल द वे फ्रॉम इटली. एंड बस फ्राइडे आज पीस पॉजिटिविटी और गुड हेल्थ से भरी रहे. थैंक यू सो मच. एंड ऑल्सो फ्रॉम द होल आर एम टू टीम जीना जी. जीना इसी का नाम है. हमें पर कहते हैं बिग हेलो. एंड लीना का बर्थडे है विच इज फ्रॉम ऋषि. साथ में डॉक्टर उर्वशी और साथ में देनी साथ आहाना आरती विशाल अवनीश उनकी पूरी फैमिली और कहते हैं उनको हैप्पी बर्थडे लीना.

0: Okay, good morning. Time check exactly 10 a.m. सूर्यमा के आस्थान से मिलते जाते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार. नमस्कार.
1: नमस्कार. 10 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का. पहले 2 रुपए का ये शुल्क पेय पदार्थों की प्लास्टिक बोतलों पर लगता था, अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है. पहली अक्टूबर से मॉरिशस में घर में इस्तेमाल होने वाली सामान और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स समेत सभी लगभग सभी प्लास्टिक बोतलों पर 2 रुपए का शुल्क लागू है. रोजमर्रा की जरूरत के 38 सामानों को इससे छूट दी गई है. इससे मिलने वाली रकम प्लास्टिक को इकट्ठा करने और दोबारा इस्तेमाल की व्यवस्था को मजबूत में लगाई जाएगी. आज 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जा रहा है. ये तारीख महात्मा गांधी की जयंती से जुड़ी है, जिनके लिए अहिंसा सिर्फ हिंसा से दूर रहना नहीं बल्कि

0: अन्याय का सामना शांति, सत्य और संवाद के रास्ते से करना था। 1869 में भारत में जन्मे महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई में इसी विचार को एक मजबूत जन आंदोलन का आधार बनाया। उनके विचारों ने बाद में दुनिया के कई शांति और नागरिक अधिकार आंदोलनों को भी प्रभावित किया। आज उनकी 157वीं जयंती है। अहिंसा का संदेश एक बार फिर यही याद दिला रहा है कि मतभेद चाहे कितने भी गहरे हो, उनका समाधान हिंसा नहीं बल्कि बातचीत, समझ और आपसी सम्मान से निकाला जाना चाहिए। मॉरिशस में छोटे खेतीहरों की श्रेणी में सिर्फ खेती करने वाले लोग नहीं आते, इनमें छोटे पशुपालक और कुछ कृषि कारोबार से जुड़े लोग भी शामिल हैं जो स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड में रजिस्टर्ड है। फार्मर्स कार्ड से उन्हें कई तरह की सरकारी मदद मिलती है, जिसे खेती के लिए मशीनें, पशुपालन और जैविक खेती के लिए सहायता। हर सहायता की अपनी शर्तें हैं। फार्मर्स कार्ड आमतौर पर 2 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन इस बार इसकी अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। पहले से रजिस्टर्ड किसानों के लिए ये मुफ्त हैं, जबकि नए रजिस्ट्रेशन के लिए ₹400 देने होंगे। किसानों की सुविधा के लिए मुबीज एप्लीकेशन भी है, जिसे जून 2025 में शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों में फ्लाई दुबई की दुबई से तेलावीव जा रही उड़ान में को पायलट के हमले की जांच जारी। उड़ान के दौरान भारतीय कैप्टन स्मिथ ने चाकू से उस पर हमला किया गया, जिसके बाद विमान को सऊदी अरब में आपात स्थिति में उतारा गया। इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का दावा है कि को पायलट कट्टरपंथी विचारों से प्रभावित था। हालांकि हमले का असली मकसद अभी तक साबित नहीं हुआ है। अधिकारी ये भी जांच कर रहे हैं कि क्या यह आतंकवादी हमला था और क्या इसका ईरान से कोई संबंध था। फिलहाल ईरान से किसी संबंध की पुष्टि नहीं हुई। विमान में 170 से ज्यादा लोग सवार थे। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए।
1: On NBC Play and NBC.mu.
2: You're listening to RM2, a Radio Masti.

0: टू रेडियो मस्ती।
1: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे की हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी, सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोरी फैशन, रॉयल रोड, पॉम्पली मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799378282। हलकोरी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और क्वालिटी।
2: La fin d'année des costés, t'en parais?
3: Pas juste l'année, et t'as dépenses aussi.
2: Mais Rogers Capital la même! Tansa, jusqu'à 31 décembre, tout nouveau client code Rogers Capital, pégaye 500 roupies rabais, l'ose de premier mensualité.
3: Financement, et te paye 500 roupies en moins, top net ça.
2: Application facile! Zis avec ton code identité.
3: Asté à m'offrir l'année sans tracas.
2: Attendez, fais ou application premier crédit code Rogers Capital. Offre valable jusqu'à 31 décembre. Conditions applicables. Rogers Capital Credit opère sous licence de la FSI.
0: RM2 Radium.

0: 2
1: रेडियो मस्ती।
0: भविष्य खातिर हमनी लगे हरमेशा कोनो न कोनो योजना रहेला। लैका के पढ़ाई, एगो वायाज, घर के रेनोवेशन, यानी एगो पूरा जीवन जिए के। सिकुम अपन प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट प्लान्स के माध्यम से तोहरा तोहर आर्थिक भविष्य के विस्तार पर कोसे ये करी। आर जब रिटायर हुए के बखत आए तब सिकुम के निजी पेंशन योजना से सकबा जीवन के ई नवा पराव के नवा सांस दे। तोहर भविष्य तोहर आज पर निर्भर करेला, इनकरा आज ही से तैयार करे के चाहे। जस्ती जानकारी खातिर हमनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर या sikkim.mu पर जाय। इमे नियम आ शर्त भी लागू बा। सिकुम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
2: सिकुम ग्रुप, ए लाइफ टाइम कमिटमेंट।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: जैसे आप जहाँ पर फ्राइडे के दिन वहीं पर मूवीज ऑल सेट टू बी ऑन द बिग थिएटर और बात करें अगर हम दृश्यम की तो ये सस्पेंस अब फाइनली खत्म हुआ। सिनेमाघर में रिलीज हो गई और बहुत सारे लोग पहुंच गए सोशल मीडिया पर अपने अपने रिएक्शन दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर शुरुआती जो रिएक्शन आ रहे हैं काफ़ी हद तक पॉजिटिव हैं। दर्शकों ने फिल्म के सस्पेंस ट्विस्ट और कलाकारों के अभिनय की तारीफ की है। इस फिल्म की लोकप्रियता विजय सलगांवकर की काबिलियत पर टिकी है जिससे वो अपने परिवार की सुरक्षा करते हुए हमेशा एक कदम आगे रहता है और ऐसा लगता है कि दर्शकों को फिल्म के इस नए भाग में भी कुछ सस्पेंस और रोमांच देखने का मौका मिलेगा। एक ने लिखा कि विजय ने कमाल कर दिया, शानदार काम किया और जयदीप अहलावत ने इसमें जान डाल दी है। फिल्म का दूसरा हाफ बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसका क्लाइमैक्स बहुत ही कमाल का है जिसको कह सकते हैं एक बेहतरीन फिनिश देकर ही आगे बढ़ा है। शुरुआती जो रिएक्शन मिले क्लाइमैक्स की बहुत चर्चा हो रही है। एक दर्शक का मानना है कि फिल्म के आखिरी 30 मिनट बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो ओरिजिनल वर्जन से अलग है जिसमें क्लाइमैक्स को काफ़ी लंबा खींचा गया है। बस कमी यही कि इसमें हीरो का इमोशनल साइड देखने को नहीं मिलता। क्या करें। शुरुआती रिव्यू में अजय देवगन की परफॉर्मेंस की काफ़ी चर्चा हो रही है। दर्शकों ने विजय के शांत और सोच समझकर काम करने वाले स्वभाव को एक बार फिर से स्क्रीन पर लाने के साथ ही सस्पेंस में दबे हुए कैरेक्टर को कहा कि कमाल कर दिया जयदीप अहलावत। नाउ ये है सरप्राइज फैक्टर। उनकी परफॉर्मेंस पर भी लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। वैसे उनका यही रिएक्शन रहा कि उनकी परफॉर्मेंस का जिक्र करते हुए कहा कि एक्टर ने इंटेंसिटी बढ़ा दी और एक और लेयर ऑफ सस्पेंस जोड़ दिया है। तो देखते हैं साहब कहानी कहां तक जाती है, बट थिंग्स आर वर्किंग फाइन फॉर दिस मूवी। और कुछ बी टाउन से चलिए थोड़ी देर में।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: नहीं, इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं कि आपको कोई गाना पसंद आता है तो कानों से उतरता है सीधा दिल में और उसके बाद दिल के तार बजते हैं, बार बार पैदा होती है झनकार। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी कमाल कर रही है, ये भी कर लो स्वीकार।
1: Welcome to RM2. Musty Mornings Radio Musty.
0: ऐसा बात करते हैं टेक्नोलॉजी की और अब दीवार पे लगा वॉलपेपर चलेगा ऐसे जहां पर बिजली पैदा होगी। व्हाट, या घरों की छतों पर सोलर पैनल के जरिए बिजली बनाना जल्द बीते कल की बात हो सकती है क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी गई है जो कमरों की दीवारों पर लगकर हवा की नमी से, या हवा की जो ह्यूमिडिटी है ना, उससे बिजली पैदा कर सकती है। राइट, अब ऐसा वॉलपेपर बना गया है जो बिजली बनाता है। इसके लिए कमरे में मौजूद नमी का इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब सोचिए क्यूपेप और वो वहाँ पर इलाके, ओए होए। खास बात यह कि इस टेक्नोलॉजी को काम करने के लिए धूप की जरूरत नहीं होगी, ना किसी अलग पावर सोर्स की। खाना पकाने, नहाने या हमारी सांसों से हवा में मिलने वाली नमी से ये वॉलपेपर बिजली बना पाएगा, जिसकी मदद से कई घर के कोई छोटे गैजेट्स को चला सकेगा। वॉलपेपर बेहद छोटे माइस्ट इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के आधार पर काम करता है और सिस्टम हवा में मौजूद नमी को अपनी ओर सोखता है। ऐसा होने से जब नमी कागज़ तक पहुंचती है तो उसमें मौजूद जो होते हैं ना एलिमेंट्स, वो एक्टिव हो जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी अब आने वाले टाइम में बहुत जगह काम कर पाएगी जहां पर बिजली नहीं पहुंच पाती लेकिन मॉइस्चर से बिजली बन पाएगी। आने वाले टाइम में जाने क्या क्या टेक्नोलॉजी है।
1: You're listening to RM2, a Radio Musty.

0: Just love me.
1: Radio Musty. What's up?
2: और ये हमारे साथ दे रही हैं कहती हैं नमस्कार जी और आगे हमारे साथ कहते हैं प्लीज़ एक गाना हमारी जानू फैमिली के लिए हो जाए और कुमारी जी हैं और साथ में कहते हैं गाने कमाल के चल रहे हैं फ्राइडे का मूड
0: चले

0: अरे हाँ, वो फैशन टिप्स की तरफ बढ़ना था। हाँ, क्या करें, मौसम जब ऐसा हो तो थोड़ा वैसा सोचना पड़ता है।
1: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। Welcome to RM2.
2: Musty Mornings Radio Musty.
0: जैसे आप चलते हैं, हम बॉलीवुड की मूवी के साथ रिलेट करते हुए फैशन वाइब बनी और नैना। अगर बात करें ये जवानी है दीवानी, द मूवी गॉट पॉपुलर, लेकिन उसी की तरह अगर हम अपने आप को कंफर्टेबल रखें, यूजफुल रखें और एफर्टलेसली कूल, तो क्या बात है। गर्ल्स ट्राई कर सकती हैं एक रिलैक्स कुर्ती जीन्स के साथ, या फिर सिंपल टॉप के साथ स्टेटमेंट इयररिंग्स। और गाइस, कैजुअल शर्ट और वेल फिटेड जीन्स और क्लीन स्नीकर्स, सिंपल है लेकिन सच मानिए बहुत ही स्टाइलिश। और अब जब मौसम फुल ऑन चेंज हो रहा है तो चलेगा नहीं। आज सुबह से थोड़े से बादल एंड मौसम गुड। कलर्स में थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ब्राइट ब्लू, मस्टर्ड पिंक या फिर ग्रीन एलिमेंट ऐड करके बोरिंग आउटफिट को इंस्टेंटली मेन कैरेक्टर एनर्जी दे सकते हैं। बस एक रूल, ओवरडू मत करना। आउटफिट में एक हीरो पीस रखना और सपोर्टिंग जो बाकी कास्ट है उसको साइड में।
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हलकरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
2: RM2 Radio Musty.

0: स्टूडियो में गांसों से मिलते जानते इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार। पहली अक्टूबर से मॉरिशस में लगभग सभी प्लास्टिक बोतलों पर ₹2 का शुल्क लागू हो गया है। रोजमर्रा की जरूरत के 38 सामानों को इससे छूट दी गई है। इस रकम का इस्तेमाल रिसाइकलिंग व्यवस्था को मजबूत करने में किया जाएगा। आज 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और महात्मा गांधी की 157वीं जयंती है। दुनिया भर में शांति, संवाद और आपसी सम्मान के उनके संदेश को याद किया जा रहा है। फार्मर्स कार्ड की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। पहले से रजिस्टर्ड छोटे खेतीहरों और पशुपालकों के लिए ये सुविधा मुफ्त होगी, जबकि नए रजिस्ट्रेशन के लिए ₹400 देने होंगे। मॉरिशस का निर्यात बढ़ा है, लेकिन 3 महीनों में इस सेक्टर में 771 नौकरियां कम हुई हैं। मिक्सा के मुताबिक मशीनों और नई तकनीक का बढ़ता इस्तेमाल इसकी एक वजह है। पोर्टवे बंदरगाह को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में काम जारी है। स्थानीय मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए 2 दस्तावेज अभी कागज पर दी जाती हैं, जिन्हें अब डिजिटल करने की तैयारी है। 20 साल से ज्यादा समय से बंद रोजल के प्लाजा को सितंबर 2027 में फिर से खोला जाएगा। ये सरकार का लक्ष्य है। 26,56,00,000 रुपए की परियोजना का करीब 18-20% काम पूरा हो चुका है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों में फ्लाई दुबई की दुबई से तेल अवीव जा रही उड़ान में सह पायलट को पायलट के हमले की जांच जारी है। हमले का मकसद अभी साफ नहीं और ईरान से किसी संभावित संबंध की भी जांच की जा रही है। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। बढ़ती हैं शुक समाचारों की ओर। Hibiscus Street, Cité Céachard, Rivière

0: सॉन्ग टू स्टार्ट विद एंड काफी टाइम के बाद गाना चला नहीं एंड ऐसे ही गाने चलकर आपको सरप्राइज दे जाते हैं और हम आपको ले जाते हैं इन द म्यूजिक वर्ल्ड. वेलकम एवरीबॉडी,
1: यू आर लिसनिंग टू RN2 रेडियो मस्ती.
0: Here's the third hour, 11:07.

0: 92 रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
2: La fin d'année des costés, tu ne parais?
3: Pas juste l'année, et ta dépense aussi.
2: Mais Rogers Capital la même! Tansa, jusqu'à 31 décembre, tout nouveau client côté Rogers Capital pégaye 500 roupies rabais, l'oseux de premier mensualité.
3: Financement, et te paye 500 roupies en moins, top net ça.
2: Application facile! Zis avec ton code identité.
3: Astez à mon faire l'année sans tracas.
2: Attendez, fais ou application premier crédit côté Rogers Capital. Offre valable jusqu'à 31 décembre. Conditions applicables. Rogers Capital Credit opère sous licence de la FSI.
0: RM2
4: Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: चलिए साहब, थोड़ा सा होम डेको की तरफ चलते हैं और वहीं पर होता है काफ़ी बारी जब आप साफ सफाई पर ध्यान देते हैं तो रिलैक्स करते हैं। बाथरूम में काफ़ी ज़रूरत है, नहीं? हाँ, बाथरूम की सफाई एक बड़ी चुनौती हो जाती है और पानी में जो मौजूद खारेपन के सफ़ेद निशान होते हैं, साबुन की जमी हुई चिकनी जो लेयर होती है और नमी की वजह से बाथरूम की टाइल्स अपनी असली चमक खो देती हैं। समय पर अगर ध्यान ना दें तो उसके बाद फंगस और आप समझ रहे ना, ऐसा नहीं चाहते आप। वैसे तो काफ़ी लोग जावेल स्प्रे कर लेते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो क्या किया जाए? बहुत आसान है। एक कटोरी में 3 चम्मच लगभग डिश वॉशिंग लिक्विड सोप, जैसे जो बर्तन धोने के लिए आप लिक्विड यूज़ करते हैं, उसके बाद इस कटोरी में 1/3 कप सिरका यानी कि विनेगर सफ़ेद वाला मिला सकते हैं। वह विनेगर में जो मौजूद एसिडिक गुण होते हैं गंदे पानी की जिद्दी दावों को भगा देते हैं और चिकनाई को काटने में बहुत मददगार साबित होते हैं। और बस आओ करना क्या है कि एक स्प्रे वाली बोतल में उसको ऐड कर लीजिए, एक समान सा घोल बन जाए, उसके बाद सॉल्यूशन से आप चारों तरफ स्प्रे कर सकते हैं और उसको थोड़ा रहने दीजिए, एकदम से स्क्रबिंग ना करें, थोड़ा सा टाइम दें। और उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप जो स्क्रब है वो

0: इतना हार्ड ना हो कि टायर्स पे लाइंस मार दे या निशान मार दे. तो ये सब देखने के बाद आप आराम से लगभग 5-6 मिनट के बाद उस जिद्दी मेल और चिकनाई को बाय कर सकते हैं. माइक्रोफाइबर हो या फिर स्पॉन्ज हो, डिपेंडिंग ऑन आप क्या यूज़ करना चाहते हैं. उसके बाद सब कुछ क्लीन क्लीन, आखिर में शावर या फिर पानी के पाइप की मदद से टायर्स पर तेज पानी की धार मारे ताकि बचा हुआ जो साबुन है, जो गंदगी है, वो जल्दी से साफ हो जाए और टायर्स आपकी बाय गॉड शीशे की तरह चमक जाए.
1: You're listening to Musty Mornings.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है.
1: Stay tuned, stay musty. Radio.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: चलिए आपको कुछ मैसेजेस और वहीं पर अंतरिक्ष जो हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं और ये कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो M2PM always with Radio Musty. Thank you so much. एक दोस्त बनाकर साथ में चलते जाना कितना मजा आता ना। वहीं पर विकेश कह रहे हैं गुड गुड मॉर्निंग और बस तैयार है अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए। वैसे अभी पहुंचे थे कहीं पर ग्रुप टास्क में कह रहे हैं देन टेकिंग अ ब्रेक लिसनिंग टू म्यूजिक और उनका एंटेना बिल्कुल कैच कर रहा है फ्रीक्वेंसी और जब एंटेना कैच कर लेता है फ्रीक्वेंसी तो फिर वो जो साउंड अलग ही आता है ना। इट्स सो क्लियर सो नाइस एंड गिव्स यू द वाइब फॉर अ फ्राइडे मॉर्निंग। अच्छा आपका प्लान क्या है आज मूवी देखने जा रहे हैं या फिर घर पर ही हैं? थोड़ा सा रेस्ट। वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ठीक है ऑफिस का काम हो गया अब उसके बाद घर का काम और ये बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज इट कीप्स ऑन पाइलिंग अप। पिछा आयनिंग ऑफ क्लोज हो घर की साफ सफाई हो यार्ड में कुछ काम करना हो कुछ चीज़ें टूट गई हैं लाइट चेंज करनी हो जाने क्या क्या ये चलता रहता है। लेकिन साहब ये ज़िंदगी है यू वॉन्ट टू मेक इट रियली स्पेशल नहीं जब आप घर पर होते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है एवरीथिंग इज़ ओके तो ये ज़रूरी है। वहीं पर नलनी है जो कह रही गुड मॉर्निंग एंड अपनी नेफ्यू के साथ घूम रही हैं अभी लाउड वॉल्यूम पर सुन रही हैं इतना भी लाउड नहीं कि आपको पता है दूसरे डिस्टर्ब हो जाए। राइट अपने हिसाब से अपने कंफर्ट फैक्टर के अंदर ज़रूर सुने एंड डू लेट अस नो व्हाट्स अ गुड एंड व्हाट्स द प्लान ऑन योर साइड कि बाकी लोग भी उसको सुनकर कुछ प्लानिंग तो ज़रूर कर पाएँ। कीप द गुड म्यूजिक रोलिंग ऑन।

0: म्यूजिक ऑल डे लॉन्ग रेडियो मस्ती सुनते रहो।
1: चल जाने का वक्त हो रहा है और बस थोड़ी देर में निर्मल आपको साथ दिखाने के लिए ऑल सेट स्टे ट्यून्ड एंड कीप ऑन लिसनिंग टू द वेरी बेस्ट। अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा कहो, आज 2 अक्टूबर है, अरे दिल से सुनो।

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे विधिमा नमस्कार।
1: नमस्कार निर्मनी, सभी को नमस्कार। इससे देरी के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। शुरू करते हैं स्थानीय खबरों के साथ। पहले 2 रुपए का ये शुल्क पेय पदार्थों की प्लास्टिक बोतलों पर लगता था, अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। 1 अक्टूबर से मॉरिशस में घर में इस्तेमाल होने वाले सामान और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स समेत लगभग सभी प्लास्टिक बोतलों पर 2 रुपए का शुल्क लागू है। आज 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जा रहा है। ये तारीख महात्मा गांधी की जयंती से जुड़ी है, जिनके लिए अहिंसा सिर्फ हिंसा से दूर रहना नहीं बल्कि अन्याय का सामना शांति, सत्य और संवाद के रास्ते से करना था। 1869 में भारत में जन्मे महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई में इस विचार को एक मजबूत जन आंदोलन का आधार बनाया। उनके विचारों ने बाद में दुनिया के कई शांति और नागरिक अधिकार आंदोलनों को भी प्रभावित किया। मॉरिशस में छोटे खेतीहरों की श्रेणी में सिर्फ खेती करने वाले लोग नहीं आते, इसमें छोटे पशुपालक और कुछ कृषि कारोबार से जुड़े लोग भी शामिल हैं, जो स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड यानी SFWF में रजिस्टर्ड हैं। फार्मर्स कार्ड से उन्हें कई तरह की सरकारी मदद मिलती है, जैसे खेती के लिए मशीनें, पशुपालन और जैविक खेती के लिए सहायता। हर सहायता की अपनी शर्तें हैं। फार्मर्स कार्ड आमतौर पर 2 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन इस बार इसकी अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। और किसानों की सुविधा के लिए मोबीज एप्लीकेशन भी है, जिसे जून 2025 में शुरू किया गया था। इसके जरिए किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फार्मर्स कार्ड का डिजिटल रूप इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ सरकारी मदद के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं। और विदेश में फ्लाई दुबई की दुबई से तेल अवीव जा रही उड़ान में को पायलट के हमले की जांच जारी है। उड़ान के दौरान भारतीय कैप्टन स्मिथ पर चाकू से हमला हुआ, जिसके बाद विमान को सऊदी अरेबिया में आपात स्थिति में उतारा गया। इसराइली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का दावा है कि को पायलट कट्टरपंथी विचारों से प्रभावित था। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। टागोलिन ग्रांड पॉइंट पिमो में 76 साल की 76 years old की श्रीमती शोभा रताना पैदाइशी नाम प्रयाग और जो

0: सुधा नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दोपहर 3 बजे उनके बेटे भूपेंद्र सिंह आशीष रतना के घर टागोलेन खौन पॉइंट ऑफ मौत से उठाकर पॉइंट ऑफ विश की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:30 PM। नाटुलिन ग्लेनपार्क वाकवा में 62 साल की 62 years old की बीबी सलमान सीडन, पैदाइशी नाम एनाताली और जो सलमान नाम से भी जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज दोपहर 3:30 बजे उनके शौहर गोरा सीडन के घर नाटुलिन ग्लेनपार्क वाकवा से उठाकर फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे 3:30। जॉन कैनेडी स्ट्रीट ट्रॉ बुटीक ट्रियोले में 54 साल के 54 years old के श्री संदीप सिंह सोमारू, जो संदीप नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दोपहर 3:30 बजे उनके पिता जयचंद सिंह सोमारू के घर जॉन कैनेडी स्ट्रीट ट्रॉ बुटीक ट्रियोले से उठाकर त्यामिनी ट्रियोले की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे 3:30। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं।
1: On NBC Play and NBC.mu.
2: Retro Rhythm.
3: RM2. Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम।
1: गुड आफ्टरनून, नमस्ते जी। हाँ, गानों के जरिए सच में क्या क्या पॉसिबल नहीं है। रेट्रो रिदम में आपका स्वागत करती है नीलमणि दिल से, जहाँ पर टाइमलेस सॉन्ग्स 70s, 80s एंड 90s के होंगे। और हाँ जी, आज तो स्पेशल रेट्रो सफ़र होगा, क्योंकि आज है हमारे एक्ट्रेस आशा पारेख जी का जन्म दिवस। तो चलिए उन्हीं की याद में आपके लिए इस आवा को बनाते हैं और भी ज़्यादा स्पेशल। एंड नेक्स्ट आपके लिए एक और खूबसूरत नगमे के साथ मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में।
0: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti.

0: फुली पैक्ड है, लेकिन आज एक बहुत ही मीनिंगफुल ओकेजन भी है, गांधी जयंती, महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी। सच बोलना, सिंपल रहना, दूसरों की इज्जत करना और बिना किसी भेदभाव के सबके साथ इंसानियत से पेश आना। इन आज का दिन सिर्फ गांधी जयंती ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी है, और वो दोनों तो साथ में चलते आए हैं। और गांधी जी का सिंपल मैसेज था कि चेंज लाने के लिए हमेशा वायलेंस की जरूरत नहीं होती है। तो आज एक छोटी सी कोशिश करें, कम गुस्सा, ज्यादा पेशेंस, कम निगेटिविटी, ज्यादा काइंडनेस। तो चलिए अभी के लिए कंटिन्यू करते हैं रेट्रो सफर को आपकी ही आरमजू रेडियो मस्ती पर।
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम।
1: वैसे आज बात हो रही है आशा पारेख जी, जिनका आज जन्म दिवस है। एंड आपको पता है उनकी सबसे खास बात क्या थी? उनकी सबसे खास बात थी उनकी अदा, क्योंकि एक स्माइल, एक नज़र, एक ग्रेसफुल सा डांस मूव और सीन में आ जाती थी जान। उनका स्टाइल अलाउड नहीं था, लेकिन स्क्रीन पर उनकी प्रेजेंस को इग्नोर करना इम्पॉसिबल था। वो कहना भी जानती थी और सिर्फ आँखों से बहुत कुछ बयां भी कर देता था। तो चलिए उसी की याद में एक और गाना हो जाए, ओ मेरे सोनारे, आशा भोसले जी की आवाज़ में, खास इस ब्यूटीफुल दिन को और भी अलाइव बनाने के लिए।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम।
1: वैसे मूवीज की बात करें तो आशा पारेख जी ने हमें रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा हर अंदाज दिखाया है। मूवीज जैसे कि जब जब फूल खिले, तीसरी मंजिल, कति पतंग, लव इन टोक्यो, मेरा साया, कारवा, एक से बढ़कर एक मूवीज की है उन्होंने। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हर मूवी में उनका लुक और पर्सनालिटी थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन आशा जी का चार्म हमेशा सेम रहा। तो चलिए और एक नगमा पेश करते हैं उन्हीं की याद में। नेक्स्ट सॉन्ग, पर्दे में रहने दो।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 Radio Musti।

0: चली सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे गीता जी नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणी, सभी को हमारा नमस्कार। स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड के साथ पंजीकृत किसान, पशुपालक और छोटी कंपनियां भी शामिल हैं। फार्मर्स कार्ड के जरिए उन्हें कई तरह की सहायता मिलती है। ये कार्ड 2 साल के लिए वैध होता है, लेकिन इस बार विशेष रूप से इसकी अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। पहले से पंजीकृत किसानों के लिए ये अवधि बढ़ाना निःशुल्क है। वहीं नए आवेदकों के लिए पंजीकरण शुल्क ₹400 है। किसानों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जून 2025 में मोबीज भी शुरू किया गया था। इस ऐप के जरिए ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है और फार्मर्स कार्ड का डिजिटल संस्करण इस्तेमाल किया जा सकता है। आबादी की बढ़ती उम्र और देश के भविष्य पर इसके असर को लेकर आज मॉरिशस फैमिली प्लानिंग एंड वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। संस्था की 69वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसे आयोजित किया गया। संस्था का उद्देश्य आबादी में हो रहे बदलावों और समाज पर इसके प्रभाव को लेकर चर्चा शुरू करना है। ये चर्चा ऐसे समय हो रही है जब देश कई सामाजिक चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। इसमें लैंगिक हिंसा, कम उम्र में गर्भधारण, युवाओं में नशीली दवाओं का सेवन और बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार जैसे मुद्दे शामिल हैं। आज 2 अक्टूबर को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 157वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नई दिल्ली में राजघाट में श्रद्धांजलि अर्पित की। आज ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जा रहा है। आज के दिन महात्मा गांधी के अहिंसा और शांति के संदेश पर विचार किया जाता है। मॉरिशस में भी महात्मा गांधी संस्थान सहित कई अन्य जगहों में गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए समारोह आयोजित किए गए। और विदेशी खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में मध्यावधि चुनावों के बाद ईरान पर बमबारी तेज करने की संभावना का जिक्र किया है। अमेरिकी मीडिया में कल प्रकाशित खबरों में इसकी जानकारी दी गई। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। जॉन कैनेडी स्ट्रीट थ्वाबुचिक थ्रियोले में 54 साल के 54-year-old के श्री संदीप सिंह सुमारू, जो संदीप से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज भर बाद के 3:30 उनके पिता जयचंद सिंह सुमारू के घर जॉन कैनेडी स्ट्रीट थ्वाबुचिक थ्रियोले से उठाकर टर्मिनस थ्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3:30 PM। नाटू लेन ग्लेन पार्क फाकुआ में 62 साल की 62-year-old की मिसेस बीबी सलमान सिडन पैदाश नाम एनाटाली और जो सलमान से ज़्यादा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज सुबह बाद के 3:30 उनके शौहर गोगा सिडन के घर नाटू लेन ग्लेन पार्क फाकुआ से उठाकर फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3:30 PM। टागो लेन काउंट पेंटोपीमो में 76 साल की 76-year-old की श्रीमती शोभा रताना पैदाश नाम प्रयाग और जो शोभा से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज सुबह बाद के 3:00 उनके बेटे भूपेंद्र सिंह आशीष रताना के घर टागो लेन घोंट पेंटोपीमो से उठाकर पेंटोबिश की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी।

0: क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: Your news on MBC Play and MBC.MU.
2: Retro Rhythm.
3: RM2 Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम।
1: क्या बात होगी। गुड आफ्टरनून, हम पहुंच गए हैं सेकेंड आवर में, यानी कि रेट्रो रिदम की आखिरी आवर में। तो क्या आप रेडी हो फिर से रेट्रो की दुनिया को फिर से जीने के लिए? तो चलते हैं बैक टू मेमोरी लेन, इस बार किशोरदा की आवाज में।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

एंड वैसे शाम तो अभी नहीं हुई है, दोपहर का समय है, लेकिन हेजी फीलिंग तो हो रहा है। अरे फ्राइडे है आज, यानी कि फन डे, मस्ती का भी और आपका भी। सो आपके मैसेजेस, डेडिकेशंस का इंतजार रहेगा नर्मनी को। फॉर नाउ हेजी फीलिंग को भगाते हैं इस नेक्स्ट गाने के साथ है, एंड और भी मस्ती हो जाएगा गानों के जरिए, ऑफकोर्स आपके ही आरएमजू रेडियो मस्ती पर।

0: रेट्रो रिदम।
1: अभी के लिए मैसेजेस चेक। बिग हेलो टू देव जी जो कनेक्टेड है अभी RM2 रेडियो मस्ती के साथ और वो पेरिस से कनेक्टेड है और गाना मांग रहे हैं अपनी प्यारी पत्नी के लिए और साथ में ब्लेस्ड डे विश कर रहे हैं सभी को। एंड आज वी हैव लीना रामपतोब जी का जन्मदिन। विशेज फ्रॉम हबी ऋषि, दोता उर्वशी, अहाना, आरती, विशाल, अवनीश, ओल गोकुल सिंह, भगवंत रामपतोब फैमिली, सीधो होल फैमिली, रामलोल दीयू फैमिली की तरफ से आपको वेरी हैप्पी बर्थडे। एंड वी ऑल्सो हैव नेक्स्ट गाना प्लीज हो जाए। आप है अमृता पुरुषराम पोटलिस से आप कनेक्टेड हैं सभी परिवार, आपकी मम्मा के घर रमोटीदा में, आपकी बहनें मानती के लिए, मीला मिमी, पति मादन और जीजा जी सुनीश के लिए आप गाना मांग रहे हैं। एंड एज यूजुअल वी हैव अनदर लिसनर जो कि है फिया जी और वो गाना मांग रहे हैं दुल्हा दुल्हन का गाना। ओके, ढूंढ के चिल्लाएंगे आपके लिए जरूर। भी हेलो टू जीना जी जो साथ दे रही है साथ में, तो हो जाए आपके लिए नेक्स्ट गाना इस बार सैनिक मूवी से। कितनी हसरत है गाना
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम।
1: वैसे दोस्तों आज रेट्रो रिदम में सेलिब्रेशंस फुली लोडेड है। आज हम याद कर रहे हैं गांधी जयंती, साथ ही इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, पीस, काइंडनेस और ह्यूमैनिटी का मैसेज लेकर। और आज है वर्ल्ड फार्म एनिमल्स डे। एनिमल्स के लिए रिस्पेक्ट, केयर और कंपैशन को हाईलाइट करने का दिन। और बॉलीवुड लवर्स के लिए एक स्पेशल कारण टू सेलिब्रेट एवरग्रीन एक्ट्रेस आशा पारेख जी का बर्थडे। तो एक ही दिन में हिस्ट्री, ह्यूमैनिटी, एनिमल्स और बॉलीवुड, क्या बात है। आज का दिन तो डेफिनेटली पैक्ड है मीनिंग और सेलिब्रेशंस के साथ। तो चलिए अभी के लिए वापस चलते हैं रेट्रो दुनिया में जंप मारने के लिए।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

बस एक ही तमन्ना है कि आप जहाँ पर भी हो खुश रहो, स्माइल करते रहो। जी अभी मेरी जाने का टाइम हो गया है। आशा करती हूँ कि आपको रेट्रो गाने पसंद आए। फिर मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए यू स्टे सेफ, ड्राइव सेफ और आरएमजी वेडियो मस्ती के साथ स्टे कनेक्टेड।

0: के 2 बजे हैं। संध्या संक्षिप्त समाचार एक बार फिर आपसे गीता जी नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी को हमारा नमस्कार। नशीली दवाओं की समस्या को देखते हुए पोर्टविस गिरजाघर ने एक अंतर धार्मिक समूह की मांग की है ताकि नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों के साथ साथ उनके परिवारों को भी बेहतर सहयोग दिया जा सके। रुजिल स्थित काजनाला श्यामोशिव संस्था में कल प्रशिक्षण का दूसरा सत्र आयोजित किया गया। इस दौरान नशीले पदार्थों से जुड़ी नवीनतम जानकारी, उनके अवैध कारोबार, सेवन और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को साझा किया गया। आगे भी इस विषय पर कई बैठकें और चर्चा आयोजित की जाएंगी। इसके बाद प्रतिभागी अपने अपने समुदायों में लौटकर उन लोगों की बेहतर तरीके से मदद और मार्गदर्शन कर सकेंगे जो नशे की जाल में फंसे हुए हैं। आबादी की बढ़ती उम्र और देश के भविष्य पर इसके असर को लेकर आज मॉरिशस फैमिली प्लानिंग एंड वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। संस्था की 69वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसे आयोजित किया गया। संस्था का उद्देश्य आबादी में हो रहे बदलावों और समाज पर इसके प्रभाव को लेकर चर्चा शुरू करना है। ये चर्चा ऐसे समय हो रही है जब देश कई सामाजिक चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। और विदेशी खबरों में मध्य अफ्रीकी देश कोंगो में खतरनाक एबोला वायरस का प्रकोप लगातार खतरनाक रूप लेता जा रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों की तरफ से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में एबोला से मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,000 को पार कर गया है। इस खतरनाक संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन लगातार संघर्ष कर रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार ये इतिहास का सबसे तेजी से फैलने वाला एबोला प्रकोप बन गया है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार। Your news on MBC Play and MBC.MU. More music in the mix. Aaj Azadi hai. Bombay Talkies. Radio Musti. Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: और चलिए दोस्तों इसी खूबसूरत गीत के साथ आपका वेलकम कर रहे हैं जाने किस मोड़ पे मिल जाए तुझे प्यार फ्रॉम द फिल्म यस ये है फ्रॉम द अपकमिंग फिल्म पहला प्यार दूसरी बार क्वाइट इंटरेस्टिंग नेम आपको बता दी ये जो फिल्म है ये 23 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है जॉनर है रोमांस एंड यूथ ड्रामा और फिल्म को डायरेक्ट किया है अनुज सैनी ने लिखा है लव रंजन ने और कहानी है तीन दोस्तों की जो स्कूल रीयूनियन अटेंड करते हैं और उसके बाद अपने आप को डिफरेंट रिलेशनशिप्स में एंटर करते हुए पाते हैं एंड ऑफकोर्स वी नो दैट जिस तरह से टाइटल है पहला प्यार दूसरी बार यानी कि फर्स्ट अट्रैक्शन और फिर सालों बाद शायद उसी प्यार से एक बार फिर मुलाकात होती है और उसके बाद कहानी कैसे ढलती है शायद यही होगी कहानी इसकी लेकिन इसके लिए तो हमें करना है 23 अक्टूबर तक का इंतजार आज तो है 2 अक्टूबर दोस्तों मैं हूं परी आपके साथ 2 अक्टूबर ओके सो आज तो गांधी जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं इन इंडिया एंड ये तो हम जानते हैं दैट 2 अक्टूबर तारीख बॉलीवुड के साथ भी जुड़ी हुई है यानी कि दृश्यम फिल्म उसका जो डायलॉग है इतना पॉपुलर हुआ उसके बाद इतनी मीम्स बने और उसके बाद ये 2 अक्टूबर की तारीख हो गई सेट इसी फिल्म के साथ और उन्होंने क्या फायदा उठाया है इस तारीख का आज ही के दिन रिलीज हो रही है दृश्यम द कंक्लूजन द फाइनल पार्ट ऑफ दृश्यम आज रिलीज हो रही है तो चलिए इन सब के बारे में बात होगी बी टाउन के खबरों के बारे में बातें होंगी और आपके फेवरेट सेलेब्स के बारे में बातें होंगी मैं हूं परी आपके साथ अभी से लेकर दिन के 4 बजे तक लेकर आएंगे बी टाउन की खबरें एंड कुछ लेटेस्ट ट्रैक्स साथ देते रहिए ऑन आरएम2 रेडियो मस्ती

0: वेल फ्रॉम द फिल्म कॉकटेल टू अब फिल्म के लोकेशंस हो या फिर फिल्म का लुक एकदम यंग एकदम यूनिक, साथ ही साथ इस फिल्म के गानों को भी लोगों ने काफी पसंद किया। तो चलिए दोस्तों बातें तो होती रहेंगी, अभी के लिए लेंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: रेडियो मस्ती।
2: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के ही पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोड़ी फैशन, रॉयल रोड पॉम्पलेमूसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और क्वालिटी।
3: जब बात यार्ड सेल की होती है तो हम थ्वासिसा की ही बात करते हैं। जब बात जबरदस्त ऑफर्स की होती है तो हम थ्वासिसा की बात करते हैं। और जब बात बहुत कम कीमतों की होती है तो थ्वासिसा की ही बात होती है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि 1, 2 और 3 अक्टूबर को ग्रैंड थ्वासिसा यार्ड सेल होने जा रहा है लुशी पार्क जिनफई रिश्ते में। वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, फोन, लैपटॉप और छोटे छोटे अप्लायंसेस पर 80% के डिस्काउंट, यानी शॉपिंग का एक जबरदस्त मौका। और वहाँ पहुँचना भी बहुत आसान है, गौजिनो से फ्री शटल सर्विस अवेलेबल होगी। तो डेट अच्छी तरह याद रखना, 1, 2 और 3 अक्टूबर।
1: RM2 Radio Mustang।

0: Bombay Talkies.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: सो वेल फ्रेंड्स, ये तो हम जानते हैं कि आजकल दौर वो है जहां पर पुराने गानों को नए अंदाज में पेश किया जा रहा है, यानी कि कुछ लोगों का कहना है कि क्रिएटिविटी जो है वो कम्प्लीटली खत्म हो चुकी है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर ये गाने रिक्रिएट ना हो तो शायद उस दौर के गाने उसी दौर में कहीं पर ठहर कर रह जाए और आज की जो जनरेशन है शायद उन गानों को कभी फिर से ना सुन पाए। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है वो काफी डिबेटेबल है, लेकिन चलिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अभिषेक बच्चन की, और जिन्होंने सालों बाद कजरारे फिल्म की शूटिंग के बारे में बात की है। अभिषेक बच्चन ने लगभग 2 दशक के बाद फिल्म बंटी और बबली के गाने कजरारे की शूटिंग का एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने इस गाने के दोबारा बनने पर क्या कहा, ये आज हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। यानी कि साल 2005 में अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन ने फिल्म बंटी और बबली में एक साथ काम किया था। ऐश्वर्या राय के साथ मिलकर उन्होंने फिल्म के मशहूर गाने कजरारे में धूम मचा दी थी। इसके ठीक 2 साल बाद ऐश्वर्या ने अभिषेक से शादी कर ली और बच्चन परिवार का हिस्सा बन गई। 2 दशक से ज्यादा समय बीतने के बाद भी ये गाना लोगों के बीच उतना ही मशहूर, उतना ही पॉपुलर है। और हाल ही में एक इंटरव्यू में अभिषेक ने उसकी शूटिंग को याद किया, यानी कि उन दिनों को याद किया, और जब उनसे पूछा गया कि क्या कजरारे 2.0 फिर से बन सकता है तो उनका कहना कुछ डिफरेंस सा था। तो यहाँ पर एक इंटरव्यू के दौरान अभिषेक ने कजरारे बनने के उन दिनों को याद किया और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि वो दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग थे, स्पेशली उस दिन जब शूटिंग हो रही थी, उस दिन उनका बर्थडे भी था और सेट पर सब ने उनके जन्मदिन को खूब सेलिब्रेट किया। ये गाना अरशाद अली जो डायरेक्टर थे वो बजाते रहे और सब ने इस पर काफ़ी डांस किया और काफ़ी एंजॉय किया। और जब कजरारे 2.0 की संभावना के बारे में पूछा गया तो अभिषेक ने कहा कि उन्हें ये बहुत पसंद आएगा, यानी कि ही डजंट माइंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग वंस अगेन एक नए अंदाज में। उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए वो तो तैयार है, लेकिन उन्हें बस ऐश्वर्या यानी कि उनकी वाइफ और उनके पापा अमिताभ बच्चन को मनाना होगा। सो अब तो ये देखना है दोस्तों कि क्या ये रिक्रिएट हो सकता है, यानी कि ये जो मैजिक था क्या वो फिर से रिक्रिएट हो सकता है। फिल्म बंटी और बबली 27 मई 2025 को रिलीज हुई थी। इसमें अभिषेक बच्चन एक चालाक ठग के रोल में नजर आए थे और उनका साथ दिया था रानी मुखर्जी ने, जो साथ मिलकर काम करते हैं। अमिताभ उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे पुलिस वाले के रोल में नजर आए थे और फिल्म में आखिर में तनावपूर्ण आमना सामना होता है और जब ये सीन आता है तभी ये गाना जो है वो उसमें शामिल होता है। ऐश्वर्या राय का ये कैमियो आज भी लोगों को उतना ही याद है और ये तो हम जानते हैं ऐश्वर्या राय जब स्क्रीन पर आती है तो उनका एक अलग ही मैजिक होता है। सो फ्रेंड्स, लेट्स वेट कि क्या ये गाना यानी कि कजरारे 2.0 बनता है कि नहीं, और अगर बनता भी है तो क्या ये 3 लेजेंड्स के साथ बनता है। इसके लिए हमें करना है थोड़ा सा इंतजार। लेकिन गानों के लिए आपको नहीं करवाएंगे इंतजार, लेटेस्ट ट्रैक्स आपके लिए हम लेकर आए हैं अभी से लेकर दिन के 4 बजे तक। लेटेस्ट ट्रैक्स के साथ बी टाउन की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं हूं परी आपके साथ 4 PM right here on RM2 Radio Masti।

0: करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रही है। अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
1: RM2 Radio Musti

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: And well friends, it's 2:29 इस वक्त आप हमारा साथ दे रहे हैं और यहाँ पर हम आपको बी टाउन की खबरें पहुँचा रहे हैं. सो हाल ही में खबर सामने आई कि नुसरत भरूचा का बाली में एक एक्सीडेंट हो गया है और अब एक्ट्रेस की टीम ने बताया है कि उनकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें एक फ्रैक्चर हो गया है और इसी पर कुछ अपडेट सामने आई है. बीते दिन खबर सामने आई थी कि बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा जो काम के सिलसिले में बाली गई थी वहाँ हादसे का शिकार हो गई है और अब उनकी टीम ने बयान शेयर करते हुए बताया है कि एक्ट्रेस की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है. हादसे के बाद उन्हें बाली के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया गया और

वहाँ डॉक्टर्स की निगरानी में है। अब उनकी टीम उन्हें एयर एम्बुलेंस से मुंबई लाने की तैयारी कर रही है जहाँ पर उनकी एक सर्जरी होनी है। सो अभी के लिए तो विशिंग हर अ क्विक रिकवरी एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर आप जुड़े हुए हैं सो बी टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँचाएंगे। दैट्स योर आरएम2 रेडियो मस्ती।

और चलिए दोस्तों, नवरात्रि आई है और जैसे हम जानते हैं दैट सून वी विल बी सेलिब्रेटिंग नवरात्रि, और उसी के चलते यहाँ पर कुछ लेटेस्ट ट्रैक्स भी आ रहे हैं. दैट्स अ ब्यूटीफुल इंडी पॉप, द लेटेस्ट इंडी पॉप, पार्थ ओझा और मोनाली ठाकुर की आवाजें. तो चलिए मूड को सेट करते हैं और नवरात्रि के लिए तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना है, लेकिन फॉर नाउ वी कैन एंजॉय दिस ट्रैक. दैट्स अ ब्यूटीफुल इंडी पॉप हमारे सभी लिसनर्स के लिए जो साथ दे रहे हैं ऑन आरएम2 रेडियो मस्ती. परी का साथ है एंड दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज़.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: So well friends, yahan par hum beautiful tracks aapke liye lekar aaye hain. And that was once again in the voice of Monali Thakur, the sweet voice of Monali Thakur. Aur unhi ki awaaz mein ye ek khoobsurat sa indie pop, the latest one, Main Baavri, ye gaana tha aap sabhi ke liye jo is waqt saath de rahe hain. Jante hain dosto, 2 se lekar 4 baje tak lekar aate hain aapke liye hum kuch latest songs, latest tracks, Bollywood songs ho ya fir indie pop. Sab kuch milta hai aapko yahan par aur B-Town ki latest updates bhi aur saath mein aapki sweet messages and dedications jo aap hum tak pahunchate hain on 54991 294. So अभी के लिए यहाँ पर आपके messages, dedications, विजया जी आ गई हैं घर and you're listening to Radio Musty right now. So wishing you a wonderful Friday, a wonderful weekend, loads of good wishes आप तक पहुँचा रहे हैं और कहते हैं दर आज बोम्बू से आपके भाई देवानंद अपना जन्मदिन celebrate कर रहे हैं. Wishing him a very happy birthday. Wishes लेकर आए हैं धनेश्वर, सुनीता, रानी, रेखा, निशा है और सभी देविदास परिवार जो उन्हें विश कर रहे हैं वेरी हैप्पी बर्थडे. साथ ही यहाँ पर अगला गाना होगा फ्रॉम टिंकी टू ऑल हर फ्रेंड्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, स्पेशली फॉर मालिनी, लीना, जेशमी एंड विक्रम. सभी इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं. सो आई डू होप दैट यू आर एंजॉयिंग योर फ्राइडे. काम हो या फिर आज आप रिलैक्स चिलैक्स के मूड में है, जो भी है आज आपका प्लान, हम तो लेकर आए हैं आपके लिए कुछ लेटेस्ट ट्रैक्स एंड द नेक्स्ट वन ऐसा गाना जो डेफिनेटली आपके दिल को छूने वाला है. गोज आउट फॉर यू एंड फॉर ऑल द फन फैंस ऑफ जुबिन नौटियाल, फॉर ऑल द लिसनर्स ऑफ आरएम टू रेडियो मस्ती. चलिए दोस्तों, ऐसे ही आपके मैसेजेस डेडिकेशन अब तक पहुंचाते रहिएगा. इंतजार रहेगा आपका ऑन 54991294.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: एंड वेल फ्रेंड्स, आफ्टर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग बात करते हैं गोविंदा की. गोविंदा और कोमल रानी के अफेयर की अफवाह फिल्मी दुनिया में फैली हुई है और इसी बीच दोनों की रोमांटिक तस्वीर आजकल काफ़ी वायरल हो रही है. एक्टर गोविंदा और कोमल रानी स्वर्णकर अपनी अपकमिंग फिल्म रूपा में एक साथ नजर आएंगे. फिल्म के साथ दोनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं. एक दूसरे के साथ इनका नाम जोड़ा जा रहा है और डेटिंग रूमर्स भी चल रही हैं और इसी के बीच उनकी अपकमिंग फिल्म का पोस्टर सामने आ गया है. दोनों रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं. गोविंदा और कोमल रानी स्वर्णकर की फिल्म रूपा का पोस्टर जारी किया गया है. कोमल रानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से फिल्म की झलक शेयर की है. इसमें गोविंदा और कोमल एक दूजे की बाहों में खोए हुए नजर आ रहे हैं. पोस्ट के साथ कोमल ने कैप्शन में लिखा है, रूपा. इस फिल्म को लिखा गोविंदा ने है और इसका डायरेक्शन भी उन्होंने संभाला है. लीड रोल में वो और कोमल रानी नजर आ रहे हैं और साथ ही आपको बता दें इसके अलावा कोमल रानी ने एक और फोटो भी शेयर की है. इसमें वो गोविंदा के साथ रोमांटिक लुक में नजर आ रही हैं और इसी के साथ कोमल ने कैप्शन में लिखा है, लव माई लाइफ. कोमल रानी साड़ी पहने दिख रही है, वही गोविंदा व्हाइट ब्लेजर और ब्लैक जीन्स में नजर आ रहे हैं. दोनों की ये तस्वीर जो है अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. कोमल रानी के हालिया पोस्ट पर नेटिजन्स भी कमेंट कर रहे हैं और कुछ इन्हें फिल्म के लिए बधाई दे रहे हैं और कई यूजर्स उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि इसी फिल्म का इंतजार है. एक ने लिखा है कि अंदाजा नहीं है कि गोविंदा की फिल्म का बजट इतना कम होगा कि पोस्टर चैट जीपीटी से बनवाना पड़े. इसके बाद एक यूजर ने लिखा है, लगता है कि अब इन्होंने भी सोच लिया है कि खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों. बता दें कि फिल्म की रिलीज को लेकर अभी भी जानकारी सामने नहीं आई है और चर्चाएं काफी जोरों शोरों से हैं दैट ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. सो कहते हैं ना दोस्तों कि जहां पर आग होती है तो धुआं वहीं से निकलता है. अब आगे देखना है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट फिल्म की या फिर इनके रिलेशनशिप की कब होती है, इसके लिए तो करेंगे इंतजार. लेकिन दोस्तों अभी हमारा साथ दे रहे हैं और जैसे हमने कहा कि बी टाउन यानी कि बॉलीवुड में इतने उतार चढ़ाव होते हैं, रिलेशनशिप्स हो, दोस्ती हो या फिर फिल्मों में जो उतार चढ़ाव होते रहते हैं, यानी कि बिग बजट की फिल्म कब फ्लॉप हो जाए और कब छोटे बजट की फिल्म हिट हो जाए, यू नेवर नो. सब कुछ यहाँ पर ऐसे ही चलता है जहां पर कोई भी उम्मीद नहीं होती है लेकिन कुछ भी हो सकता है. That's B-Town, that's Bollywood.
3: Music all day long. Radio Masti, सुनते रहो.
2: लेकिन यहाँ पर जो होता है हम तो आपको बता ही देते हैं, यानी कि गानों के साथ साथ थोड़ी ही देर में हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर. सो आप कहीं मत जाइए, B-Town की खबरें आप तक पहुंचा रही हैं विद सम लेटेस्ट ट्रैक्स. परी का साथ दिन के 4 बजे तक. अभी के लिए फ्राइडे मूड को सेट करते हैं विद दिस वन.

0: टाइम चेक एग्जैक्टली 3 PM. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं गीता जी. आपको नमस्कार.
1: नमस्कार परी, सभी को हमारा नमस्कार. नशीली दवाओं की समस्या को देखते हुए पोर्टविस गिरजाघर ने एक अंतरधार्मिक समूह की मांग की है.

0: ताकि नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों के साथ साथ उनके परिवारों को भी बेहतर सहयोग दिया जा सके। रुसिल स्थित काजनाला शामोशेओ संस्थान में कल प्रशिक्षण का दूसरा सत्र आयोजित किया गया। इस दौरान नशीले पदार्थों से जुड़ी नवीनतम जानकारी, उनके अवैध कारोबार, सेवन और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को साझा किया गया। आगे भी इस विषय पर कई बैठकें और चर्चा आयोजित की जाएंगी। इसके बाद प्रतिभागी अपने अपने समुदायों में लौटकर उन लोगों की बेहतर तरीके से मदद और मार्गदर्शन कर सकेंगे जो नशे की जाल में फंसे हुए हैं। क्रिस्टोफर जोनाथन मैग्डलेन को श्री बालकृष्णा लक्ष्माया की सुनियोजित हत्या के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जज मेहदी मानराखा ने आज सुबह असाइजेस में ये सजा सुनाई। क्रिस्टोफर जोनाथन मैग्डलेन ने अपना जुर्म स्वीकार किया है। फिलहाल वो एक अन्य हत्या के लिए 23 साल कैद की सजा काट रहा है। आज 2 अक्टूबर को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नई दिल्ली में राजघाट में श्रद्धांजलि अर्पित की। आज ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जा रहा है। आज के दिन महात्मा गांधी के अहिंसा और शांति के संदेश पर विचार किया जाता है। मॉरिशस में भी महात्मा गांधी संस्थान सहित कई अन्य जगहों में गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए समारोह आयोजित किए गए। और विदेश में अमेरिका के टेनेसी में मौत की सजा पाने वाली कैदी को 2 बार जानलेवा इंजेक्शन देकर सजा देने की कोशिश नाकाम हो गई। वो दोनों बार बच गई। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया। अब उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। 50 वर्षीय महिला कैदी को अब अस्पताल में जीवन बचाने वाली चिकित्सा दी जा रही है। राज्य के गवर्नर ने इस साल के लिए मौत की सभी सजाओं पर रोक लगा दी है। और मध्य अफ्रीकी देश कोंगो में इबोला वायरस का प्रकोप लगातार खतरनाक रूप लेता जा रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों की तरफ से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में इबोला से मरने वालों की कुल संख्या 4,000 को पार कर गई है। इस खतरनाक संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन लगातार संघर्ष कर रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार ये इतिहास का सबसे तेजी से फैलने वाला इबोला प्रकोप बन गया है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: More music in the mix.
2: Aaj Azadi hai.
3: Bombay Talkies.
4: Radio Musti.
5: Radio Musti.

0: Bombay Talkies.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: चक धूम धूम करते हुए हम तो आपके साथ यहां पर जुड़े हुए हैं 2 से लेकर 4 बजे तक बी टाउन की खबरों का कारवां आप तक हम पहुंचा रहे हैं विद सम लेटेस्ट ट्रैक्स सो अभी के लिए सावा में आपका वेलकम फ्राइडे 2nd ऑफ अक्टूबर जी हां दोस्तों यहां पर आपको बता दें दृश्यम जी हां हो रहा है अब दृश्यम के बाद आया दृश्यम 2 और अब यहां पर द कंक्लूजन यानी कि दृश्यम द कंक्लूजन अजय देवगन की इस थ्रिलर सीरीज ने हमेशा दर्शकों को जमकर एंटरटेनमेंट दिया है मनोरंजन दिया है और यह फिल्म इस हद तक लोगों को पसंद आई है कि 2nd अक्टूबर सुनते ही यानी कि 2nd अक्टूबर सुनते ही दो चीजें याद आती है एक गांधी जयंती और एक ये कि 2nd अक्टूबर को विजय सलगांवकर अपने परिवार के साथ सत्संग देखने गए थे और कमाल की बात यह है कि इस बार जो तीसरा पार्ट आया है द अंतिम भाग यानी कि द फाइनल पार्ट द कंक्लूजन वो उतना ही ग्रिपिंग और यादगार बना है लोगों को फिल्म काफी पसंद आ रही है और काफी अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं इस फिल्म को लेकर तो चलिए दोस्तों इसके बारे में भी बात करेंगे लेकिन अभी के लिए आपको बता दिया दैट्स

आरएम टू रेडियो मस्ती, मैं हूँ परी आपके साथ टिल 4 पीएम। बी राउंड की खबरें आप तक पहुंचाते हैं, कुछ लेटेस्ट ट्रैक्स आप तक पहुंचाते हैं, एंड यहाँ पर एक वॉइस ऐसी जिसे हमने 90s में सुना था और आज भी उनका जो मैजिक है बरकरार है, तो वन एंड ओनली लकी अली, उन्हीं की आवाज में ये गाना फ्रॉम द फिल्म दृश्यम द कंक्लूजन। एंजॉय दिस वन फॉर ऑल द लिसनर्स जो साथ दे रहे हैं ऑन रेडियो मस्ती।

0: Cheese.
1: Radio Musty.
2: Radio Musty.
3: और चलिए बात करते हैं फिल्म दृश्यम द कंक्लूजन जो आज ऑन 2nd ऑफ अक्टूबर रिलीज हुई है. सो दृश्यम 2 के बाद एक बार फिर अभिषेक पाठक ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया है और कमाल का काम किया है. फिल्म का हर एक सीन परफेक्ट है, कहीं कोई कमी नहीं है और लंबे समय बाद बॉलीवुड में ऐसी फिल्म देखने को मिली जो आपको क्लाइमैक्स तक बांध कर रखती है. फिल्म हर बार सिर्फ विजय सलगांवकर को ही नहीं बल्कि सबको बराबरी से दर्शाती है. फिल्म के कई सीन इतने कसे हुए हैं कि आपको गूस बम्स आते हैं और अंत तक आपको पता नहीं चलता कि विजय इस बार क्या करने वाला है. अभिषेक की डायरेक्शन में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसका हर एक सीन बहुत ही अच्छे से लिखा गया है और हर सीन का डायलॉग भी कमाल का है.

सो लोगों को ये फिल्म काफी पसंद आ रही है, डायलॉग्स काफी कमाल के लिखे गए हैं, स्क्रिप्ट भी काफी टाइट है। अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है, स्क्रीन पर जो टेंशन है वो महसूस होता है और इंटरवल से पहले वाला सीन सबसे दमदार है, जो जयदीप और अजय का पहला फेस ऑफ सीन भी है। तो यहाँ पर आपको बता दें दैट ये फिल्म के लिए अच्छे रिव्यूज आ रही हैं और मच अवेटेड फिल्म ऑफ अजय देवगन इस बार इट्स

ने 19 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था, यानी कि 19 करोड़ की एडवांस बुकिंग तो हो चुकी थी विद इन 2 डेज। और अब आज ये फिल्म जब रिलीज हुई है तो इसके बाद भी आ रहे हैं अच्छे खासे रिव्यूज, यानी कि लोगों के पसंद आ रही है दृश्यम द

0: म्यूजिक ऑल डे लॉन्ग रेडियो मस्ती सुनते रहो।
1: अच्छा ये जो खूबसूरत गाना है आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है, एक्चुअली इट्स एवरग्रीन क्लासिक। सबसे पहले हमने सुना था इसे नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज में, अ मैजिकल सॉन्ग इट हैज ऑलवेज बीन। एंड अब एक बार फिर ये गाना हमें सुनने को मिल रहा है, बी इट दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट या फिर ये सॉन्ग जो नजर आया इन मिर्जापुर द मूवी। अभी के लिए मधुर शर्मा की आवाज में ये गाना हम आपके नाम डेडिकेट कर रहे हैं। गोज आउट फॉर ललिता जी, हमारा साथ दे रही हैं आप, काम खत्म, आ गई हैं घर। सो नाउ इट्स टाइम to enjoy the Friday and enjoy your weekend as well. और इस वक्त अपने tea time को enjoy कर रही हैं, dedicating गाना for शाम ललिता, सभी देवीचंद परिवार के नाम, for Mr. कुमार देवीचंद as well, सभी परिवार, सभी दोस्तों के नाम, साथ देने के लिए शुक्रिया। और also goes out for वसन, अपने 65 years को celebrate कर रहे हैं, and उनके लिए special wishes ये है उनके सभी customers and of course from all family, all friends, good wishes हमारे पूरी team की ओर से। चलिए ये खूबसूरत गाना आप सभी के नाम।

0: टाइम चेक दोपहर के 4 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार गीता जी से। गीता जी आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम जी, सभी को हमारा नमस्कार। उपभोक्ता संगठन ने ईंधन के दाम में गिरावट लाने की मांग दोहराई है। आसिम ने VAT में 2 रुपए की कमी लाने की मांग की है। 4 दिन पहले ईंधन की कीमतों में 10% की वृद्धि लाए जाने के बाद आज एक प्रेस सम्मेलन में आसिम ने ये मांग की। इसके महासचिव जयंत चिलम के अनुसार पेट्रोल पर कुल टैक्स और शुल्क मिलाकर प्रति लीटर करीब 30 रुपए की अतिरिक्त लागत आती है, जबकि डीजल पर यह अतिरिक्त लागत लगभग 25 रुपए प्रति लीटर है। शेरी सिंह से आज फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन में गवाह के तौर पर पूछताछ की गई। उन्हें मॉरिशस की ओर से पूर्व ग्रांट थॉर्नटन एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड को दिए गए एक कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में बुलाया गया था। मॉरिशस टेलीकॉम के पूर्व CEO कुछ महीनों के लिए राष्ट्र

विमानन कंपनी एयर मॉरिशस की प्रशासनिक परिषद में भी रहे थे। जांचकर्ता ये जानना चाहते थे कि ये कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट किन परिस्थितियों में दिया गया था। इस मामले में पूर्व ग्रांट थॉर्नटन एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ सत्तर हाजी अब्दुल्ला को कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि ये अस्थायी आरोप पिछले अगस्त में पोर्टविस की जिला अदालत में हटा दिया गया था। क्रिस्टोफर जोनाथन मैग्डलेन को श्री बालकृष्ण लक्ष्माया की सुनियोजित हत्या के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जज मेहदी मनराखा ने आज सुबह असाइजेज में ये सजा सुनाई। क्रिस्टोफर जोनाथन मैग्डलेन ने अपना जुर्म स्वीकार किया। फिलहाल वो एक अन्य हत्या के लिए 23 साल कैद की सजा काट रहा है। और विदेशी खबरों में ब्रिटेन में डीजल की कीमत पहली बार 2 पाउंड प्रति लीटर तक पहुंच गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिकी ईंधन निर्यात पर रोक लगाने के का विचार करने के बाद ऐसा हुआ है। मध्यावधि चुनावों से पहले ट्रंप पर डीजल के निर्यात पर रोक लगाने का दबाव डाला जा रहा था। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार। on NBC Plus.

0: Friday Mashup.
1: RM2, Radio Musti.
2: 4:07 हो चुके हैं. वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन. मैं तो यही कहूंगी, किसके ओशन में जाना है. भाई हमारे पास एक ही ओशन है और वो बहुत सुंदर है, पर कहते हैं ना कि आंखों का ओशन भी बहुत ही खूबसूरत होता है. तो चलिए भाई, कैसे हैं आप सब? पूरा दिन कैसा रहा आप सबका? मुझे पूरी उम्मीद है सबका बहुत अच्छा रहा होगा. पर अब फटाफट से काम निपटाते हैं और सिमेट कर चलते हैं घर की ओर, क्योंकि शाम को हम लेकर आए हैं बहुत बढ़िया बढ़िया गाने आप सभी के लिए. ऑफिस में हो, घर में हो, या बस दुकान में हो और समेटा समेटी कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, गुनगुनाना तो बनता है. RM2 रेडियो मस्ती के में मैं हूँ आपके साथ पूनम, और म्यूजिक शुरू करते हैं, इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं. ये है गाना आप सबके लिए.

0: और M2
1: रेडियो मस्ती
2: भविष्य खातिर हमनी लगे हर मेसा कोनो न कोनो योजना रहेला। लैका के पढ़ाई, एगो वायाज, घर के रेनोवेशन, यानी एगो पूरा जीवन जिए के। सिकुम अपन प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट प्लान्स के माध्यम से तोहरा तोहर आर्थिक भविष्य के विस्तार पर कोसे ये करी। आर जब रिटायर हुए के बखत आए त सिकुम के निजी पेंशन योजना से सकबा जीवन के ई नवा पड़ाव के नवा सांस दे। तोहर भविष्य तोहर आज पर निर्भर करेला, इनकरा आज ही से तैयार करे के चाही। जस्ती जानकारी खातिर हमनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर या sikkim.mu पर जाइह। इमे नियम आ शर्त भी लागू बा। सिकुम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
3: सिकुम ग्रुप, ए लाइफटाइम कमिटमेंट।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: Tune.
1: Traffic update.
0: चार बजकर 25 मिनट हो चुके हैं, पीक आवर है. आप सभी को पता है, अगर आप काम से निकल रहे हैं एंड यू आर गोइंग कैपिटल से निकल कर नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, तो अगर मैं देख सकती हूँ, आई कैन सी राइट नाउ ट्रैफिक धीरे धीरे ज़्यादा होने लग गया है. कहीं ट्रैफिक स्लो हो रहा है, गाड़ियाँ धीरे धीरे चल रही हैं, एंड देन आई कैन सी आगे जाकर फ्रॉम तेहू से लेकर नॉर्थ की तरफ स्लो मूविंग ट्रैफिक है, बट स्टिल इट्स मूविंग, धीरे धीरे चल रहा है. और अगर आप बात करें पोर्टली से निकलकर, यानी

साउथ की तरफ जा रहे हो, यानी रेजवी और रेजवी से सेंजॉन, सेंजॉन से फिनिक्स की तरफ जा रहे हो, कैन आई टेल यू पोर्ट लुइस से रेजवी काफ़ी जाम है। रेजवी से अगर आप फिनिक्स की तरफ जा रहे हो तो मैं आपको बता दूं, आप बहुत सारी गाड़ियां रोड पर आने लग चुकी हैं, लोग अपने ऑफिस से निकल चुके हैं, सो धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ने लग चुका है, बट स्टिल इट्स मूविंग ट्रैफिक, सो बी वेरी पेशेंट, ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लेकर

हो जाता है, एक तरफ से आप फोन देख रहे हैं और कभी कभी आ जाता है ना इमरजेंसी कॉल भी आ जाता है, तो ये इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। अगर मैं देख सकती हूँ तो फिनिक्स की तरफ से जा रहे हो और साउथ की तरफ, तो यस यहाँ आपको मेजर ट्रैफिक मिल रहा है, धीरे धीरे गाड़ियाँ चल रही हैं, बट कीप लिसनिंग आर एम टू रेडियो मस्ती ताकि हम आपको पल पल के अपडेट्स देते रहें। जैसे आपको एवरी आफ्टरनून पता ही है कि काथरबोन से रोजिल में क्या हालत होती है, शाम को स्पेशली एट दिस पीक आवर इट्स जैम, और अगर अल्टरनेट रूट्स आप ले सकते हैं तो ज़रूर लीजिएगा। अगर वेदर से जो रोड है ना, अगर आप वो रोड लेने जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ बहुत स्लो ट्रैफिक है और धीरे धीरे गाड़ियाँ जो इकट्ठा होने लग गई हैं, सो एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलिए। एंड यस, अगर आप फिनिक्स की तरफ निकल रहे हैं, क्यूपिप की तरफ जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं स्लो मूविंग ट्रैफिक है, सो प्लीज़ कितने जितने भी ड्राइवर्स इस समय हमें सुन रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, उनको हम यही कहेंगे ये जो इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको भी कभी लगता है कि इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि बाहर भाई बाहर कहाँ कैसा ट्रैफिक चल रहा है 5491294 पर। पर आपको ध्यान रखने वाली बात यही है कि बस आपको आराम से जाना है, धीरे जाना है, किसी को ओवरटेक मत कीजिएगा। और साथ में देखिए, ये सबसे बड़ी बात होती है ड्राइवर्स के लिए कि घर पर आपका कोई इंतज़ार कर रहा होता है और आपको भी तो सेफली पहुँच

कहानी सबकी बनती रहनी चाहिए, बस चलते रहना चाहिए। जिंदगी खूबसूरत होती है और खूबसूरती के साथ में आगे बढ़ते रहो।

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: चार बजकर 41 मिनट हो चुके हैं और अब जानते हैं स्पोर्ट्स गुरु अरविंद से कि क्या लेकर आए हैं, आज दुनिया में क्या छाया है, कौन जीता कौन हारा। तो वेरी गुड आफ्टरनून अरविंद।
4: गुड आफ्टरनून आपको, गुड आफ्टरनून रेडियो मस्ती लिसनर्स। द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड, क्लब एम वर्सेस श्रीलंका 7 बजे से आज फ्रेंडली मैच को 2 में खेला जाएगा। श्रीलंका की टीम सेशेल्स को हरा के मॉरिशस आई है। दूसरा मैच इन दोनों के बीच 5 अक्टूबर को कुड्डो में ही खेला जाएगा। शॉडेमास में इस संडे को 17th रेस मीटिंग में मेन रेस है कुप जु सेंटेनेयर ग्रुप 3 990 मीटर्स। इसमें कैप्टन बोमशेल, फोमा गियर, क्वाजी फोशो, सोलोमन सील, अनजेन कैप्टन लानिस्टर और वॉरहेड भाग लेंगे। मैनचेस्टर सिटी पर गिल्टी वर्डिक्ट के खिलाफ क्लब ने अपील करने का फैसला किया है। क्लब ने कहा कि रूलिंग में क्लियर मटेरियल एरर्स ऑफ लॉ प्रिंसिपल एंड फैक्ट एंड इज अनसेफ। अब अपील बॉडी को फैसला लेना है कि सिटी बचेगा या फंसेगा। जर्मनी के साथ पहली जीत के बाद यर्गन क्लॉप ने अपने गोल स्कोरर फ्लोरियन वर्ट्ज की खूब तारीफ की और कहा कि लिवरपूल में सब को खुश होना चाहिए कि वर्ट्ज फाइनली ब्रोक द जिंक्स। लिवरपूल में इस सीजन वर्ट्ज का परफॉर्मेंस कुछ खराब चल रहा है। यूईएफए नेशंस लीग में आज लीग ए ग्रुप 1 में बेल्जियम का मुकाबला तुर्की से होगा और जिनेदीन जिदान का फ्रांस इटली के खिलाफ खेलेगा। अन्य मैच हंगेरी जॉर्जिया, यूक्रेन नॉर्दर्न आयरलैंड, बोस्निया स्वीडन, साइप्रस आर्मेनिया, लात्विया मोंटेनेग्रो, कजाकिस्तान मोल्डोवा, फराओ आइलैंड्स स्लोवेकिया। इधर एशियन गेम्स में बॉक्सिंग में भारत के लिए लवलीना बोरगोहेन ने गोल्ड मेडल जीता। आर्चरी में भी गोल्ड मेडल भारत के नाम। हॉकी में टीम इंडिया फाइनल में खेल रही है चीन के खिलाफ, ये वुमेन्स कैटेगरी में है। और कल क्रिकेट में फाइनल होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। हैव ए नाइस वीकेंड अहेड। टेक केयर। बाय बाय।
3: बाय बाय।
0: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेकोर, द फ्लो एक्सपर्ट।
1: पोर डोने वी अ वो प्रोजेक्ट डे रेनोवेशन।

0: Friday Mashup.
1: RM2 Radio Musti.
2: 4:46 हो चुके हैं और इस वक्त जो है ना कदम धीरे धीरे कभी नहीं चल पाते हैं, कभी ऐसा लगता है कि अरे क्या करें, तेज तेज भागो क्योंकि घर में कोई वेट कर रहा होता है, और वहीं पर गाड़ी जो होती है ना धीरे धीरे रुक रुक के चलती है, पर फिर हम यही कहते हैं कि कोई बात नहीं, आराम से चलते रहो, आराम से अगर घर पे हो इस समय, चाय पी रहे हो, बिस्किट्स खा रहे हो या कुछ ऐसी चीज स्नैक्स ले रहे हो तो लो आराम से इंजॉय। किसने कौन सा भागना है, कहीं किसी ने नहीं भागना। देखिए रोड कहीं नहीं जा सकती, रोड पे तो हम ही हैं, हम आराम से चलेंगे तो आराम से चलते रहिए। जैसे ही थोड़ा सा ट्रैफिक धीरे होगा, हल्का हल्का इधर उधर गाड़ियाँ जाएंगी, बस फिर आप फटाफट से अपने घर पहुंच जाएंगे। तो हम तो यही कहेंगे बॉलीवुड ने इतने अच्छे गाने दिए हैं, क्यों ना इन्जॉय किया जाए। गानों के साथ साथ आपको इतना ही सिर्फ कहूंगी कि जो टाइम है ना इसको थोड़ा सा इन्जॉय करो, क्योंकि अगर अकेले बैठे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर दुकेले बैठे हो तो कोई दो जनों से दो चार बातें कर लो साथ साथ, हैं क्यों नहीं। ये गाना आप सबके लिए।
3: जब भी

बस थोड़ी देर बाद हम बढ़ेंगे इंग्लिश न्यूज की तरफ और हम तो इतना ही कहेंगे आपको, जहाँ पर भी हैं आराम से आगे आगे बढ़ते रहिए, धीरे धीरे कोई टेंशन मत लो, ये गाने बहुत ही अच्छे हैं और आपकी पसंद के हैं और जो आपकी पसंद है वो तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है।

0: झुमका
1: Friday Mashup RM2 Radio Musti
2: 5:07 हो चुके हैं. झुमका कहाँ गिरा ये तो हमें पता नहीं है, पर इतना पता है कोई बस कहीं पर दिल की धड़कनें तेज होने वाली हैं, क्योंकि 5:08 हो चुके हैं और है आज फ्राइडे. भाई फ्राइडे तो ऐसा दिन होता है ना जहाँ पर हमें कहीं घूमना होता है, कहीं पर थोड़ी सी पार्टी शार्टी करनी होती है और एहसास होता है कि किसी खास के साथ जाया जाए. पर हम आपको इतना बताएंगे कि चलिए भाई कल जहाँ जाएंगे जाएंगे, पर आज जो स्पेशल डे आपने बना लिया, पर जो कल स्पेशल होने जा रहा है बहुत ही खास है. कल है शनिवार और शॉपिंग का अगर प्लान बनाया हुआ है तो सब तरफ से कैंसिल कर दो, क्योंकि हम आपको लेके जाने वाले हैं एक स्पेशल ऐसी जगह पे जिसे कहते हैं कादिया इलेक्ट्रिक मोबाइल, जो कि बोवालो शोरूम है, जहाँ पे कल 3 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक बहुत ही खास प्रमोशंस लगने वाले हैं, यानी कि मतलब 20%

30% 40% 50% के जितने मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं ना उसके ऊपर आपको इतनी सेविंग्स मिलने वाली है, चाहे आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हों, फर्नीचर्स हों, चाहे आपके बहुत मतलब ए टू जेड हर चीज़ अवेलेबल है उस शोरूम में और इतने अच्छे ऑफर्स हैं, तो आज कहाँ जाना है वहाँ पर प्लान कर लो। पर ये जो कल और परसों का दिन है ना इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस टाइम छुट्टी है, मस्ती का टाइम है और थोड़ा सा बच्चों को लेके जाना है, तो सब प्लानिंग करते हैं एक एक करके, साथ में बढ़ते हैं और आपको गाने सुनाते हैं। पर पहले आपको बताएंगे ये गाना जो है ना बहुत ही स्पेशल है किसी खास के लिए, तो चलिए एंजॉय कीजिए इस गाने को और उसके बाद बढ़ते हैं आगे।

0: Friday Mashup.
1: RM2 Radio Musti.
2: 5:15 मिनट हो चुके हैं दोस्तों. अगर आपने प्लानिंग कर ली है आज की तो कोई बात नहीं, बट हम तो आपको बताएंगे कल की क्या प्लानिंग आप कर सकते हैं. कहते हैं ना कि वाइफ से तो हर कोई पूछता है, मम्मी से हर कोई पूछता है, पर जो खास तौर पर आजकल जो नंबर मार गई हैं वो है हमारी बेटियां. तो आजकल तो सब पसंद बेटियों की जाती है, तो बस बेटियों को पूछो कि भाई क्या लेना है. घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको चाहिए होती है और पता नहीं होता कि, मतलब मेल्स को तो नॉर्मली होता है कि हाँ जो है सो ठीक है, पर विमेंस जो होती हैं और जो बेटियां होती हैं उनको एहसास होता है कि नहीं थोड़ी ये चेंज कर लो वो चेंज कर लो. अगर आपको डाइनिंग टेबल चाहिए, सोफा चाहिए, फर्नीचर चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स चाहिए, तो बहुत अच्छी ऑफर लगी हुई है काद्या इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल्स बोवालो शोरूम में, जहाँ जो पुरानी किंग सेवर्स की बिल्डिंग में है. और 3 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक ये चलेगी और इसमें बहुत ही अच्छे मतलब डिस्काउंट्स लगे हैं. क्या बताऊँ आपको, मेरा तो खुद ही दिल कर रहा है कि क्या क्या ले सकते हैं. अगर आपको बेडरूम सेट चाहिए तो मास्टर बेडरूम जो है विलिंगटन का, जो 69,900 रुपीज़ में नॉर्मली प्राइस उनके पास होता है, वो सिर्फ 39,900 में मिल रहा है आपको. अगर वार्डरोब 3 drawers फ्रॉम इंडोनेशिया आपको चाहिए, 59,900 नॉर्मल प्राइस है, वो आपको सिर्फ 29,900 में मिल रहा है, वो भी टेक वुड में. क्या बात है. डाइनिंग टेबल अगर प्लस 6 chairs आपको वुडन चाहिए तो 49,900 का जो नॉर्मल एक्चुअल प्राइस होता है वो आपको मिल रहा है सिर्फ 19,900 में. वार्डरोब विद 5 doors विद ड्रेसिंग इंटीग्रेटेड अगर आपको चाहिए, जो कि उनका नॉर्मल प्राइस होता है 69,900, वो आपको मिल रहा है सिर्फ 39,900 में. ये बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं. इसके साथ में अगर आप बात करें वॉशिंग मशीन की, जो कि फ्रंट लोडिंग है, 16,900 रुपीस में, जो कि नॉर्मल उनका प्राइस होता है 21,000. ये है सैमसंग की 7 kg 23% ऑफ मिल रहा है आपको. और वॉशिंग मशीन कैंडी आपको मिलने वाली है, इसका नॉर्मल प्राइस होता है एक्चुअल 18,990 रुपीस, ये आपको सिर्फ मिलने जा रहा है 13,490 रुपीस में. 5,000 रुपीस का आपको फायदा होने वाला है, 29% ऑफ है भाई. बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे एक एक करके आपको बताती जाऊंगी, बट आपको ये बोलूंगी गानों के साथ हमारे साथ रहिए. थोड़ी देर बाद हम इनके मैनेजर जो है सारिका धुमन जी, उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि और उनके पास क्या क्या ऑफर्स है. इंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल सॉन्ग को.

0: Friday Mashup.
1: RM2 Radio Musti.
2: 5:24 हो चुके हैं और इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सरिका जी, जो कि मैनेजर हैं, सारिका धूमन जी, और वो काजिया इलेक्ट्रोमोबल की मैनेजर हैं। सिर्फ एक शॉप की नहीं है जबकि है 5 शॉप्स की। चलिए बात करते हैं सीधा उनसे। हेलो सारिका जी, आपको आवाज़ आ रही है?
3: हाँ,
2: कैसे हैं जी आप?
3: मैं बढ़िया, आप सुनाइए।
2: बिल्कुल ठीक है जी। जी हाँ जी, आप बताइए, आप क्या लेकर आई हैं और क्या प्रमोशन चल रही है? क्योंकि आपने, जैसे हमें पता चला है कि कल से लेकर 18 तारीख अक्टूबर तक बहुत सारी प्रमोशंस आप दे रहे हैं, तो क्या क्या आपके प्रोडक्ट्स हैं, क्या है हमें बताइए। हमारे सभी लिसनर्स RM2 के सभी सुन रहे हैं अभी इस समय।
3: हाँ, आप सबको मेरा नमस्कार। यहाँ पर जो मैं बोलने वाली हूँ, आप सबको ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगर आपने ये मौका मिस कर दिया तो जान लो हाथ से निकल गया मौका।
2: ओके।
3: क्योंकि मैं क्या बोलूं आपको, हमारे यहाँ प्रमोशन में बताने को बहुत चीज है। जैसे मब है, टीवी कैबिनेट जिसमें स्टोरेज है, स्टोरेज और वो एक टेबल भी बन सकता है, एक ऑफिस टेबल भी बन सकता है, जो क्वालिटी में बहुत अच्छी है और वो सिर्फ 4,900 रुपये में।
2: ओह वाओ, ओके। और क्या है?
3: और है, और जैसे मैं क्या बोलूं, दिवाली आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, सबको ये मौका जरूर देखकर आना चाहिए हमारे शोरूम, वो वालों जो एक्स किंग सेवर्स में पाए जाते हैं, काटिया इलेक्ट्रोमर्स। हमारे यहाँ से सोफा में जो आया है प्रमोशन, वो वुडन का है, वुडन उसमें आता है 3 सीटर और 3 1-seater, 6-seater, और वो उसका डिजाइन भी यूनिक है, वेरी सॉलिड वुड। प्राइस सुनेंगे तो आप खुद अभी दौड़े आ जाएंगे।
2: बताइए।
3: ओनली फॉर 25,000।
2: वाओ, ओके। तो अभी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में क्या क्या प्रोडक्ट्स है मैम?
3: इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या बोलूं, सब है।
2: फिर भी हमारे लिसनर्स को तो नहीं हम कह सकते कि सिर्फ सब है, आप बताएं कि क्या क्या चीजें हैं। जी क्या क्या चीजें हैं
3: हमारे यहाँ? एक से एक बढ़कर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक बाइक, एक्सरसाइजर्स, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, किचन अप्लायंसेस, एसी, टूल्स, सब मिलेगा।
2: ओके,
3: समझ लीजिए पूनम जी, ये वन स्टॉप शॉप है।
2: ओके, वेरी गुड। और

0: है वो इतना मतलब चीप एंड बेस्ट कह सकते हैं, क्योंकि टिक वुड तो मिलता ही नहीं है. तो ये चीजें आपके पास हैं तो हम तो यही कहेंगे
1: हमारे पास. हाँ, हम तो ये सी फूड में भी बढ़िया बढ़िया आइटम है.
0: ओके, और क्या चीजें हैं आपके पास?
1: जैसे हमने हमारे पास सी फूड बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है. जैसे अभी जो मैंने प्रोमो में डाला है, एक वार्डरोब है फ्री डॉल्स का,
0: राइट,
1: जो बहुत ही जो इंडोनेशिया से आया है, वेरी गुड क्वालिटी.
0: चलिए, थैंक यू सो मच आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. फिर से हम आपसे जुड़ेंगे साथ में, पर हम आपको इतना ही बोलेंगे सारे सभी जो भी इस समय. थैंक यू सरिका जी. इस समय हम थोड़ी देर बाद आपसे फिर से जुड़ते हैं. तो हम तो यही कहेंगे कि भाई जो भी इस समय प्लानिंग कर रहे हैं कहीं और घूमने की, कहीं मत जाइए, सीधा चली जाइए इस शोरूम में भोआवलो में, और वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, जहाँ पर इतनी अच्छी प्रमोशन लगी हुई है. कहते हैं ना कि अगर प्रमोशन लगे और हम ना जाएं ऐसा कैसे हो सकता है. तो इन्जॉय कीजिए गाने को और प्लानिंग कीजिए.

5:31 हो चुके हैं और आपको हम बताई है कि कहते कल यानी कि 3 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक कादिया इलेक्ट्रोमोबल में बहुत ही ज़्यादा प्रमोशंस लगने वाले हैं और प्रमोशंस के बारे में हम आपको ना बताएं ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इतने सारे कॉल्स आ रहे कह रहे हैं बताइए बताइए कि कहाँ कहाँ और क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो हम आपको बता दें इनके पास बहुत सारे किचन आइटम्स भी हैं, तो जो कि किचन आइटम्स इनकी एक यूनिट है वुडन यूनिट जिसको ये लोग नॉर्मली 17,900 में बेचते हैं और ये सिर्फ है 9,900 रुपीज़ में मिल रही है और डिस्प्ले कैबिनेट जो है 4 doors जो कि 39,000 की नॉर्मल प्राइस होता है ये 20,000 में है और टीवी कैबिनेट जो कि नॉर्मली 10,000

1900 में होती है, ये बस सिर्फ 4900 में है। सोफा कॉर्नर टर्की का, जो कि स्पेशल है और एक बहुत ही क्लासिक डिज़ाइन है, उसकी टेक्सचर कह लो, उसकी क्वालिटी कह लो, कहते हैं मतलब 10-15 साल तो आराम से चलेगा अगर आपको चेंज करने का मन है, क्योंकि कई बार एक ही चीज़ को देखते देखते बोर हो जाते हैं, घर में सुकून नहीं मिलता और रियलाइज़ होता है कि भी सेम चीज़ें देखने को पड़ती है। तो अगर आपको थोड़ा सा चेंज करना है, घर में थोड़ा सा वाइब्रेशन चेंज करनी है, तो हम तो आपको बोलेंगे ये बहुत अच्छा ऑफर है आपको, जो कि 1,25,900 रुपए का, यानी कि 125,900 रुपीस का नॉर्मल प्राइस पे है, एक्चुअल प्राइस है इसका, ये सिर्फ मिल रहा है आपको 69,900 रुपीस में। वुडन सोफा सेट मिल रहा है 39,000 का, जो नॉर्मल प्राइस है ये सिर्फ 25,000 रुपीस में। और बात करें तो और भी इनके पास इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में जो ऑफर इनकी बहुत अच्छी है, वॉशिंग मशीन सैमसंग आपको हमने बताई दी है 7 kg वाली 16,900 रुपीज़ में। कैंडी की जो वॉशिंग मशीन है, जो कि फ्रंट लोडिंग है, ये नॉर्मल प्राइस है 18,999 का, इसमें भी आपको 29% ऑफ मिल रहा है 13,490 रुपीज़ की। फ्रंट लोडिंग में एक और वॉशिंग मशीन कैंडी की है, जो कि इसका 14 kg की है, मतलब बहुत सॉलिड है और जिनके घर में बहुत सारे लोग होते हैं उससे रिलेटेड है, 24,900 रुपीज़ में मिल रही है, जबकि ये 30,000 रुपीज़ की नॉर्मल प्राइस एक्चुअल प्राइस मिलती है सभी जगह आपको। और एक और वॉशिंग मशीन है जो कि फ्रंट लोडिंग है और क्वेस्ट की है और इसमें 9 kg की है और कैश प्राइस अगर आप बात करें तो आपको सिर्फ मिलेगी 16,490 रुपीज़ की। क्या बात है, आपको इतने सारे पैसे मतलब सेविंग मिलने वाले हैं। और साथ में इसके और हम आपको बताएंगे बहुत सारी और ऑप्शन हैं, एक एक करके आपको बताते चलेंगे, पर आपको साथ में इतना ही बताएंगे, ये है टाइम सबसे ज़्यादा स्पेशल आपकी शॉपिंग का।

0: Friday Mashup.
1: RM2 Radio Musti.
2: 5:37 हो चुके हैं, तो एक बार फिर से आपको लेके चलते हैं स्पेशल हमारी उसी सारिका मैनेजर के पास, जो कि कादिया इलेक्ट्रोमोबाइल

0: की मैनेजर हैं और उन्हीं से बात करते हैं. हेलो मैम अगेन. हेलो. यस. हेलो. हेलो जी.
1: हाँ हेलो.
0: हेलो जी. हाय सारिका जी, कैसे हैं आप?
1: हाय.
0: आपका आवाज आ रही है आराम से? चलिए जी, आप हमें बताइए कि आप इतने साल से कादिया इलेक्ट्रॉन मॉल ब्लू में काम करती हैं, तो कितने साल हो गए और अभी आप कितनी शॉप्स हैं वहाँ पर? पहले आप कैसे थे, तो अपनी थोड़ी सी जर्नी बारे में बताइए हमें.
1: अच्छा, वेल मैं यहाँ 18 इयर्स का सर्विस कर चुकी हूँ. और जब मैं आई थी तो एक ही शॉप था हमारा उस बिल में.
0: ओके.
1: फिर धीरे धीरे धीरे धीरे हमारे पास आज 5 शोरूम है.
0: ओ वाओ.
1: वो सब हमारे क्लाइंट के भरोसे से और हमारे जैसे सर्विस जो अच्छा है जो देती है क्लाइंट को.
0: वेरी नाइस. क्या बात है, क्या बात है.
1: जैसे हमारा पहला शोरूम जो खुला था वो ओजबेल में था. वो हमारा मेन है. फिर उसके बाद आया पोर्ट लुइस, बुवालो, शिमेग्रेने, फ्लक. और आज जो प्रोमो चल रहा है वो बुवालो में है.
0: ओके.
1: एक्स किंग सेवर्स के बिल्डिंग में है जो पाया जाता है बुवालो में, जस्ट आफ्टर बुवालो मॉल.
0: ओके. और अगर किसी को वहाँ पे आना हो और उनके पास कोई नंबर आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ?
1: शो हाँ, वहाँ का नंबर है 3630.
0: ओके.
1: 3000.
0: ऑलराइट, ग्रेट. तो और बताइए कि अगर आप, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही, मतलब 18 साल कोई कम पीरियड नहीं होता है, तो आप बहुत ही लॉयल स्टाफ हैं. तो वहाँ पर और जो स्टाफ है वो भी इतने साल से है, जुड़ा हुआ है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर हम स्टाफ को स्टाफ नहीं बल्कि फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट करते हैं.
0: वाओ.
1: और हम, आई कैन से वी फील वेरी हैप्पी टू वर्क विद आवर बॉस.
0: क्या बात है.
1: वो सबको बहुत ही ठीक से देखता है, कभी भी जैसे प्रश्न नहीं डालता.
0: Okay.
1: वो हमेशा अपने स्टाफ के बारे में ख्याल रखता है.
0: तो क्या नाम है उनका?
1: स्टाफ और क्लाइंट, उसका नाम है मिस्टर यूसुफ कादिया.
0: कादिया, उन्हीं के नाम पे ये शॉप का नाम है, राइट?
1: तो हाँ,
0: ओके.
1: बिल्कुल.
0: तो आप बिल्कुल. कितने, और तो अभी हमें बताएंगे और कोई प्रमोशन आपको जो आप बताना चाहें?
1: हाँ बिल्कुल, जिसका शादी होने वाला है वो दौड़ते हुए आ जाओ.
0: अरे क्या बात है. राइट.
1: क्योंकि वहाँ पर बेडरूम सेट है, किंग साइज मास्टर बेडरूम, किंग साइज बेड, वार्डरोब है 2, उसके बेड साइड 2 है, और उसका ड्रेसिंग टेबल वो 90,000 से निकल कर 39,000 आ गया है.
0: अरे क्या बात है, क्या बात है. ये तो भाई आपने
1: शादी भी नहीं करना है, उसे भी करना
0: सो नाइस ऑफ यू. थैंक यू सो मच. फिर से जुड़ेंगे आपके पास थोड़ी देर में. तो हम तो यही बोलेंगे कि थैंक यू सो मच. हम तो यही बोलना चाहेंगे कि भाई जिनके जिनकी शादी होने वाली है वो भी वहाँ पहुँच जाइए. और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मतलब प्रमोशंस लगाए हुए हैं. जो 69,000 रुपीज़ का फ्रिज है डबल डोर, वो 46,000 का मिल रहा है. और जो कैश प्राइज में एक और है जिसमें अप एंड डाउन फ्रीज़र भी होता है और साथ में कह लीजिए फ्रिज भी होता है, तो वो 59,000 का है वो 43,000 रुपीज़ में मिल रहा है. और साथ में कैश प्राइस में एक और अगर आपको छोटा चाहिए, आपको कहते हैं ना 5,000 रुपीज़ का, इसमें आपको कैश प्राइस गिफ्ट मिल रहा है. तो इसमें 24,000 जो नॉर्मली आपको मिलता है एक छोटा फ्रिज, वो आपको सिर्फ 19,000 में मिल रहा है. उसके बाद में ये क्वेस्ट का है और ये शॉप का भी बहुत ही अच्छा प्राइस इन्होंने दिया हुआ है. क्वेस्ट का जो प्राइस है इस समय 20,000 यानी कि 20,000 का जो है उसका एक्चुअल प्राइस वो सिर्फ 14,900 में मिल रहा है, यानी कि 30% ऑफ मिल रहा है. साथ में कैंडी का भी बहुत ही अच्छा फ्रिज है जो कि 28,000 का होता है और ये 22,000 में मिल रहा है. तो एक एक करके आपको फिर से दोबारा से लेके चलेंगे हम सारिका जी के पास, पर आपको यही बोलेंगे आज कहीं मत जाइए. आरुण टू रेडियो मस्ती के साथ मस्ती कीजिए.

0: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
1: फ्राइडे मैशअप
2: RM2 रेडियो मस्ती।
3: 5:44 हो चुके हैं दोस्तों, और ये हलकोरी फैशन टिप आपके लिए लेकर आए हैं हम। अगर आपकी कोई जैसे कुर्ती या शर्ट या ड्रेस वेस्ट से थोड़ी सी टाइट हो जाती है तो आपको क्या करना है। कई बार हम वो ड्रेस बहुत अच्छी होती है, बहुत सुंदर होती है, पर हमको लगता है कि भी टाइट हो गई है तो अब इसको हटा दें या फेंक दें। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप सिर्फ टेलर के पास जाइए, उसको बोलिए कि सेम कंट्रास्ट का फैब्रिक लीजिए। फैब्रिक सेम होना चाहिए, जो आपका फैब्रिक ऑलरेडी है उस ड्रेस का फैब्रिक सेम होना चाहिए। कलर कोई भी हो सकता है, डिजाइन उस पर कोई भी हो सकता है। और उसको क्या करेंगे, एक पतली सी पैनल लगवा लें उसमें, मतलब एक साइड में से पैनल एक्स्ट्रा करवा दें, और उसके ऊपर एक प्यारी सी, मतलब आप हैंड एम्ब्रॉयडरी करवा सकते हैं, या आजकल तो बहुत सारे बटन्स मिलते हैं, बहुत सारे कहते हैं जो कांच जैसे छोटे छोटे डिजाइन होते हैं, या कोई प्यारी सी लेस होती है वो प्रॉपर मैचिंग की, उसको कंट्रास्ट लगा दीजिए। वो कपड़ा आपका एक्स्ट्रा भी बन जाएगा, आपका वो ख़राब भी नहीं होगा। और कहते हैं ना कि जो डिज़ाइन आपने चूज़ कर रखा है, और उसमें कई बार बच्चों के साथ भी ऐसे होता है कि भाई वो मतलब हल्का हल्का टाइट होने लगता है, तो आप उसने फैब्रिक सेम रखिए और उसको साइड से उसमें एक्स्ट्रा ऐड करवा दीजिए, और ऐड करवा के उसको फैशन, कहाँ फैशन जाता है, बस फैशन यही होता है थोड़ा सा चेंज एंड ऑल्ट्रेशन कर दें, तो आपकी वही चीज़ जो कि आपको इतने टाइम तक आपको वेस्ट करनी पड़ती है, पैसे एक्स्ट्रा वेस्ट हो जाते हैं, तो उसको वेस्ट मत कीजिए, उसको यूज़ कीजिए, रीयूज़ कीजिए, और फिर उसको पहनिए, और आप बहुत सुंदर लगेंगे, और खुद का भी तो पता चलेगा ना कि आप खुद भी उसमें अपना क्या इनिशिएटिव डालते हैं, और आप देखिएगा कि ब्यूटीफुल एक ड्रेस निकल कर बाहर आएगी, और आपको एहसास होगा कि आपने थोड़ा सा बस चेंजेस किए हैं, थोड़ा सा टेलर से बात की है और अपना दिमाग लगा के कुछ अच्छा सा बना लिया।
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हलकोरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
4: ചുവപ്പ് നിറത്തിലെ സാരിയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഡേഞ്ചർ ആണല്ലോ, ചുവപ്പ് നിറത്തിലെ സാരിയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഡേഞ്ചർ.

0: Friday Mashup.
1: RM2, Radio Musti.
2: क्या बात है भाई। हाँ, आपको पता ही है कि 3 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर को बहुत ही बढ़िया एक प्रमोशन लगने वाली है, जो कि है कादिया इलेक्ट्रो मोपले में। और इसके अंदर जो बजट है बहुत ही अच्छा है। कितनी चीज़ें आपको आज हमने बताई हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्रमोशन लगने के बाद और उसके बाद एहसास होता है कि भाई हमारे पास जो चीज़ें नहीं है वो भी ख़रीद ली जाए। तो जिस तरीके से हमने सारिका जी को एक बार अभी लिया था, साथ में फिर से लेंगे, पर हम आपको बता दें कि अगर आपको AC लेना है, अगर आपको रूम साइज़ है का, तो वो लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। उनके पास होम डिलीवरी भी फ्री है, आपको पार्किंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंस्टॉलेशन अगर आप करवाना चाहते हैं तो भी वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आपकी प्लानिंग और आपको गाइड करेंगे बहुत अच्छे तरीके से कि आपको कहाँ से लेना है। अगर आपको जनरेटर लेना है तो कहाँ से ले सकते हैं। उनके जो बॉस हैं मिस्टर कादिया, मतलब उनको बहुत 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं। तभी तो कहते हैं ना कि जब इतनी चीज़ें की समझ होती है तभी इतने शोरूम्स बनते हैं। और कहते हैं कि वो इज वेरी सपोर्टिव, तो हम तो चाहेंगे कि सीधा सारिका जी उनके बारे में थोड़ा और बताएं। हेलो मैम, कैसे हैं जी? फिर से हम आ गए आपके पास। यस मैम, हेलो सारिका जी।
3: हेलो
2: जी जी, तो और बताइए कि अभी आप जिस तरीके से आपने बताया कि पार्किंग की वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर, यस आप डिलीवरी भी वहाँ पर घर पे फ्री देंगे, और इसके अलावा क्या आप बताना चाहेंगे?
3: वैसे हमारे बॉस का जो 40 साल का एक्सपीरियंस है,
2: yes, ma'am.
3: वो हर क्लाइंट को ठीक से समझ लेता है, उसे क्या चाहिए, उसका क्या डिमांड है।
2: तो वो खुद पर्सनली, मैम वो खुद पर्सनली हमेशा वहाँ पर होते हैं?
3: हाँ, पर्सनली।
2: सो नाइस।
3: कभी कभी ये, हाँ, वो क्लाइंट को भी अटेंड करता है और क्लाइंट का प्रॉब्लम भी समझता है।
2: अरे वंडरफुल।
3: जैसे क्या प्रॉब्लम है, क्या खरीदना है, अगर किसी को AC नॉन इन्वर्टर चाहिए या क्या चाहिए, ये सब वो क्लाइंट को
2: एक्सप्लेन करते हैं,
3: आइडिया भी देता है, एक्सप्लेन करता है अच्छी तरह से।
2: तो आपके पास सैमसंग है, जैसे आपके पास सैमसंग है, कैंडी है, क्वेस्ट है, पैनासोनिक के ऑफर्स हैं, बेको है, तो ये सारी चीज़ों के तो है ही हैं। इसमें जैसे अगर किसी को, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं तो AC भी चाहिए होगा, तो उसके अंदर भी आपके पास ऑप्शंस हैं मैम?
3: हाँ, AC भी है।
2: तो आपके पास जैसे बच्चों के लिए एग्जाम्स हैं, और अगर आपको लैपटॉप्स लेने हैं या टैबलेट्स लेने हैं, इसके अलावा है। क्लोथ्स हैं आपके पास?
3: नहीं, वो नहीं है।
2: ओके, राइट। बाकी तो फिर नहीं, नहीं अच्छा है ना, हमारे को आपसे पता चल रहा है और क्या चीजें हैं, और क्या क्या चीजें हैं, क्या और कौन सी चीजें हैं आपके पास?
3: जैसे मैंने आपको बोला, दिस इज वन स्टॉप शॉप।
2: ओके,
3: आपको

0: इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, फर्नीचर में जो भी चाहिए, कुछ भी, सब है हमारे पास. और बेफिक्र हमारे पास आइए, क्योंकि हमारा प्राइस, हमारा क्वालिटी, हमारा सर्विस, हमारा डिलीवरी फ्री है. हमारे क्लाइंट के लिए हम हमेशा पार्किंग रिजर्व रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी.
1: अरे वंडरफुल, सो नाइस ऑफ यू मैम. आपने हमारा इतना साथ दिया और हमें बताया कि कितनी चीजें हैं वहाँ पर और क्या प्राइजेस हैं. तो हम तो फिर से आपके साथ थोड़ी देर बाद फिर से जुड़ सकेंगे. तब तक आप इंजॉय कीजिए गानों को. तो चलिए जी, हम भी आपको बता देते हैं, यहाँ पर एक कैंडी का बहुत ही प्यारा सा क्या कहते हैं रेफ्रिजरेटर है, जो कि 28,000 का है. बट अभी इसका एक्चुअल प्राइस में, अभी नॉर्मल प्राइस में मिल रहा है आपको 22,000 रुपीज़ में. इसके साथ में कैंडी का भी रेफ्रिजरेटर है जो कि छोटा है और जो कि 18,000 रुपीज़ में होता है, वो 14,900 में मिल रहा है. उसके साथ में ही बहुत सारे और बेको का है जो 17,000 में है, वो 14,000 में मिल रहा है. और मैं मुझे तो लगता है कि आपको एक बार जाके ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें समझ नहीं आती है. पर फिर भी कैंडी का एक रेफ्रिजरेटर है जो कि नॉर्मल प्राइस उसका 34,900 है और अभी इस समय 26% ऑफ में आपको 25,900 में मिल रहा है. इसके साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी उन्होंने सारिका जी ने बताया कि उनके पास बहुत सारे आइटम्स वो हैं जो उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में है, फर्नीचर में है, डेकोरेशंस में है. तो क्यों मिस करना, क्यों सैटरडे संडे यही प्लान कर लो. जो चीज़ें चाहिए आपको एक ही जगह पे, एक ही छत के नीचे आपको मिल जाएंगी. हमारे साथ रहिए आरएम2 रेडियो मस्ती में, और मैं हूँ आपके साथ पूनम.

0: Friday Mashup.
1: RM2 Radio Musti.
2: 5:57 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, अब हम बेवफा तो नहीं होंगे पर जाना तो पड़ेगा, क्या करें। पर मेरे बाद आपको साथ मिलेगा दिव्या का और हम तो कहेंगे हमारे साथ ही रहिए आरएम2 रेडियो मस्ती में। और ये टाइम है आपका, घर पहुंचिए, एंजॉय कीजिए गानों को।

नमस्कार शाम के ठीक 6 बजे हैं। पेश आज का पूरा समाचार बुलेटिन। सबसे पहले सुर्खियां। भले ही स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन रोज राशन चावल 2.5 किलो के 15,000 पैकेट बाजार में भेज रहा है, लेकिन अगली खेप में देरी के ऐलान के बाद मांग बढ़ने से कई दुकानों पर राशन चावल उपलब्ध नहीं है। एयरलिंक की पहली नॉनस्टॉप उड़ान 124 यात्रियों के साथ केप टाउन से मॉरिशस पहुंची, जिसका पारंपरिक स्वागत किया गया। मंगलवार और शुक्रवार को हफ्ते में 2 उड़ानों की इस नई सेवा से दक्षिण अफ्रीकी पर्यटकों और निवेशकों के लिए मॉरिशस आना और आसान हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में पोर्टविस में 90 वर्षीय बालकृष्ण लक्ष्मया की हत्या के मामले में क्रिस्टोफ जोनाथन मैकडेलेन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और वो पहले से ही एक अन्य हत्या के लिए 23 साल की सजा काट रहा है। और आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जा रही है। भारत की तरह मॉरिशस में भी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर शांति और अहिंसा के प्रतीक महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए मोका स्थित महात्मा गांधी संस्थान और रिव्या चौपा के गांधी चौक पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। और अब समाचार विस्तार से। दुकानों में राशन चावल की उपलब्धता इन दिनों कई सवाल खड़े कर रही है। हालांकि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का कहना है कि वो बाजार में रोजाना औसतन 2.5 किलो के 15,000 पैकेट उतार रहा है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कई बिक्री केंद्रों पर ये खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं है। जिन दुकानदारों से हमारी टीम ने मुलाकात की, उनके अनुसार अगली खेप के आने में देरी होने की बात कहने वाले एसटीसी के बयान के ठीक बाद पिछले एक हफ्ते से राशन चावल की मांग बढ़ गई है।

0: आसिम का मानना है कि मध्य पूर्व की स्थिति के प्रभाव कई देशों को प्रभावित कर रहे हैं जो मॉरिशस में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि को उचित ठहराते हैं ऐसा संगठन का कहना है लेकिन इसके अध्यक्ष ने हालिया बढ़ोतरी को अत्यधिक करार दिया है जयंत चिलम ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में 2 रुपये की कमी की मांग की है आम जनता को सूचित किया जाता है कि दिवाली रविवार 8 नवंबर को मनाई जा रही है इसलिए सोमवार 9 नवंबर को आम छुट्टी का दिन होगा 13 अगस्त को पब्लिक हॉलीडेज एक्ट में लाए गए सुधारों के तहत ये कदम लागू किया गया है पहले मॉरिशस नेशनल फॉर्मुलरी को अंतिम रूप देने के लिए एक वैलिडेशन कार्यशाला आयोजित की गई ये स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन और जेएसएस अकादमी के सहयोग से तैयार किया गया एक रेफरेंस मेडिकल गाइड है ये दस्तावेज मॉरिशस में अधिकृत और उपलब्ध 8000 दवाओं की सूची उनके सटीक संकेतों के साथ साथ अदला बदली के नियमों को सूचीबद्ध करता है दवाओं के गलत इस्तेमाल से होने वाले वित्तीय नुकसान और स्वास्थ्य संबंधी खतरों की चिंताजनक स्थिति को देखते हुए इस दस्तावेज का उद्देश्य इस साल दिसंबर से स्वास्थ्य पेशेवरों के तौर तरीकों में एक रूपता लाना और जनता के लिए पारदर्शिता प्रदान करना है ज्यादा जानकारी याचना मिश्रा के साथ
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दवाओं के इस्तेमाल में होने वाली गलतियों से दुनिया भर में हर साल $42 बिलियन खर्च होते हैं मॉरिशस में भी ऐसी गलतियों के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च का बोझ बढ़ता है इसी समस्या से निपटने के लिए अधिकारियों ने देश के पहले मॉरिशस नेशनल फॉर्मुलरी पर एक कार्यशाला का आयोजन किया एक औपचारिक दस्तावेज जिसमें मॉरिशस की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए स्वीकृत सुरक्षित और आवश्यक सभी दवाइयां शामिल हैं
2: Ça formule là pour guide ben professionnel comme ben médecin, ben pharmacien, ben nurse pour prescrire un médicament.
1: ये दस्तावेज डॉक्टर नर्स फार्मासिस्ट आदि को प्रेस्क्रिप्शन में मदद देगी दवाइयों के प्रभाव पर वे जान पाएंगे जिसे मरीज रिपोर्ट भी कर पाएंगे
2: साइड इफेक्ट है ना ça peut aider pour report ce side effect là pour ce médecin traitant.
1: इस दस्तावेज को तैयार करने में करीब 1.5 साल लगे इस दौरान गहन शोध आंकड़ों का संकलन और कड़ी जांच पड़ताल की गई जिसमें जेएसएस अकादमी का सहयोग रहा
3: Mais c'est un projet, nous avons un étudiant docteur en pharmacie qui nous préparait. Ici, c'est la première fois qu'il nous fait la liste de tous les médicaments.
1: Pharmacie que docteur विद्यार्थियों ने ये तैयार किया पहली बार के लिए ऐसी गहन दस्तावेज तैयार की गई हैं बच्चों गर्भवती महिलाओं आदि के लिए इसमें ज्यादा जानकारी है स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार ये दस्तावेज स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सभी पेशेवरों के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगी चिकित्सा क्षेत्र के हर एक कर्मचारी को इससे मदद मिलेगी मरीज भी जानना चाहते हैं अपनी दवाइयों के बारे में ये सभी के लिए सहायक हैं। मॉरिशस नेशनल फॉर्मुलरी में कुल 8000 दवाओं की जानकारी है दिसंबर से इसे लागू किया जाएगा
0: शाम के 5:15 एयरलिंक का विमान मॉरिशस की जमीन पर उतरा इस पहली उड़ान के लिए पारंपरिक जल छिड़काव के साथ स्वागत किया गया इसमें 124 यात्री सवार थे ये नई नॉनस्टॉप उड़ान सेवा केपटाउन और मॉरिशस को सीधे आपस में जोड़ती हैं अब हर हफ्ते 2 उड़ानों मंगलवार और शुक्रवार के निर्धारित होने के साथ देश दक्षिण अफ्रीकी पर्यटकों और निवेशकों दोनों के लिए अपनी सुलभता को मजबूत कर रहा है इस उद्घाटन उड़ान के लिए इस शुक्रवार देर शाम सिसिसागर रामगुलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पर्यटन क्षेत्र विमानन और मॉरिशस में स्थित दक्षिण अफ्रीकी व्यापार समुदाय के प्रतिनिधि मौजूद थे भारत की तरह मॉरिशस में भी आज 2 अक्टूबर शांति और अहिंसा के प्रतीक महात्मा गांधी की स्मृति को समर्पित हैं गांधी जयंती के अवसर पर देश भर में कई स्मृति समारोह और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की गईं मोका स्थित महात्मा गांधी संस्थान और रिविया जोगांपा के गांधी चौक में फूल चढ़ाने का समारोह आयोजित किया गया जिसमें कई महानुभाव उपस्थित थे पूजा सुकालू को सुनते हैं
4: मोहनदास करमचंद गांधी जिन्हें दुनिया महात्मा गांधी और प्यार से बापू के नाम से जानते हैं

0: जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का आधार बनाया और इन्हीं सिद्धांतों के बल पर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। गांधी जी के प्रमुख जीवन सिद्धांतों में सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सादगी, आत्म अनुशासन और सर्वधर्म सम्मान शामिल थे। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आज मॉरिशस में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्कूल के स्तर पर गांधी जयंती को विशेष रूप से मनाया गया। मुका स्थित महात्मा गांधी संस्थान में आयोजित गरिमापूर्ण समारोह में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए गए।
1: महात्मा गांधी और मॉरिशस का संबंध है, ये बहुत विशेष संबंध है और इस संबंध का प्रभाव आज भी हम इस देश में देखते हैं। साथ साथ हम देख रहे हैं कि महात्मा गांधी का प्रभाव हमारे ऊपर आज भी कितना ज़्यादा है। इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि उनकी टीचिंग्स का, उनके आइडियल्स का हमारे ऊपर कितना ज़्यादा प्रभाव रहा है।
0: सम्मानित अतिथियों में एमबीसी के महानिदेशक अले गोदो रांची भी उपस्थित थे। उनकी प्रमुख प्रस्तुतियों में ले मुसों एचिम स्वलुथ्रास जू महात्मा गांधी नामक डॉक्यूमेंटरी फिल्म भी शामिल है, जिनकी लॉन्चिंग वर्ष 2005 में गुजरात राज्य में किया गया था। वहीं गांधी स्क्वायर रिविया जोहपा में भी गांधी जयंती के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोपियो इंटरनेशनल मॉरिशस की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
2: उनका जो सहयोग रहा मॉरिशस में ऐतिहासिक है कि गांधी जी अगर न आते तो मॉरिशस का स्थिति ये नहीं होता। आज हम बहुत अच्छा से जी रहे हैं और बधाई देता हूँ सभी लोगों को जिन्होंने गांधी के प्रिंसिपल पर चलकर आज मॉरिशस को यहाँ तक लाए हैं।
0: कार्यक्रमों के माध्यम से महात्मा गांधी के जीवन, उनके विचारों और सत्य एवं अहिंसा के संदेश को याद किया गया। मॉरिशस में गांधी जयंती के ये आयोजन भारत और मॉरिशस के बीच साझा ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को भी दर्शाती है।
3: सुप्रीम कोर्ट ने बालकृष्ण लक्ष्मैया की हत्या के लिए क्रिस्टोफ जोनाथन मैकडिलेन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अप्रैल 2023 में पोर्ट लुइस में उनकी दुकान में इस व्यक्ति की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। वे 90 साल के थे। इस हत्या के लिए क्रिस्टोफ मैकडिलेन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अन्य अपराधों के लिए कई बार सजा पा चुका ये व्यक्ति वर्तमान में अपने दूसरे अपराध से 8 महीने पहले किए गए एक अन्य कत्ल के लिए 23 साल की सजा काट रहा है। रजनी भिकर को सुनते हैं।
4: 25 अप्रैल 2023, क्रिस्टोफ जोनाथन मैकडिलेन तब 36 वर्ष का था और बेघर। उसने काफी समय से एक व्यक्ति पर नजर रखी हुई थी। सुलिया गली पोटलिस में बालकृष्ण लक्ष्मैया पर नजर और उसके कपड़े की दुकान में उसने घुसने की भी तैयारी की थी। उसने ऐसा दिखाया कि वो कपड़े खरीदने गया और फिर उसने इस वृद्ध पुरुष का गला ही दबा दिया। जानबूझकर योजना बनाकर इस व्यक्ति की हत्या की गई और उसने ये कबूल भी किया। अपनी गिरफ्तारी पर क्रिस्टोफ मैकडिलेन ने जांचकर्ताओं के सामने ये भी स्वीकार किया कि उसने 2022 के अगस्त महीने में सैमोतेल आश्रमीय में एक वॉचमैन को भी मार डाला था जब वो पुराने लोहे चोरी करने गया था। अपने फैसले में जज मेहदी मानाको ने बताया कि 8 महीने में आरोपित व्यक्ति ने 2 वृद्ध पुरुषों की जान ले ली और कि उसने कई बार सजा भी काटी है। सुनियोजित तरीके से, चालाकी से एक 90 वर्षीय असहाय वृद्ध पुरुष पर हमला करना, उसे घायल करना और उसे जान से मार डालना, उसके व्यवसाय में उसकी संपत्ति की चोरी करना एक गंभीर अपराध है। जब इन परिस्थितियों की जाँच की जाती है और साथ में ये देखा जाए कि कुछ ही महीने पहले मिस्टर मैकडिलेन ने किसी और की भी जान ले ली, उसके बीते अपराधों को देखा जाए तो पाया जाएगा कि ये सब गंभीर बातें हैं। इस बात को भी ध्यान में रखा जा रहा है कि मैकडिलेन ने ये कबूल किया उचित समय पर कि उसने पहले वाली हत्या का अपराध स्वीकार किया। इस बात पर भी गौर किया गया, साथ ही उसकी मांग पर उचित ध्यान भी दिया गया। फिर भी व्यक्तिगत रूप से और क्यूमुलेटिव तरीके से जांच किए जाने के बाद मुझे यकीन नहीं कि ऐसी ठोस और मजबूत परिस्थितियां हैं जो अनुच्छेद 222 के तहत तय आजीवन

0: कारावास की सजा से अलग हटकर फैसला सुनाने को सही ठहराती हैं। इस तरह सभी हकीकत को देखते हुए पेनल कोड के आर्टिकल 222 के तहत घोषित सजा के अंतर्गत क्रिस्टोफ जोनाथन मैग्डलेन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई।
1: पेरिस सिंह को इस शुक्रवार को फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन में गवाह के रूप में बुलाया गया। ये 2020 में एमोरिशस और ग्रांट थॉर्नटन के बीच हुए एक कंसल्टिंग अनुबंध की जांच के सिलसिले में था। इस जांच के कारण 70 हाजी अब्दुल्ला की गिरफ्तारी हुई थी। ग्रांट थॉर्नटन के पूर्व सीईओ के खिलाफ लगाए गए मनी लॉन्डरिंग के अस्थाई आरोप को बाद में हटा दिया गया था। 8.5 मिलियन रुपए के अनुबंध जिसमें से 3.7 मिलियन रुपए ग्रांट थॉर्नटन को चुकाए गए थे की जांच अभी भी जारी है। शरीक सिंह को सुनते हैं।
2: Me convoquer pour en relation avec un contrat qui est Mauritius indonné pour une consultancy.
3: Et c'était le contrat qui s'est attribué à Grant Thornton.
2: Effectivement. Alors, comment peut-être tout pour rappel, moi aussi directeur à Mauritius pendant à peu près 3 mois. Et que c'est durant sa période de la côte, probablement tout ban directeur pour être interrogé.
4: Qui peut reprocher exactement sa contrat?
2: Non, non, pas de rapprochement, quoi que ce soit. C'est uniquement en tant que witness qui demande ça.
1: लैंबराक से मिली जानकारी के अनुसार सुडनाक पुलिस स्टेशन में एक महिला आरोपी के साथ संबंध बनाने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाएगी। उस रात पहरा देने के लिए तैनात महिला पुलिसकर्मी को भी इस प्रक्रिया के दायरे में रखा गया है। ये कार्रवाई एमसीआईटी की जांच के बाद डीपीपी की सिफारिश पर की जा रही है। पुलिस की विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया जा रहा है और ऐसा कोई भी कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो संस्थान में जनता के विश्वास को ठोस ठेस पहुंचाएगा। ब्रिटेन में डीजल की कीमत पहली बार 2 पाउंड प्रति लीटर तक पहुंच गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिकी ईंधन निर्यात पर रोक लगाने का विचार करने के बाद ऐसा हुआ है। मध्यावधि चुनावों से पहले ट्रंप पर डीजल के निर्यात पर रोक लगाने का दबाव डाला जा रहा था। इस पर और अन्य विदेशी खबरों पर ज्यादा जानकारियां विनीमा सिबुरन के साथ।
5: संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि वो आतंकवाद के संभावित संबंधों सहित इस जांच का नेतृत्व करेगा। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमलावर को इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित किया गया था, हालांकि उन्होंने विस्तार से कुछ नहीं बताया। गुरुवार को जांचकर्ता ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि दुबई से तेल अवीव की एक उड़ान के को पायलट को पायलट पर चाकू से हमला करने के लिए किसने प्रेरित किया। टेनेसी की मौत की सजा पाने वाली जेल डेफरो की एकमात्र महिला क्रिस्टा पाइक बुधवार रात को फांसी देने के एक असफल प्रयास के बाद अस्पताल में गंभीर हालत में है और जीवन रक्षक देखभाल प्राप्त कर रही हैं। पाइक जो पिछले 200 वर्षों में राज्य द्वारा फांसी दी जाने वाली पहली महिला होने वाली है कि कानूनी टीम ने टेनेसी के गवर्नर से उनकी मौत की सजा को कम करने की अपील की है। 2 अक्टूबर का दिन भारत के लिए खास है। इस दिन भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के साथ भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी मनाई जाती है। 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में जन्मे शास्त्री जी ने अपना जीवन देश की आज़ादी और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल करीब 1.5 साल का रहा, लेकिन इस दौरान देश कई महत्वपूर्ण चुनौतियों से गुजरा। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके नेतृत्व और जय जवान जय किसान के संदेश ने उन्हें देश के इतिहास में खास स्थान दिलाया।
1: और अब मौसम संबंधी जानकारियां याचना मिश्रा के साथ।
6: हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही हैं। इसके अलावा दक्षिण से आ रहे सक्रिय बादल कल दोपहर बाद से स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेंगे। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह आसमान साफ रहेगा, केवल ऊंचाइयों पर कुछ बादल घिरा सकते हैं। दोपहर बाद देश के दक्षिणी हिस्से और सेंट्रल प्लेटों पर बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे

दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। कल सुबह से ज्यादा ऊंची लहरें उठेंगी। कल सुबह से दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जा रही है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 15 से 17, अधिकतम 23 से 25, तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 5:50 पर, शाम को सूर्यास्त 6:08 पर होगा।

0: और इसके साथ ये समाचार बुलेटिन पूरा हुआ। इसे आप तक पहुंचाने में हमें फैजन का सहयोग मिला है, उन्हें धन्यवाद देते हैं। आपको भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कुछ ही देर में शोक समाचार सुन सकेंगे।
1: Your news on MBC Play and MBC.MU.
0: कोनी रोड रेन्यो मोरेल पिछराफ्रे में 74 साल के 74-year-old के श्री धर्मदेव दया, जो विजय से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 12:30 उनके घर कुनी रोड रेन्यो मोरेल पिछराफ्रे से उठाकर दारूची की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 12:30 PM। बिल्टेर रोड हाईलैंड में 83 साल की 83-year-old की श्रीमती देरंजनी बसावन, पैदाश नाम सिरस और जो दिव्यानी से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल 10:00 PM उनके बेटे विकास बसावन के घर बिल्टेर रोड हाईलैंड से उठाकर फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 10 AM। रेजिडेंस थोकेचा बनमिया में 67 साल की 67-year-old की श्रीमती भगवंती सालिक, पैदाश नाम सुका और जो वीना से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 12:30 उनके घर रेजिडेंस थोकेचा बनमिया से उठाकर मेजिन कॉन्डोमास्क की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 12:30 PM। कमापू नंबर एक अंगता में 80 साल की 80-year-old की श्रीमती मुनि मोहन, पैदाश नाम चंपा और जो मुनिया से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11:00 उनके घर कौमापू नंबर एक औंगता से उठाकर थोमामेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 11 AM। रॉयल रोड पिचित्रिविया में 66 साल के 66-year-old के श्री हरिस्कर बिजाधर, जो मायूस से ज्यादा जाने जाते थे और SSU में सब इंस्पेक्टर थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 12:00 ला शापेल डॉट डे मोरा रॉयल रोड पिचित रिविया से उठाकर कैथोबोन के नोत्र दाम जुरो से गिरजाघर ले जाया जाएगा और फिर गांधी पालमा कैथोबोन की श्मशान भूमि। क्रिमिशन टुमरो एट नून। रॉयल रोड ब्रह्मस्थान में 76 साल के 76-year-old के श्री भोज भट्टू, जो भोज से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11:00 उनके घर रॉयल रोड ब्रह्मस्थान से उठाकर ब्रह्मस्थान की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 11 AM। 78 साल के 78-year-old के श्री योगेंद्रनाथ सिंह हुकुम सिंह, जो विनेश से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11:30 ला शापेल ऑडोंट एलियन सन्स रॉयल रोड बोबासन से उठाकर बेतो कैथोबोन की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 11:30 AM। ब्रांच रोड पिचिवेशे सैंपियर में 27 साल के 27-year-old की श्री विकीश शर्मा रामासा, जो व्यास से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1:00 उनके पिता विपिन रामासा के घर ब्रांच रोड पिचिवेशे सैंपियर से उठाकर सैकोस्तों सैंपियर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 1 PM। रॉयल रोड सिनेमा का सित्रियोले में 59 साल की 59-year-old की श्रीमती सबिना देवी

0: सुखदावा पैदाश नाम राजा राम सिंह और जो रिद्धि से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के एक बजे उनके पति कृष्ण सुखदावा के घर रॉयल रोड सिनेमा का से त्रियोले से उठाकर टर्मिनस त्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। टुकू रोड हाईलैंड्स फिनिक्स में 88 साल की 88-year-old की श्रीमती केसरी रामगुलाम पैदाश नाम हरकू और जो भी 20 से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके घर टुकू रोड हाईलैंड्स फिनिक्स से उठाकर कौफुखो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। 66 साल के 66-year-old के श्री धीरेन्द्र विरागू जो गांसों से ज़्यादा जाने जाते थे और जो बेगुनिया NHDC कॉन ले व्यू रहते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 11 बजे एलियंसंस बोबासन से उठाकर सैमौते का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुमारो एट 11 AM। नंबर 62 NHC बैलेंस प्लेन मायों में 69 साल के 69-year-old के श्री आनंद बालचंद जो राजन से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके घर नंबर 62 NHC बैलेंस प्लेन मायों से उठाकर प्लेन मायों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play.

0: Friday Mashup.
1: RM2, Radio Musti.
2: कहे तो थोड़ा सा झूम लूँ, थोड़ा सा घूम लूँ, क्या बात है भाई। अगर आप सोचे तो जिंदगी बस इसी में रिवॉल्व होना चाहिए, जहां पर आप काम करने के बाद थके हारे घर वापस आते हैं तो कुछ अनएक्सपेक्टेड प्लान्स ऐसे बन जाते हैं कि बस पार्टी मोड में सब लोग आ ही जाते हैं। चलिए, डेफिनेटली यू कैन फील द वाइब्स, क्योंकि आज है फ्राइडे और आपको एंटरटेन करने के लिए हम एकदम तैयार है। अभी से लेकर टिल 9 PM फिलहाल के लिए तो चल रहा है आपका फ्राइडे मैशअप। 7 बजे के बाद लेकर आएंगे आप लोगों के लिए ऑफ कोर्स फिल्मी जाम, जहां पर नॉनस्टॉप आप लोगों के लिए ऐसे ही धमाकेदार गाने लेकर आते रहेंगे आप लोगों के लिए टिल 9 PM। सो डू लेट अस नो व्हाट्स हैपनिंग ऑन योर साइड। इट्स अ फ्राइडे इवनिंग, काम खत्म हो चुका है, आप ड्राइव करके घर वापस जा रहे हैं, कहीं पर ट्रैफिक जाम है, सो प्लीज स्टे पेशेंट एंड स्टे म्यूजिकल विद रेडियो मस्ती, जहां पर दिव्या का साथ है।

Yes, yes, time to vibe together with this song. 7:45 हो चुके हैं. Do let me know कि what's happening on your side. And चलिए यहाँ पर अगला गाना खास तौर से हम dedicate करेंगे for Rebecca and for your love, Arshad. हमेशा आपके messages हम तक आते रहते हैं. Thank you so much. आपका ये प्यार ऐसे ही सलामत रहे. And चलिए to all those जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, thank you so much for staying connected. And I just hope that you're having a great time. आज है Friday तो आप हंसिए मुस्कुराइए एंड जिंदगी जी भर के जिए, क्योंकि आपके पास मौका भी है और दस्तूर भी है और ये माहौल एकदम धमाकेदार हमने कर दिया है, ताकि आप भी इस फ्राइडे वाले मूड में एकदम से आ जाए और आपको भी लगे कि भाई थोड़ा पार्टी शार्टी तो करना ही पड़ेगा.

0: फिल्मी जाम
1: OMG रेडियो मस्ती।
2: मुझे लगता है कि सिर्फ पंजाबियों की फितरत में नहीं बल्कि हर एक इंसान की फितरत में है कि सूर्यास्त जब होता है तो सब लोग मस्ती हो जाते हैं, स्पेशली ऑन अ फ्राइडे इवनिंग। सब लोग तो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम पार्टी मोमेंट, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई देखो हफ्ते भर हम लोगों ने बहुत ही काम कर लिया है तो अभी घर जाकर बस रिलैक्स करना है, और कुछ लोग कहते हैं कि कितना घर पर रिलैक्स करें, थोड़ा बाहर निकलना है और थोड़ा हवा बदलना है। तो चलिए, अगर आप इन दो तरीके के लोगों में उनमें से एक आप है तो डेफिनेटली या तो आप एक पार्टी एनिमल हैं या फिर आपको शोर शराबा ज्यादा पसंद नहीं है। तो चलिए, यहाँ पर लकीली वी हैव सम ब्यूटीफुल गाने आपको यह एहसास दिलाने के लिए कि भाई चलिए कभी कभी हवा को बदलना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, रूटीन को ब्रेक करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि आपका एनर्जी लेवल भी थोड़ा हाई रहे, एंड यू नीड टू कीप योरसेल्फ मच मच एनर्जेटिक ताकि आपके पास भी थोड़ा सा एनर्जी बचे टू किक स्टार्ट द नेक्स्ट वीक फॉर द डेली रूटीन। भाई मैं नेक्स्ट वीक के बारे में क्यों बात कर रही हूँ, चलिए आपको इतना स्ट्रेस में नहीं डालूंगी। आज है फ्राइडे तो हम फ्राइडे पर टिके रहेंगे। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, एंड चलिए आप लोगों ने हमारा साथ दिया इन ऑफ कोर्स फ्राइडे मैशअप, और अभी के लिए फिल्मी जाम चल रहा है टिल 9 PM जहाँ पर दिव्या का साथ है। थैंक यू सो मच कि आप लोग इतने प्यार से हमारा साथ दे रहे हैं, कुछ कुछ आपके मैसेजेस हम तक पहुँच जाए तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। आई नो कि फ्राइडे इवनिंग को हमें याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपके पास ही इतना कुछ करने को होता है, कुछ प्लान्स बन जाते हैं, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड प्लान्स बन जाते हैं, और आप लोग तैयार होने में इतना टाइम लगा देते हैं। स्पेशली हमारी जो लेडीज कहते हैं कि नहीं ऐसे ही बाहर नहीं निकलना है, हमें तो सज धज के ही बाहर निकलना है, ये भी अच्छी बात है। तो चलिए, जो आप कर रही है आई जस्ट होप कि उसमें आपको खुशी मिले और आपकी खुशी में हमारी खुशी शामिल है, और आपकी इस खुशी को दुगनी करने के लिए वी हैव सम बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती। तो चलिए दिव्या का साथ देते रहिए एंड कीप सेंडिंग योर मैसेजेस ऑन 5499 1294 और हमारा और आपका साथ है टिल 9 PM।
0: फिल्मी जाम
1: OMG रेडियो मस्ती।

0: फिल्मी जैम
1: रेडियो मस्ती.
2: That was Baby Besharam for you, Meet Bros and Jasmine. Last ki aawazon mein, of course, Jasmine jab bhi koi gaana gaati hai, it creates magic automatically. And ye gaane ke saath, I'm very sure ki aap vibe kar paaye and saath mein aapko zaroor ye laga hoga ki bed ke ghar ke andar kuch hone wala nahi hai, kuch to party shaati to karni padegi. Chaliye, hum to yahan par aapko thoda bahut encouragement de rahe hai. And agar aap ghar ke andar hi rehne wale hai aaj, to ye bhi bahut hi badhiya plan. है ऑफ कोर्स खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना इज द बेस्ट क्वालिटी टाइम एवर जो आप खुद के साथ स्पेंड कर पाएंगे. और वैसे कहते हैं ना कि टाइम से यू नीड टू एंजॉय योर ओन कंपनी, और साथ में जब अपने साथ होते हैं तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है. चलिए 7:15 टू ऑल दोज हैविंग देयर मील राइट नाउ, आपको बना पिछे शुभाहार. लेकिन आज के लिए मुझे पता है कि कुछ लोग देर से खाना खाते हैं क्योंकि सबका फोकस खुशी पे होती है और साथ में सबका फोकस इसी पे होता है कि आज है फ्राइडे इवनिंग, सो वी गोना मेक द मोस्ट ऑफ इट. लेकिन जिस तरीके से आप इस फ्राइडे को पसंद करते हैं ना, उसी तरीके से बाकी दिनों को भी अगर आप ऐसे ही पसंद करते रहेंगे तो बात बन जाएगी और जिंदगी थोड़ी और आसान हो जाएगी, है ना. तो चलिए यहाँ पर कीप सेंडिंग योर मैसेजेस ऑन 5499 1294. दिव्या का साथ है टिल 9 PM इन योर फिल्मी जैम, जहाँ पर हम साथ मिलकर थोड़ी मस्ती करते रहेंगे नॉन स्टॉप आपके साथ ऑफकोर्स. एंड यहाँ पर हमारी प्यारी सी रोशनी जी हमें मैसेज भेजा है और आप कहती है वणकम दिव्या. हेलो रोशनी जी, आपको भी वणकम, नमस्ते, गुड इवनिंग. एंड आपने हमें एक दूसरी भाषा में मैसेज भेजा है लेकिन हम बिल्कुल समझ गए. आपने हमें पूछा है कि आप कैसी हैं, हम बिल्कुल ठीक ठाक है. और आपने हमें थैंक यू कहा फॉर ऑल द सॉन्ग्स क्योंकि बहुत ही अच्छे गाने चल रहे हैं, दे ऑल फन एंड जॉली गाने. सो थैंक यू सो मच रोशनी जी, और ऐसे ही हमारे गीतों को पसंद करते रहिएगा. एंड आई जस्ट होप कि आप भी हर एक गीत के साथ वाइब कर पा रहे हैं. एंड वैसे गाना आपने अभी अभी सुना, बेबी बेशरम, कहते हैं ना कि जिसने की शर्म उसके फूटे करम, इसीलिए नो इफ्स एंड बट्स, नो अगर मगर. अगर आप घर के अंदर हैं आज और हमारे गीतों को सुनने के बाद अगर आप डांस नहीं कर रहे हैं तो ये हर एक गीत के साथ बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है. हम चाहते हैं कि आप डांस करें, थोड़ा सा मूव करें, थोड़ा सा ग्रूव करें हमारे साथ.
0: फिल्मी जैम
1: RM2 रेडियो मस्ती.
2: चले जी, हमें लगा ही था कि बेबी को बेस पसंद है इसीलिए हमने ये गाना चलाया. तो ऑल द बेबीज जस्ट गेट स्टार्टेड, आप हमारे साथ डांस करते रहिए.

0: फिल्मी जान
1: RM2 रेडियो मस्ती.
0: Well, we have this one in the beautiful and the rocking voice of Sunidhi Chauhan, Haughty Naughty. And of course, यहाँ पर Friday evening है और ऐसे गाने हम चला रहे हैं ताकि आप भी हमारे साथ vibe कर पाएं. Well, अगर आप लोग अभी घर वापस जा रहे हैं, so please drive safe and drive carefully. Non-stop गाने आप लोगों के लिए ऐसे ही चलाते रहेंगे till 9 PM. It's your filmy jam, जहां पर दिव्या का साथ है and हमारा और आपका साथ तो रहने वाला है रात के 9 बजे तक. And do send your messages और हमें ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरीके से इस Friday evening को spend कर रहे हैं.

इतने सारे नए नए गाने हम आपको सुना रहे हैं और इसके बीच में एक 90s वाला गाना हमने सोचा हम ऐड कर ले। और किसने कहा कि 90s गीतों के साथ फ्राइडे को वाइब नहीं किया जा सकता, ये गाना तो अपने आप में ही एग्जांपल है। चलिए इस गाने को सुनने के बाद अगर आपका भी दिल टोटे टोटे हो गया तो हम बहुत ही खुश हो गए। बस दिल को ऐसे ही रखिए जहाँ पर हमेशा दिल को खुशी मिले, और दिल जो कहता है आप वही करते रहिए।

0: फिल्मी जान
1: RM2 रेडियो मस्ती।
0: क्या बात है, डी से डांस, डी से दिव्या और यहाँ पर एफ से फिल्मी जाम और एफ से फ्राइडे और एफ से फंटास्टिक भी होता है, इसीलिए आपके इस फ्राइडे को और भी फंटास्टिक बनाने के लिए वी हैव द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती टिल 9 PM नॉनस्टॉप आप लोगों के लिए ऐसे ही गाने चलते रहेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप इन योर मैसेजेस ऑन 5499 1294। जैसे हम कह रहे थे कि आज के इवनिंग के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपके मैसेजेस आने के लिए, बिकॉज आई नो रशेश वाला टाइम होता है, आप कहीं पर निकल रहे हैं, कोई आपके यहाँ इनवाइटेड है, या फिर ऐसे ही आपने प्लान बनाया कि रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है या फिर थिएटर में मूवी देखने जाना है, जो भी आप कर रहे हैं हमें साथ साथ लेकर चल रहे हैं, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर स्टेइंग कनेक्टेड विद रेडियो मस्ती।

फिल्मी जाम रेडियो मस्ती। हाय, हम तो यही चाहते हैं कि आंटियां डांस करें, और सिर्फ आंटियां नहीं बल्कि हमारे जितने भी सारे चाचीज हैं, दीदीज हैं, जो मम्मीज हैं, आप लोग दिन भर घर के कामकाज में इतने थक जाते हैं कि कभी कभी खुद के लिए एनर्जी नहीं बचता है, बट यू हैव टू टेक एंड यू हैव टू रिमूव सम टाइम फॉर योरसेल्फ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और खुद के लिए टाइम निकालेंगे तभी आप दूसरों के लिए टाइम निकाल पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रियलाइज करने के लिए। तो चलिए, जितने भी सारे हमारी ब्यूटीफुल लेडीज हैं, अगर आप हमें इस वक्त सुन रहे हैं, दिन भर घर का काम तो बहुत ही हो गया, और अभी के लिए आप थोड़ा सा रिलैक्स करें और कीप लिसनिंग टू आवर ब्यूटीफुल वंडरफुल गाने। एंड आई जस्ट होप कि ऐसे धमाकेदार गाने सुनने के बाद आपको भी एनर्जी मिल रहा है, और थोड़ा सा और एनर्जी डालने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज कीप डांसिंग, कीप ग्रोविंग हमारे साथ टिल 9 PM इन योर फिल्मी जाम, जहां पर दिव्या का साथ है। फिल्मी जाम, RMG, रेडियो मस्ती।

0: फिल्मी जैम
1: OMG रेडियो मस्ती।
2: वेल 8:13 हो चुके हैं। चलिए यहाँ पर अगला गाना खास तौर से हम डेडिकेट करेंगे सुरेखा जी के लिए। कनेक्टेड है विद अस, कहती है कि आपने बिल्कुल सच कहा, घर के कामकाज में बिल्कुल थकी हारी हूँ, लेकिन आपके गानों के साथ बिल्कुल वाइब कर रही हूँ। दैट्स रियली स्वीट सुरेखा जी। देखा, मुझे पता चल गया कि कभी कभी लेडीज़ का क्या हाल होता है और उनकी क्या हालत होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद के बारे में भी सोचें, एंड सेल्फ केयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल हमने इसके बारे में बात किया था और हमने ये भी कहा था कि इट्स नॉट सेल्फिश एट ऑल कि आप अपने बारे में सोचें, एंड जब आप खुद को अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं ना, जब आप खुद के बारे में सोचते हैं, योर मेंटल हेल्थ, योर हेल्थ, तब जाके आप अपनी फैमिली को एक साथ समेट पाते हैं और उनका पूरा ध्यान रख पाते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्राइडे के इवनिंग को आप थोड़ा सा टाइम खुद के लिए भी बचा कर रखें, और हमारे और आपके बीच में जो क्वालिटी टाइम है वो एक्स्ट्रा स्पेशल होने वाला है, बिकॉज टिल 9 PM नॉन स्टॉप आप लोगों के लिए ही ऐसे ही गाने चलते रहेंगे। और ये गाने नहीं बल्कि

0: आपको खुशी देने का एक तरीका है। तो चलिए ऐसे कुछ और गाने आपके सामने हम पेश करते रहेंगे एंड कीप सेंडिंग योर मैसेजेस ऑन 5499-1294 जहां पर हम पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, घर के बारे में बात कर रहे हैं, डिनर के बारे में बात कर रहे हैं। उधर ही कुछ लोग नाइट शिफ्ट कर रहे हैं एंड शायद आपका काम कल जाकर ख़त्म होने वाला है। तो चलिए आपको बों को आज एंड डेफिनेटली आपके बारे में हम सोचते रहते हैं। कोई बात नहीं, आप काम पर होने के बावजूद भी यू कैन स्टिल वाइब विद आवर सॉन्ग्स एंड आई जस्ट होप कि आपका मूड एकदम फ्रेश हो रहा है हमारे गीतों को सुनने के बाद। तो चलिए आपको बों को आज इफ यू वर्किंग राइट नाउ।
1: फिल्मी जान,
2: RM2, रेडियो मस्ती।

0: RM2
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: हाय क्या बात है. अभी के लिए तो हमारे सुखविंदर पाजी आ गए हैं मिका पाजी के साथ और वी हैव आनंद राज आनंद उनके नशे में. ऑफ कोर्स चले भी के लिए गाने को इस तरीके से एंजॉय करें कि हम अपने स्ट्रेस अपने जितने भी सारे टेंशन है उनको हम भुला दें. एंड ऐसा बिल्कुल करना चाहिए, इसलिए तो फ्राइडे इवनिंग एग्जिस्ट करते हैं ताकि आप दिन भर की थकान को और पूरे हफ्ते की थकान को भुलाकर थोड़ा सा एंजॉय करें. तो चलिए कुछ इन गीतों के बाद लेकर आ रहे हैं वंस अगेन योर डेडिकेशन ऑन 5499 1294. स्टे राइट कनेक्टेड.

0: वाओ अमेजिंग गाना सुनकर मजा ही आ गया तेरे इश्क से मीठा कुछ भी नहीं और बिल्कुल प्यार तो इतना स्वीट होता है कि जिंदगी में अगर आप प्यार को घोल दे तो जिंदगी भी उतनी ही स्वीट बन जाती है तो चलिए आई जस्ट होप कि आप अपने लव डोज को बार बार इंक्रीज करने में जरूर कर पा रहे हैं एंड चलिए 8:35 हो चुके हैं बढ़ते हैं आपके कुछ और मैसेजेस की ओर हाय दिव्या होप यू डूइंग गुड मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ थैंक यू सो मच हमारी प्यारी रेणुका जी कनेक्टेड है ऑल द वे फ्रॉम लंदन कैसी हैं आप एंड आप कहती हैं कि I've just reached home and आप डांस कर रही हैं आप कहती हैं कि I'm dancing, I'm enjoying the show as always, take care and have a wonderful weekend. Same to you, प्यारी रेणुका जी and यहाँ पर किसी और का मैसेज आया है कहती हैं हेलो दी नमस्ते कैसी हैं आप विश यू ऑल अ लवली फ्राइडे नाइट आप रोटी बना रही है क्या बात है इस फ्राइडे इवनिंग को फराटा बना रही है मैं नचा फराटे मार के ये गाना तो मेरी प्लेलिस्ट में है लेकिन नेक्स्ट वीक के लिए तो ज़रूर आप इस गाने को एंजॉय करिएगा अगर आप नेक्स्ट वीक फराटा बनाने वाली हैं तो चलिए आप एट द सेम टाइम लिसनिंग टू RM2 रेडियो मस्ती योर फेवरेट है थैंक यू सो मच इट मीन्स अ लॉट एंड आप कहती हैं लव यू ऑल एंड कीप अप द गुड वर्क फ्रॉम आशा जी थैंक यू सो मच मीन्स अ लॉट एंड ये जो प्यार है ये जो गुड वाइब्स हैं आप ज़रूर हम तक पहुँचाते रहिए क्योंकि इसकी हमें सख्त जरूरत है आपको और अच्छे अच्छे गाने सुनाने के लिए एंड यहां पर नेक्स्ट गाना गुजार फॉर गीता सीता बलुराम ऑफ शातो बनारस टू ऑल ऑफ यू जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं ये अगला गाना गुजार टू ईच एंड एवरीवन
1: फिल्मी जान
2: RM2 रेडियो मस्ती
3: ईद यंग किंग खान जय हनी सिंगर

0: फिल्मी जान
1: RM2 रेडियो मस्ती.
0: Well, we have this one, Nakasha Aziz, Anmol Malik, Shareeb Toshi and Divya Kumar ki awaazon mein Pyar Ki, taken up from the movie House Full. Of course, aise aise gaane hum chala rahe hain ki aapka dil in gaano ko sunkar pyar se houseful hi ho jayega. So this one's taken from the movie House Full 3 and chaliye kuch aur khoobsurat geeton ko enjoy karte rahenge till 9 PM. Waise jab hum aate hain kehne ko to time hi time hota hai, lekin in a blink of an eye bas ye waqt निकल ही जाता है, और कैसे निकल जाता है ये कभी किसी को पता नहीं चलता है. बस जितना टाइम बचा कुचा है हमारे और आपके बीच में, इनको हम एंजॉय करने की कोशिश करेंगे विद दिस ब्यूटीफुल गाने, और आप एंजॉय करते रहिए, हंसिए मुस्कुराइए, बिकॉज़ आज है फ्राइडे.

0: फिल्मी जान
1: RM2 रेडियो मस्ती
0: वाले बीट पे ठुमका आप लोग जरूर लगा रही हैं एंड आई कैन डेफिनेटली फील इट फ्रॉम हियर. आप इतने एंजॉय कर रही हैं कि आपके मैसेजेस तो हम तक पहुंच ही रहे हैं एंड बाहर का नज़ारा तो हम बिल्कुल इमेजिन कर ही पा रही हैं कि सब लोग कितने खुश हैं, सब लोग हैप्पी हैप्पी हैं और इस हैप्पी और इस स्माइल को वाइड एंड ब्रॉड ज़रूर रखिएगा. कल तो सैटरडे है एंड रियल हैप्पीनेस इज नोइंग दैट कल के लिए अलार्म सेट करके नहीं सोना पड़ेगा. बस जब आपका मन चाहे आप तभी उसी वक्त को उठेंगे, है ना, खुशी वाली बात. तो चलिए इस ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों पर आप बड़ी बड़ी खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कीजिएगा. फिलहाल के लिए वी हैव ज्योतिका लेकर आई है ये गाना आप लोगों के लिए. बीट पे ठुमका आप लगाते जाइए. चलिए छोड़े जा रहे हैं आपको विद दिस ब्यूटीफुल गाना एंड हमारी और आपकी मुलाकात होने वाली है बहुत ही जल्द फॉर योर सैटरडे, जहां पर हम बहुत ही प्यार से आपको सर्व करेंगे आपका म्यूजिकल ब्रेकफास्ट अर्ली मॉर्निंग. तब तक के लिए देवी आपको दीजिए इजाजत. टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड गुड नाइट एंड बाय.

0: Good evening, जी नमस्कार और गणेशा का प्रणाम. Yes, my dear and lovely listeners, it's a Friday night है दोस्तों. Mood एकदम on होना चाहिए और late night grooves में music भी है full on. So Bollywood के peppy beats के साथ चलिए weekend को करते हैं kickstart. So wishing all of you to have a great time with me, आज गणेशा on RMT Radio Masti. And I really hope that you are going to enjoy the beautiful गानों का selection जो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए.
1: अरे यार कोई एसी चला दो यार.
2: सही है

वैसे रुसो, क्या वीकेंड की फीलिंग आ गई है? आ जानी चाहिए, क्योंकि गाने ही कुछ हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए ऑन आवर एम टू रेडियो मस्ती, जो बिल्कुल आपको पार्टी वाले मूड में लेकर आए। तो वॉल्यूम जो है ना अपने रेडियो का थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि लेट नाइट ग्रूव्स लेकर आए हैं बॉलीवुड के एनर्जेटिक गाने खासकर आप लोगों के लिए। तो चलिए जी, टू ऑल दोस्त जो हमारा साथ, गिनीशा का साथ दे रहे हैं ऑन रेडियो मस्ती, दिस वन गोज आउट टू यू।

और मैं कहूंगी फ्राइडे नाइट बॉलीवुड म्यूजिक, दैट्स द ब्यूटीफुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो टेंशन को बोलो बाय बाय और म्यूजिक के साथ ग्रूव करना शुरू करो मेरे सारे लिसनर्स। वैसे आज की रात स्लो नहीं, फुल जोश वाली रात है। लेट नाइट ग्रूव्स पर बजेंगे आपके फेवरेट बॉलीवुड डांस नंबर्स, सो गेट रेडी टू डांस विद मी।

all those who are on the job, we just want to wish you bon courage. Bilkul ji, and to all those who are driving, अरे आराम से गाड़ी चलाना, लेकिन बस अपने रेडियो का वॉल्यूम गाड़ी में आप थोड़ा सा हाई कर लीजिए, क्योंकि द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू मेक योर मूड अ लिटिल बिट बेटर. यस, आई एम गोइंग टू लिफ्ट अप योर मूड बाय प्लेइंग द नेक्स्ट वन स्पेशली फॉर यू माय डियर एंड लवली लिसनर्स, जो साथ दे रहे हैं इन योर लेट नाइट ग्रूव्स ऑन आवर एम2 रेडियो मस्ती.

ऐसे तो दोस्त जो एकदम रेडी है ना इस खूबसूरत से वीकेंड को वेलकम करने के लिए बॉलीवुड के मस्ट बीट के साथ लेट नाइट ग्रूव्स में एनर्जी का लेवल एकदम गिनिशा हाई रखेगी। वैसे आज रात रोमांस थोड़ा साइड में आप रख लीजिए क्योंकि बॉलीवुड के पेपी मोड ऑन हो चुके हैं। सो लेट्स ग्रूव विद लेट नाइट ग्रूव्स।

मानो या ना मानो मैं तो कहूंगी कि फ्राइडे नाइट को बोरिंग बनाने की परमिशन बिल्कुल नहीं है आपको. लेट नाइट ग्रूव्स पर सिर्फ मस्त म्यूजिक, मस्ती और बॉलीवुड बीट्स. वैसे ऑफिस का स्ट्रेस, वीक की थकान सबको आज रात के लिए एक साइड पे रख दीजिए. म्यूजिक को ना दिल से, बस दिल से एंजॉय कर लीजिए और दिल में जगह दीजिए और एंजॉय कीजिए लेट नाइट ग्रूव्स विद अस ऑन रेडियो.

0: गया।
1: कुछ गाने तो ऐसे ही होते हैं, बॉलीवुड के कुछ बीट्स ऐसे ही होते हैं, जब बजते हैं ना दोस्तों पैर ऑटोमेटिकली मूव करने लग जाते हैं। रेडी हो जाइए क्योंकि नेक्स्ट सॉन्ग फुल ऑन धमाका लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। यस, फ्राइडे नाइट का फंडा सिंपल है, म्यूजिक लाउड है और मूड हैप्पी और वीकेंड ऑफिशियली स्टार्ट हो चुके हैं। तो द नेक्स्ट वन गोज आउट टू ऑल पार्टी लवर्स।

0: you must stay.
1: कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुद और रंगों की बरखा है, खुशबू की

मुझे नहीं पता कि आप कहाँ पे हो इस वक्त। शायद आप घर पे हो, शायद दोस्तों के साथ बैठे हुए हो, या हो सकता है लॉन्ग ड्राइव पर आप निकल चुके हो। लेट नाइट ग्रूव्स आज रात आपका परफेक्ट म्यूजिकल कंपेनियन है। तो चलिए दोस्तों, वीकेंड की पहली रात को बनाते हैं अनफॉरगेटेबल बॉलीवुड के पैपी नंबर्स के साथ। एनर्जी बिल्कुल हाई रखेंगे।

कि आप सभी लोगों को ये खूबसूरत गानों का सिलेक्शंस दिल से अच्छा लग रहा है। वैसे अगर आपका मूड थोड़ा डल है तो एकदम कीजिए वॉल्यूम हाई, क्योंकि द नेक्स्ट वन आई एम प्रीटी मच श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। जी हाँ, कुछ गाने ऐसे होते हैं ना कि सुनते ही मूड खिलखिलाने सा लग जाता है और मुस्कुराने सा लग जाता है, एंड वी फील लाइक यस वी वांट टू पार्टी हार्ड एंड वी वांट टू डांस। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आर एम टू रेडियो मस्ती है ना आपका साथ देने के लिए विद द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

रात का प्लेलिस्ट एकदम देसी फिल्मी और एनर्जेटिक है तो रेडी हो जाइए बॉलीवुड के साथ डांस करने के लिए। वीकेंड की एंट्री हो चुकी है और लेट नाइट ग्रूव्स पर एंट्री होगी सिर्फ सुपरहिट बॉलीवुड बीट्स की। तो चलिए जी टू ऑल आवर डियर लवली लिसनर्स जो बड़े प्यार से गणेशा का साथ दे रहे हैं, हम डेडिकेट करना चाहेंगे द नेक्स्ट वन स्ट्रेट अवे फ्रॉम माई हार्ट टू योर्स। सो एंजॉय इट।

वैसे जब ऐसे रात हो जाती है ना और अच्छे-अच्छे म्यूजिक हम लेकर आते हैं तो दिल भी हैप्पी हो जाता है और इंसान भी एकदम खुश-खुश सा हो जाता है और मूड भी हैप्पी-हैप्पी हो जाता है और म्यूजिक एकदम हैप्पी. तो चलिए इस ब्यूटीफुल वाइब को बॉलीवुड के साथ कंटिन्यू करते हैं. एंड द नेक्स्ट वन आई जस्ट वांट डेडिकेटेड टू ऑल दोस जो बस पार्टी करने के मूड में हैं और एंजॉय कर रहे हैं हर एक बीट को ऑन रेडियो मस्ती.

वैसे बॉस फ्राइडे नाइट का एक ही रूल होता है, नो स्ट्रेस ओनली म्यूजिक, और म्यूजिक भी ऐसा जो आपको चेयर से उठाकर डांस फ्लोर पर लेकर ही आए। अरे मैं तो कहती हूँ कि अगर आप घर पे हो, कुर्सी को साइड पे रख दीजिए, टेबल को हटा दीजिए, सो जस्ट मेक सम स्पेस सो दैट यू कैन रियली एंजॉय द गुड वाइब्स एंड द गुड म्यूजिक विद मी। आज एक निशान रेडियो।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

है ना काम पे, उनके लिए एक स्पेशल रिमाइंडर है हमारे पास। वीकेंड आ गया है दोस्तों, अब म्यूजिक के साथ रिलैक्स और ग्रूव जरूर कीजिए, और ये जो एनर्जी है ना आप फील कर लीजिए, क्योंकि एकदम मस्त एनर्जी लेकर आए हैं। म्यूजिक को एंजॉय कीजिए और अपने फेवरेट बॉलीवुड सॉन्ग्स के साथ मेमोरीज बनाइए। आई डोंट नो आप लोग कहाँ पे हो, किसके साथ हो, कहीं से भी जहां से भी आप हमारा साथ दे रहे हैं, तो चलिए द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू।

सो माय डियर लवली लिसनर्स, आज रात, बिल्कुल आज रात गाने सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, फील करने और ग्रूव करने के लिए है. सो टर्न अप द वॉल्यूम. बॉलीवुड के म्यूजिक की एक अलग ही मैजिक है. मानो या ना मानो, जब भी इंसान सुनते हैं ना, तो मूड एकदम खिलखिला जाता है. एक बीट और मूड इंस्टेंटली चेंज हो जाता है. तो लेट नाइट ग्रूव्स पर मैजिक कंटिन्यू रखे. मैक्स वन स्पेशली फॉर यू.

यू जी, थैंक यू गिनिशा का साथ देने के लिए ऑन आवर एम टू रेडियो मैसेज। फ्राइडे नाइट तो स्माइल भी फ्राइडे वाली होनी चाहिए, है कि नहीं? और स्माइल के साथ एक पैपी बॉलीवुड नंबर हो तो क्या बात है। दोस्तों, अगर आपका मूड ऑलरेडी वीकेंड मूड में आ गया है तो हमारी प्लेलिस्ट उससे भी एनर्जेटिक बनाने वाली है। सो हियर वी गो, लेट्स ऑल एंजॉय द नेक्स्ट वन टुगेदर ऑन रेडियो मस्ती।

लेट नाइट ग्रूव्स पर आज रात बीट्स भी हैं, मस्ती भी हैं और बॉलीवुड का तड़का भी. सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड ऑन रेडियो मस्ती. चलिए आज रात को थोड़ा फिल्मी बनाते हैं बॉलीवुड के फेवरेट स्टार्स, फेवरेट सॉन्ग्स और एकदम मस्त वाइब्स के साथ ऑल नाइट लॉन्ग. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड ऑन योर नंबर वन रेडियो स्टेशन.

तो चलिए जी फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गिनीशा टू से गुडबाय टू यू. यस माय डियर, इट वाज सच अ प्लेजर टू गिव यू वन ऑफ द लवलीस्ट कंपनी इन योर लेट नाइट ग्रूव्स. अच्छे अच्छे गाने हमने चलाए, हमने खुद एंजॉय किए और आपको भी एंजॉय करवाए. सो फिलहाल जस्ट stay tuned and stay connected on our into radio Messi for some lovely lovely music all night. Filhal ke liye do take care of yourself, kal phir milenge, take care, bye bye.

0: क्या शेखर, वो दोनों तो ऐसे ही चले गए, उन्हें जलाने का मौका ही नहीं मिला।
1: आज के लिए इतना काफी है संजना, आगे आगे देखो होता है क्या।

0: the hell are you doing?
1: बहुत प्यार आ रहा है तुम पर.
0: But लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे?
1: Who cares? जो देख रहे हैं उन्हें देखने दो और जो जल रहे हैं उन्हें जलने दो.
0: Oh.

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: Radio Musti, all the way.
3: जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: तो जरा ओढ़ो। अरे मानो कहा अब तुम हो जवा, मेरी जान धड़क पन छोड़ो।
1: You're listening to RM2, a Radio Masti.